यही कारण था कि जब सती ने पिता के यज्ञ में उपस्थित होने के लिए जाना चाहा, तो शिव ने बिना निमंत्रण जाना सती के शील स्नेह अथवा मान मर्यादा के अनुरूप नहीं पाया।

पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसीलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2 जुलाई को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विधेयक का मसौदा पेश किया जाएगा। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। केंद्र सरकार ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2 महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिए गए। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अध्ययन समूह का गठन किया है। ये समूह भारतीय सिनेमा के मौजूद अवसरों और चुनौतियों का अध्ययन कर उद्योग को मजबूत बनाने के सुझाव देगा। मंत्रालय ने राज्यों के लिए आदर्श राज्य सिनेमा विनियमन भी तैयार किए हैं और उन्हें अपनाने का अनुरोध किया है।

होने का कार्यक्रम है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। वे किसानों से सीधे संवाद करेंगे। श्री चौहान वहां एक प्रदर्शनी में भी भाग लेंगे। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के दो दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

0: इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। ये नीति कल से चरणबद्ध ढंग से लागू होगी। इसका उद्देश्य 31 मार्च 2030 तक दिल्ली को शून्य उत्सर्जन परिवहन की दिशा में आगे बढ़ाना और प्रदूषण कम करना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार अगले 4 वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास पर 8,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
1: पूरी की पूरी पॉलिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर केंद्रित है। इस पूरी ईवी पॉलिसी के अंतर्गत हमारा 7,000 करोड़ का खर्च तो मात्र इन 4 सालों में होगा और इसके अलावा 8,000 करोड़ अन्य हम लोग इस ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में और जो साल दर साल रोड टैक्सेस जो माफ होंगे उसमें हमने कैलकुलेट किया है, तो लगभग 15,000 करोड़ का लाभ दिल्ली की जनता को इस ईवी पॉलिसी के माध्यम से होने वाला है।
0: भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिकों की मौत जबकि 163 लोगों के घायल होने की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान की यह कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में पैराग्वे ने जर्मनी को एक कड़े मुकाबले में हरा दिया है। दोनों टीमें निर्धारित समय पर एक एक गोल की बराबरी पर थीं। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में पैराग्वे ने जर्मनी को 4-3 से हराया। इसके साथ ही पैराग्वे राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर गई है जबकि जर्मनी विश्व कप से बाहर हो गई है। वहीं ब्राजील भी राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया है। ब्राजील ने रोमांचक मुकाबले में जापान को 2-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 396.8 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर।

कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज है कथालोक और मधुरिमा। ये कार्यक्रम लेकर मैं हूँ आपके साथ जसवीर कौर। उम्मीद की रोशनी दिल में हमेशा जलाए रखिए। जिंदगी कैसी भी हो, मुस्कुराकर उसे अपनाए रखिए। इन्हीं पंक्तियों के साथ कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर में स्वीकारे मेरा प्यार भरा नमस्कार।

श्रोताओं, जिंदगी का हर दिन हमें कुछ नया सिखाने आता है। कभी विज्ञान की नई उड़ान, कभी लोकतंत्र की नई पहचान, तो कभी तकनीक के जरिए रिश्तों को और मजबूत बनाने का संदेश। इसी तारतम्य में आज 30 जून का ये दिन कई महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया है। एक ओर आज अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस हमें लोकतंत्र, संवाद और जन भागीदारी का महत्व समझाता है, तो दूसरी ओर विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस विज्ञान अनुसंधान और हमारी पृथ्वी की सुरक्षा के प्रति जागरूक रहने की प्रेरणा देता है। और इन दोनों के बीच एक ऐसा माध्यम भी है जो आज पूरी दुनिया को एक दूसरे से जोड़ रहा है, वो है सोशल मीडिया। आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय सोशल मीडिया दिवस भी मनाया जाता है। श्रोताओं, सोशल मीडिया आज केवल बातचीत का माध्यम नहीं रह गया, बल्कि शिक्षा, व्यापार, मनोरंजन, जन जागरूकता और आपदा के समय सहायता पहुंचाने का भी सशक्त मंच बन चुका है। दुनिया के किसी भी कोने की जानकारी अब कुछ ही पलों में हमारे मोबाइल, टीवी और लैपटॉप तक पहुंच जाती है। लेकिन इसके साथ ही हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है कि हम केवल सत्य और विश्वसनीय जानकारी ही साझा करें, अफवाहों से बचें

0: और डिजिटल शिष्टाचार का पालन करें। श्रोताओं, सोशल मीडिया की असली ताकत केवल लाइक और शेयर में नहीं बल्कि दिलों को जोड़ने में है। जब इसका उपयोग सकारात्मक सोच, अपनापन और सम्मान के साथ किया जाए तो दूरियां भी नजदीकियों में बदल जाती है। आखिर रिश्तों की सबसे मजबूत डोर प्रेम, विश्वास और एक दूसरे की परवाह से ही बनती है। श्रोताओं, तकनीक भले ही बदल जाए, माध्यम बदल जाए, पर रिश्तों का अपनापन और प्यार कभी पुराने नहीं होते। और सोशल मीडिया तभी सार्थक है जब वो दिलों को जोड़ने का माध्यम बने, दूरियां मिटाए और मुस्कान बांटे।
1: बम चिक चिक बम, चिक बम बम बम चिक चिक।

0: हम फिल्म से ये था सुदेश भोसले, मोहम्मद अजीज अलका याग्निक, उदित नारायण और सोनाली वाजपेयी का गाया गीत।
1: माटी की सौंधी खुशबू के साथ,
2: पवन के ठंडे झोंके के साथ
1: हिलोरे लेगी
2: आकाश की वाणी।
1: आकाशवाणी
3: विज्ञापन के लिए संपर्क करें आकाशवाणी जगदलपुर आकर,
1: या फोन करें 222150 या 222400,
2: 222150 या 222400।
4: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
5: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
6: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ, डायल कीजिए हमारे

0: टोल फ्री नंबर 1512।
1: आप सुन रहे हैं नमस्कार जगदलपुर। लीजिए अब एक सूचना सुनिए। फोन इन किसान बाड़ी की रिकॉर्डिंग हम करते हैं प्रत्येक मंगलवार दोपहर 3:30 से शाम 4 बजे तक। आज का विषय है मशरूम की खेती। विशेषज्ञ हैं श्री धनेश्वर सिंह मांझी। सूचना समाप्त हुई। आप सुन रहे हैं नमस्कार जगदलपुर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए अब सुने कथालोक में संध्या बरबरवार से कहानी पहचान।
2: मेरी आज की कहानी का शीर्षक है पहचान। सुमन मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में अपने पति सुरेश के साथ बड़ी खुशी से रहा करती थी। सुमन के पति का अपना एक अलग से छोटा सा व्यवसाय था जिसमें उनकी गुजर बसर आराम से हो जाया करती थी। धीरे धीरे इस आनंदमयी वातावरण में समय बीतता जा रहा था। जिंदगी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ती जा रही थी। करीब 3 साल बाद सुरेश के घर एक प्यारी सी कन्या रत्न ने जन्म लिया। पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। सब कुछ बदला बदला सा नजर आने लगा। एक नन्ही सी जान ने मानो उत्साह और उमंगों से भर दिया। सुमन तो अपने सारे दुख दर्द भूलकर अपनी बिटिया में रम गई। सुरेश भी दिन भर की थकान के बाद जब घर लौटते और अपने बच्चे को देखते तो मारे खुशी के फूले न समाते। दोनों ही पति पत्नी की तो दिनचर्या ही बदल चुकी थी। बच्चे के साथ वक्त का पता ही न चलता था। कुछ समय बाद बिटिया रानी का नामकरण हुआ और उसका नाम रखा गया भूमि। भूमि जैसे जैसे बड़ी होती जा रही थी उसकी एक्टिविटीज भी बढ़ती जा रही थी। सुमन को तो अपने लिए बिल्कुल भी समय नहीं मिलता था। अकेली होने के कारण व्यस्तता और भी बढ़ जाती थी। यहां तक कि कई बार उसे खाने का समय भी नहीं मिल पाता। समय जैसे पंख पर रहा था। भूमि कब 3.5 साल की हो गई पता ही नहीं चला। अब उसका स्कूल जाना भी शुरू हो गया। इसी बीच एक अच्छी बात यह हुई कि सुमन को थोड़ा सा वक्त अपने लिए मिल जाया करता था। लेकिन स्कूल से लौटने के बाद भूमि की बदमाशियां शुरू हो जाती तो सुरेश के लौटने के बाद ही सुमन को थोड़ी सी राहत मिलती। एक विशेष बात यह कि भूमि ने स्कूल जाने में कभी भी आनाकानी नहीं की। वह बड़े शौक से स्कूल जाया करती थी। शुरू में छोटी क्लास में तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी होती गई तब ध्यान में आया कि वह बहुत शांत रहने लगी है और पढ़ाई में साधारण थी। इसके विपरीत सुमन बहुत वाचाल थी। उसे लगता कि भूमि भी उससे खूब बातें करे। सुमन को उसकी चुप्पी काफी परेशान कर देती थी। वो काफी चिंतित रहती, इसलिए उसका हमेशा ये प्रयास रहता कि वह अपनी बिटिया से खूब बातें करे, जिससे यदि उसे कोई परेशानी हो तो वह उसे बता सके। वह भूमि के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताने की कोशिश करती, लेकिन भूमि तो मानो कि उसे ज्यादा बोलना ही पसंद न हो, कम से कम शब्दों में अपनी माँ को जवाब दिया करती थी। इससे माँ का मन जाने अनजाने में बेचैन हो जाया करता था। भूमि स्कूल में भी शांत और चुपचाप रहा करती थी, लेकिन सुमन को हमेशा ही लगता था कि वह भी स्कूल में अन्य बच्चों की तरह हंस बोलकर खुश रहे और वहां होने वाली गतिविधियों में भाग ले, चाहे वो खेलकूद हो या फिर अन्य कोई, क्योंकि स्कूलों में हमेशा छोटी या बड़ी कुछ न कुछ प्रतियोगिताएं तो होती ही रहती हैं, जिससे विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिभाएं उभर कर सामने आती हैं। भूमि की सहेलियां भी कोई पढ़ाई में आगे, कोई खेल में आगे या फिर कोई कला के क्षेत्र में आगे थी। इसके विपरीत भूमि अपने आप में ही व्यस्त रहती थी।

जो बच्चे अपने अपने क्षेत्र में आगे थे उनकी अपनी एक अलग पहचान बन चुकी थी। जैसे खेल वाले अपने अच्छे खेल प्रदर्शन से मेडल जीतकर अपना परचम लहरा दिया करते थे, इसी तरह कला के क्षेत्र में अपनी कला को बिखेरकर लड़कियां सम्मान की हकदार हो जाया करती थीं और क्लास में जो फर्स्ट सेकंड आते उनका मेडल तो पक्का रहता ही। सुमन भी अन्य अभिभावकों की तरह चिंतित रहती, क्योंकि वैसे भी हर एक पेरेंट्स की नजर में उनका अपना बच्चा एक अलग स्थान रखता है। इसी तरह सुमन की भी भूमि के प्रति कुछ भावनाएं थी जो कि बड़ी ही स्वाभाविक सी थी। सुमन अपनी ओर से उसे हमेशा प्रोत्साहित किया करती थी कि वह अपनी रुचि के अनुसार कुछ सीखे, कुछ करे, लेकिन कहीं न कहीं उसका अंतर्मन यह जरूर कहता कि उसकी बिटिया में भी कोई न कोई बात तो जरूर है, इसलिए वह उसे नई नई राहें दिखाया करती, साथ ही पढ़ाई के लिए उसे प्रेरणा देती। लेकिन भूमि की आदत से सुमन पूरी तरह अनभिज्ञ थी। भूमि को रोज डायरी लिखने की आदत थी। यह बात अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण थी, जिसका परिणाम आगे चलकर सामने आया। हुआ ये कि उनके क्लास में एक नोटिस आई जिससे स्कूल की

उन्हें प्रोत्साहित करते हैं और थोड़ा सा दबाव डालते हैं तो बच्चे भी थोड़ा डर थोड़ा उत्साह से एक कदम आगे बढ़ाते हैं और तैयार हो जाते हैं। इसकी वजह केवल इतनी सी होती है कि शिक्षक बच्चों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि उनमें क्या प्रतिभाएं छिपी हुई हैं। तब उन्हें थोड़ा सा पुश करने की आवश्यकता होती है, उसके बाद वे तैयार हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ भूमि के साथ भी हुआ। मैडम ने भूमि का नाम लिख लिया और उसे कुछ लिखने को कहा। उसके मना करने के बाद भी टीचर नहीं मानी, उसे कुछ न कुछ लिखने को कहा। भूमि को तो वैसे भी रोज डायरी लिखने की आदत थी, लेकिन ये थोड़ा अलग था। उसने मन ही मन यह निश्चय किया कि वह जरूर लिखेगी, आखिर उसे भी तो कुछ करना था। मैडम ने लगभग एक महीने का समय बच्चों को दिया। धीरे धीरे समय बीतने लगा और भूमि की परेशानी भी बढ़ने लगी। आखिर क्या लिखे, कहां से शुरू करे? ऐसे तो भूमि दसवीं कक्षा की छात्रा थी, पर कविता और कहानी की बात थी तो शुरुआत करनी थोड़ी मुश्किल थी। भूमि ने भी यह तो तय तो कर ही लिया था कि लिखना तो है ही। इसी उधेड़बुन में लगभग 15 दिन बीत चुके थे। अब भूमि की गाड़ी भी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। देखते ही देखते चंद दिनों में मां शीर्षक पर उसने सुंदर प्यारी सी कविता लिख डाली। अब बस केवल 8 दिनों का समय शेष रह गया था। मैडम ने भी बच्चों से उनकी रचनाएं लेनी शुरू कर दी। धीरे से टीचर का दिया हुआ समय भी पूरा हो गया और अब आज आखिरकार वो दिन आ ही गया जब सभी वर्गों के लेख और रचनाएं एकत्रित किए जाने लगे। कांपते हाथों से भूमि ने भी अपनी कविता जमा कर दी। अब बारी आई एडिटिंग की। अच्छे से एडिटिंग की गई। देखते ही देखते वह समय भी आ गया जब बच्चों की सारी रचनाओं ने पुस्तक का एक रूप ले लिया। सभी क्लास टीचर्स और प्रिंसिपल काफी खुश थे, और हो भी क्यों ना, उनका स्कूल एक इतिहास गढ़ने जा रहा था। उनके अपने स्कूल की मैगजीन छपकर तैयार हो चुकी थी। अगले माह नवंबर में स्कूल का वार्षिकोत्सव था, उसी समय पुस्तक का विमोचन भी होना तय हुआ था। बस केवल 8 ही दिन बचे थे कार्यक्रम के लिए। बच्चों की तैयारियां भी चल रही थी, सभी टीचर्स बाकी सारी व्यवस्थाओं में लगे हुए थे। धीरे से वो दिन भी आ गया, 25 नवंबर का, जिस दिन स्कूल का वार्षिकोत्सव था और साथ ही पुस्तक का विमोचन भी। नियत समय पर कार्यक्रम शुरू हुआ और बच्चों ने बहुत अच्छे से अपनी प्रस्तुतियां भी दी। अंत में बारी आई पुस्तक विमोचन की। स्कूल के प्रिंसिपल और विशेष अतिथियों के द्वारा पुस्तक का विमोचन किया गया। इसमें सबसे अलग एक रचना थी, वो मां शीर्षक पर कविता। इसकी लेखिका भूमि को स्टेज पर बुलाया गया और कविता पढ़ने को कहा गया। डरते डरते भूमि स्टेज पर गई। पहले थोड़ा डर कर धीरे से शुरुआत की, पर अगले ही पल न जाने कौन सी शक्ति उसके में आ गई कि उसने निडर होकर कविता का पठन किया। और जब कविता खत्म हुई तो अश्रुपूरित नेत्रों से पूरा हाल तालियों की गड़गड़ाहट से गुंज उठा। साथ ही भूमि की मां भी जो हॉल में उपस्थित थी, उनकी आंखों से भी खुशी के आंसू छलक आए। आज उनको एहसास हो गया कि मेरी बेटी भी किसी से कम नहीं। उन्हें अपनी भूमि पर काफी गर्व महसूस हुआ। भूमि के साथ स्टेज पर उसकी मां को भी बुलाया गया और जोरदार तालियों के बीच भूमि को सम्मानित किया गया। सुमन ने भूमि को कसकर बाहों में ले लिया। आज एक नई लेखिका का जन्म हुआ था, जिसने अपनी एक अलग पहचान बनाई। इस घटना के बाद सुमन के ध्यान में आया कि प्रतिभा तो सभी में होती है, किसी में कम तो किसी में ज्यादा। बच्चे कभी अंतर्मुखी होते हैं तो कभी बाह्यमुखी। हमें एकदम से किसी बच्चे का आकलन

0: नहीं करना चाहिए, चाहे वह हमारा अपना ही क्यों न हो, बल्कि उन्हें हमेशा प्रोत्साहित करते रहना चाहिए कि वह अपने क्षेत्र में आगे बढ़ते रहे।
1: पहचान कथालोक में अभी आप संध्या बरबरवार से ये कहानी सुन रहे थे। जारी है कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर। इसमें आगे है मधुर गीतों की मधुरिमा, पर जिसके लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
2: विविध भारती के खजाने से हम आपके लिए लाते हैं अनमोल कार्यक्रम।
3: फौजी भाइयों की खिदमत में आपका खादिम नौशाद आदाब पेश करता है, कबूल फरमाइए।
2: कल और आज के ऐसे ही नामचीन सितारों को आप सुनते हैं विशेष जयमाला में हर शनिवार और रविवार शाम 7:05 पर। विविध भारती आप सुन सकते हैं देश के कोने कोने में, मीडियम वेव पर, शॉर्ट वेव पर, FM पर। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक। विविध भारती पर विज्ञापन बुक कराने के लिए हमारा टोल फ्री नंबर है 15102, या लॉग ऑन करें csuair.org.in। विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
4: यदि आप अब कोई नई कार या बाइक लेने की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपको काफी किफायती दामों पर उपलब्ध होगी। GST परिषद ने छोटी कारों 350 cc तक की बाइक और तिपहिया वाहनों पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया है। 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाला ये त्योहारी तोहफा एंट्री लेवल गाड़ियों को और भी किफायती बना देगा, जबकि लग्जरी कारें और बड़ी बाइक 40% के नए स्लैब में आ गई हैं, लेकिन फिर भी उन पर कम टैक्स लगेगा।
5: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 से 8 तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 से 4 तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782-222-666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज, आपकी कहानी, आपके खेतों की जुबानी।
1: लीजिए अब पेश है मधुरिमा। बरसों बाद जो मौसम मुस्कुरा कर आया है, दिल ने फिर किसी अपने का नाम गुनगुनाया है। बहकती फिजाओं के संग चलिए यादों का एक खूबसूरत कारवां फिर से हमने सजाया है।

हवाओं में आज मोहब्बत का पैगाम है, हर फूल की खुशबू में किसी का नाम है। जब मौसम भी प्यार की बात करने लगे तो समझिए दिल के करीब कोई ख़ास मुकाम है।

बादलों की पुकार हो या हवाओं की सदा, हर ओर आज किसी अपने का ही है पता। दिल भी उसी राह पर नजरें बिछाए बैठा है, शायद आज मिलन का लिख दे मौसम कोई फैसला।

दिल की धड़कनों का हिसाब कौन रख पाया है। इश्क ने हर दौर में अपना रंग दिखाया है। वक्त गुजर जाए मगर चाहत कम नहीं होती। दिल आज भी उसी नाम पर मुस्कुराया है।

हर दुआ का एक दिन असर ज़रूर होता है, हर सच्चे ख्वाब का भी सवेरा ज़रूर होता है। आई जाए तो सपनों का हकीकत से मिलन ज़रूर होता है।

ये थी आज की बदरी माँ। जो गीत आपने सुने उन्हें हमने लिया था आक्रमण जुदाई, तेरी मेहरबानियां, मेरा घर, मेरे बच्चे और बरसात की एक रात फिल्म से। आवाजें आपने सुनी किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, आशा भोसले, लता मंगेशकर, अनुराधा पौडवाल और शब्बीर कुमार की। मधुरिमा के इन मधुर गीतों के साथ ही कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर से अब जसवीर कौर को दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ दिवस। नमस्कार जगदलपुर, ये कार्यक्रम अभी पेश किया जा रहा था। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचार प्रभात हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने पहली जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री और वितरण पर लगे अस्थायी प्रतिबंध हटाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी। 30 लाख रुपए तक की कारों को सड़क कर और पंजीकरण शुल्क से छूट दी। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की। हमलों में 36 नागरिकों की मौत और 163 अन्य घायल। अमरीका और ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य पर जारी विवाद को सुलझाने के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता करेंगे। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर पहली जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमत में बढ़ोतरी नहीं की। इससे खुदरा और थोक कीमतों में अंतर आ गया है। इसी वजह से 12 जून में अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। इसका उद्देश्य काला बाजारी और जमाखोरी रोकना तथा सभी उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला लिया गया है। अमन की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में UCC लागू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में घोषणा की कि विधेयक के मसौदा गुरुवार को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। गुजरात

0: अनुसूचित जनजातीय, आदिवासियों, कुर्मी और प्राचीन स्वदेशी समुदाय को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: सरकार ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए दो महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिए गए। एक रिपोर्ट।
2: इन फैसलों का उद्देश्य भारतीय सिनेमा को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना और फिल्म निर्माण के लिए बेहतर माहौल तैयार करना है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अध्ययन समूह का गठन किया है। ये समूह भारतीय सिनेमा के सामने मौजूद अवसरों और चुनौतियों का अध्ययन कर उद्योग को मजबूत बनाने के सुझाव देगा। मंत्रालय ने राज्यों के लिए आदर्श राज्य सिनेमा विनियम भी तैयार किए हैं और उन्हें अपनाने का अनुरोध किया है। सरकार का कहना है कि इससे देश में आधुनिक, मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी फिल्म उद्योग के विकास को बढ़ावा मिलेगा। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से दो दिन के आंध्र प्रदेश दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के भी प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। कृषि मंत्री किसानों से सीधे बातचीत करेंगे। श्री चौहान का वहां एक प्रदर्शनी में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के दो दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। श्री चौहान कल अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई और जमीनी सर्वेक्षण करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी केंद्रीय सरकारी विभागों और संस्थानों को आज से आवारा कुत्तों के हमलों से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। सभी संबंधित विभागों से तय समय सीमा के भीतर दिशा निर्देश लागू करने को कहा गया है। यह आदेश पिछले वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद जारी किया गया है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से बच्चों और मरीजों के लिए सार्वजनिक स्थानों को अधिक सुरक्षित बनाना है। दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कारों पर सड़क कर और पंजीकरण शुल्क नहीं लगेगा। नीति के अनुसार पुराना वाहन स्क्रैप कर नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 1 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये नीति पहली जुलाई से अगले 4 वर्षों में चरणबद्ध ढंग से लागू की जाएगी। इसका उद्देश्य 31 मार्च 2030 तक दिल्ली को प्रदूषण मुक्त और शून्य उत्सर्जन परिवहन वाला शहर बनाना है। उन्होंने कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास पर 8,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
3: पूरी की पूरी पॉलिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर केंद्रित है। इस पूरी ईवी पॉलिसी के अंतर्गत हमारा 7,000 करोड़ का खर्च तो मात्र इन 4 सालों में होगा और इसके अलावा 8,000 करोड़ अन्य हम लोग इस ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में और जो साल दर साल रोड टैक्सेस जो माफ होंगे उसमें हमने कैलकुलेट किया है, तो लगभग 15,000 करोड़ का लाभ दिल्ली की जनता को इस ईवी पॉलिसी के माध्यम से होने वाला है।
1: और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मतदाताओं को गणना प्रपत्र घर घर पहुंचाने का अभियान भी आज से शुरू हो रहा है। मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक हर घर जाकर प्रपत्र वितरित करेंगे और भरे हुए प्रपत्र भी प्राप्त करेंगे। उन्होंने बताया कि दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दर्ज कराई जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिकों की मौत और 163 लोगों के घायल होने की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान की ये कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। मंत्रालय ने कहा कि यह पाकिस्तान के गैर जिम्मेदाराना रवैये को दर्शाता है। भारत ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र

0: स्वस्थ होने की भी कामना की है। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भी अपना समर्थन दोहराया है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा हाल में घुसपैठ कर शिविर स्थापित करने संबंधित खबरों का खंडन किया है। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें तथ्यहीन और निराधार हैं। अमेरिका और ईरान के बीच होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर विवाद पर आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता होगी। ये बातचीत हाल के सैन्य तनाव और अस्थायी युद्ध विराम के बाद हो रही है। एक रिपोर्ट।
1: विश्व के लगभग 20% कच्चे तेल का परिवहन इसी जलमार्ग से होता है। हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच मिसाइल हमलों के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही और व्यापार प्रभावित हुआ। हालांकि दोनों देशों ने कल अस्थायी युद्ध विराम पर सहमति जताई है। इस महीने हुए समझौता ज्ञापन की अलग अलग व्याख्या के कारण दोनों देशों के बीच फिर तनाव बढ़ गया था। दोनों देशों के बीच होने वाली इस वार्ता में सुरक्षित नौवहन व्यापार क्षेत्र में तनाव कम करने के उपायों पर चर्चा होने की संभावना है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: 3 जुलाई से शुरू हो रही पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 57 दिन की इस यात्रा से पहले श्रद्धालुओं का पहला जत्था जम्मू पहुंचने लगा है। जम्मू में सीसीटीवी कैमरों और आधुनिक निगरानी प्रणाली को सक्रिय कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक मॉकड्रिल भी आयोजित की है। सुरक्षा एजेंसियों ने श्रद्धालुओं से निर्धारित मार्ग का पालन करने और सुरक्षा बलों के निर्देशों का सहयोग करने की अपील की है। झारखंड में आज हूल दिवस मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दिवस जनजातीय क्रांतिकारियों सिद्धो कान्हो चांद भैरव और फूलो झानो के बलिदान के स्मरण में मनाया जाता है।
2: झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडी में हूल दिवस के अवसर पर हजारों लोग संथाल हूल के अमर शहीदों सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूलो और झानो को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 30 जून 1855 को भोगनाडी से सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन और महाजनी प्रथा के खिलाफ संथाल हूल का बिगुल फूका गया था। क्रांतिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को कई मोर्चों पर कड़ी चुनौती दी और आंदोलन लगभग एक वर्ष तक चला। इस संघर्ष के दौरान चांद और भैरव शहीद हो गए, जबकि बाद में सिद्धू और कान्हू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी। झारखंड में हूल दिवस स्वाभिमान प्रतिरोध और जनजातीय अस्मिता का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और गृह मंत्री अमित शाह ने हूल दिवस के अवसर पर क्रांतिकारियों और संथाल विद्रोह के अमर वीरों तथा वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने आज देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र बिहार कोंकण गोवा महाराष्ट्र कर्नाटक केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ओडिशा झारखंड उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मध्य प्रदेश विदर्भ छत्तीसगढ़ तेलंगाना तमिलनाडु पुदुचेरी और कारिकाल में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दक्षिण पश्चिम मानसून के कल गुजरात मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड बिहार उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। जम्मू कश्मीर पूर्वी राजस्थान गुजरात मराठवाड़ा आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप में बिजली कड़कने और आंधी आने का अनुमान है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में 5 बार की चैंपियन ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए मुकाबले में गैब्रियल मार्टिनेली ने अतिरिक्त समय में विजयी गोल दागा। अब अंतिम 16 में ब्राजील का सामना आइवरी कोस्ट या नॉर्वे से होगा। एक अन्य मुकाबले में पराग्वे ने जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
3: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से छपे प्रमुख समाचार पत्रों ने आज दिल्ली में 1 जुलाई से लागू होने वाली नई ईवी नीति को अपने मुख पृष्ठ पर जगह दी है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, दिल्ली की नई ईवी नीति जारी, खरीद पर बम्पर छूट मिलेगी। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, ईवी पॉलिसी रोड टैक्स रजिस्ट्रेशन जीरो। दैनिक भास्कर ने छापा है, 30 लाख रूपये तक की ई कार टैक्स फ्री, पुरानी कार स्क्रैप करने पर 1 लाख रूपये। दैनिक जागरण ने इसी खबर पर संपादकीय आलेख में लिखा है, सर्दियों के दिनों में दिल्ली सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में शामिल हो जाती है, ऐसे में आवश्यक था कि राजधानी में प्रभावी ईवी नीति हो ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित किया जा सके, दिल्ली सरकार को ऐसे वाहन चार्ज। दैनिक जागरण ने इसी खबर पर संपादकीय आलेख में लिखा है, सर्दियों के दिनों में दिल्ली

सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में शामिल हो जाती है। ऐसे में आवश्यक था कि राजधानी में प्रभावी ईवी नीति हो ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित किया जा सके। दिल्ली सरकार को ऐसे वाहन चार्ज

0: छत्तीसगढ़ी समन्वित साहित्यिक पत्रिका मोर भुइयां के आज के ए अंक में आप सभी श्रोता साथी मन के स्वागत है। जय जोहार, राम राम, महेंद्र साहू कोतिले। श्रोता साथी हो, आज के कार्यक्रम में आप मन ला सुनवात हन एक गोट बात, जेकर विषय हवे 25 बरस के छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ी भाखा। ये कार्यक्रम के संचालन करत हैं डॉक्टर राजन यादव।
1: 25 बरस के छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ ही भाषा, ये वार्ता में हमार संग प्रसिद्ध कहानीकार, उपन्यासकार, गद्य रचनाकार आदरणीय बहन जी सरला शर्मा जी हैं, और शैक्षणिक परिषद की ओर से राजकाज से जुड़े हुए, शोध कार्य से जुड़े हुए डॉक्टर बी रघु कुमार जी, आप मन के स्वागत है। हमार छत्तीसगढ़ ही भाषा के लंबा इतिहास है, पर हम जब देखथन के 25 बरस के छत्तीसगढ़ में हमार छत्तीसगढ़ी भाषा कहाँ तक पहुँची है। अज्ञे जैसे बड़े बड़े साहित्यकार मन कहे हैं कि भाषा कल्प वृक्ष होते, भाषा ला हमन नहीं बनान, भाषा हमन ला बनाते। तो गौरव की बात है कि आज हमार छत्तीसगढ़ी राजभाषा के रूप में हमार छत्तीसगढ़ में प्रतिष्ठित है। तो राजकाज के भाषा के रूप में छत्तीसगढ़ी के का स्थिति है डॉक्टर बी रघु कुमार जी?
2: धन्यवाद आदरणीय। अभी वर्तमान में राजकाज में स्थापित तो नहीं हुए है छत्तीसगढ़ी है, जब से छत्तीसगढ़ बने हैं वहाँ से लेके एखर पर कुछ तैयारी हुए है। राजभाषा आयोग घलो करीन और हमारे साहित्यकार मन और भाषा के विशेषज्ञ मन घलो के मा काम करे है। कुछ पुस्तिका निर्देशिका छत्तीसगढ़ी में राजकाज में उपयोगी जेन हो सकत है वो विषय लेके कुछ पुस्तिका वगैरह हो, इस प्रशिक्षण वर्ग भी आयोजित करे गए है मंत्रालय स्तर पर और विभिन्न राज्य स्तरीय कार्यालय मन में। योजना ये भी रही से कि जिला स्तर मन के कार्यालय मन में भी प्रशासकीय कार्य के समय राजकाज में छत्तीसगढ़ी भाषा के बने उपयोग होए करके प्रयास तो होए है, लेकिन ये कहे जा सकते है कि अभी और कुछ प्रयास करे की आवश्यकता है आने वाले समय में, और एकर कैसे विस्तार हो सकत है तो एकर बारे में भी औ हमला प्रयास करे की आवश्यकता है।
1: हाँ बढ़िया। हरि ठाकुर कहे है कि भाषा श्रवण कुमार से ही होते, लोक संस्कृति, लोक परंपरा, लोक साहित्य, लोक कला, लोक भाषा अपन खांध में लेके चलते सबला। तो हमारे यहाँ लेखन के भी बड़ा काम होते, अभी गद्य के बढ़िया हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ी उपन्यास के समीक्षक, छत्तीसगढ़ी साहित्य के समीक्षक, गद्यकार, कहानीकार आदरणीय सरला जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि कहानी लेखन द्वारा छत्तीसगढ़ी के कैसे फैलाव होवत है?
3: आज कहानी हर वाचिक परंपरा ले बहुत आगू निकल गए, और ए दिशा में हम देखा थन

0: कि छत्तीसगढ़ राज बने के बाद कहानी लेखन है सिर्फ प्रेम दाम्पत्य एकर ऊपर आधारित नहीं रह गए हैं। आज के कहानीकार आज के जो प्रमुख विषय है माने सियान सियानीन मन काकर कर रही भविष्य के पेट भरे के चिंता कौन करही तो वृद्धाश्रम बनत है का वृद्धाश्रम में वो सियान सियानीन मन सुरक्षित हैं संतुष्ट हैं ए विषय ला ले करके कहानी लिखे गई गरु बुढ़ापा जेकर लेखिका है सरला शर्मा। आउ थोड़कन आगे आइन आज के दिन में महात्मा गांधी घर कतका कन प्रासंगिक रही गए अहिंसा के सदुपयोग या दुरुपयोग समाज में कौन तरह से हुआ थे समाज के पिछड़े वर्ग ला कतका आगू आए के मौका मिला थे माने महात्मा गांधी ला आज हमन व्यावहारिक रूप से कौन रूप में देखा थन अतका ज्वलंत प्रश्न लेकर के उपस्थित हुए हैं चंद्रहास साहू और उनकर कहानी के नाम है गांधी चौरा। गांधी चौरा ला पढ़े के बाद हमन ला एक बार फिर सोचे बर पड़ जाते कि का महात्मा गांधी के अहिंसा हर जैन धर्म के अहिंसा परमो धर्म हर और बौद्ध धर्म के प्राणी मात्राणी दयालु भाव हर आज प्रासंगिक रही गए। एकर मतलब होइस कि आज के कहानीकार मन आज के समस्या ला अपन विषय वस्तु बनावत हैं और यह बहुत खुशी की बात है।
1: अच्छा बताया आपने जैसे परदेसी राम वर्मा की मरिया बहुत कहानी संग्रह दौरान आई सभी बिहारी लाल साहू के सूरज पोटारी संध्यार पीसी लाल यादव की नियाव सुधा वर्मा के धन बहार के छाँव माँ चोवा राम बादल रामनाथ साहू सुशील कुमार भोले गया प्रसाद साहू डॉक्टर उर्मिला जी कमलेश प्रसाद जी चंद्रहास आप स्वयं सरला शर्मा जी और जो चंद्रहास जी के याद करो गांधी चौरा मंगरोहन करिया अंग्रेज गजब के उखर कहानी संग्रह भी आते हैं। तो कहानी के माध्यम से कहे जाते कि भाषा ला पुष्ट गद्य के द्वारा करे जा सकते हैं तो गद्य में बढ़िया रचना हो थे पर केवल रचना से ही काम नहीं चलाए हमार पठन पाठन में भी आए चाहिए तो स्कूली शिक्षा में छत्तीसगढ़ ही कैसे विकसित हुआ थे डॉक्टर रघु जी।
2: आपके प्रश्न के संदर्भ में मैं जानकारी ये दे दूं कि शासन स्तर पे खासकर स्कूल शिक्षा विभाग में प्राथमिक उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर में कहीं कहीं पे पाठ्यक्रम में छत्तीसगढ़ी ला जो है ना अंश बनाए गए हैं। जैसे 2019-20 में एक प्रयोग हो इसकी जैसे छत्तीसगढ़ है बहुभाषी परिवेश के हवे स्थानीय आदिवासी मन के घलोक भाषा है तो वह मन ला महत्व देते हुए छत्तीसगढ़ी ला भी शामिल करके तो कक्षा एक और दो के लइका मन पर द्विभाषिक पुस्तक बनाए गए हैं माने वो है हिंदी और छत्तीसगढ़ी में हिंदी और हल्बी गोंडी ऐसे टाइप के तो ये एक प्रयोग है बहुत सार्थक रहीस। आज के तारीख में पहली कक्षा दूसरी कक्षा के लइका मन ला जेखर मातृभाषा छत्तीसगढ़ी है जेखर पर सुगम छत्तीसगढ़ी भाषा हवे वो लइका मन ला काफी सहायता मिलीस। बाद में कक्षा 3-4-5 में भी करीब करीब 20-25% पाठ्यक्रम में छत्तीसगढ़ी ला रखे गिरी से ओखर बाद 9वीं-10वीं में घलो लगभग 20-25% हिस्सा छत्तीसगढ़ी भाषा से संबंधित विषय वस्तु रखे गिरे से। लेकिन अभी 2 साल हो गए NCERT के पुस्तक मन ला एडाप्ट करे के खातिर अब यह नंद आगे 3-4-5 में या 9वीं-10वीं के किताब मन में जिन छत्तीसगढ़ी के अंश रही से वो नंद आगे है। एक प्रयास और चलत है अभी छत्तीसगढ़ी पर केंद्रित करते हुए सहायक वाचन के निर्माण करे जाते हैं माँ तो संभवतः ये सत्र में प्रकाशित हो जाए या लागू हो जाए ऐसे उम्मीद करे जाते। कहना ये चाहता हूँ मैं है कि अभी पाठ्यक्रम में छत्तीसगढ़ी ला जतका हिस्सेदारी होना रही से वतका संतोषजनक नहीं है लेकिन प्रयास है चलत है शासन स्तर पे तकनीकी कुछ कुछ दिक्कत आवत है शायद एकर से थोड़ा से आगे हो सकत
1: भाषा वैज्ञानिक बहुत बड़े हो हमारे यहाँ रमेश चंद महरोत्रा जी उखर पंक्ति है अब सुनिहा दीदी हमार एक ठन गोठ हो छत्तीसगढ़ ही कहत माँ उघरा सब लइकन के होठ हो याने हम

0: दूध भाषा जो कथन वो माता से जब शुरुआत हो वो यदि हो जाए तो जो अच्छा बात बताया आप मन कि स्कूल शिक्षा में ओह जुड़ गए है। हमारी यहाँ कहानी के बाद गद्य के बात करी तो उपन्यास में भी बहुत बढ़िया अब रचना चले आते उपन्यास कलम मणिराम साहू मितान चोवाराम बादल ये महाकाव्य भी लिखे हैं। चंद्रशेखर चकोर जी ये उपन्यास में है। रामनाथ साहू परदेशी राम वर्मा स्वयं सरला जी के मितान उपन्यास तो उपन्यास विपुल मात्रा में बात है। कहानी के बाद दमदार जुन विधा है तो मैं जानना चाहा सरला जी से कि छत्तीसगढ़ी में उपन्यास लेखन के द्वारा हमारी ये भाषा के कतका विस्तार होवत है।
1: मैं एक बात आप श्रोता करवाना चाहिए हाँ कि कहानी हर जीवन के एक अंश मात्र है और उपन्यास हर संपूर्ण जीवन है।
0: जीवन है
1: एमा एक चीज और जोड़ना चाहिए हाँ कि वो हर समस्ती चेतना ला उद्घाटित करते मतलब आम आदमी के समस्या मन ला संग में लेके चलते तो हर उपन्यास कहा थे।
0: हाँ, हाँ।
1: ए विषय में जैसे आप अभी नाम ले परदेशी राम वर्मा, परदेशी राम वर्मा के आवा ला जब हम देखथन तो आवा उपन्यास में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से लगे हुए जो इलाका है तो उन इलाका के जनजीवन के थोरकुन हमला दर्शन मिलते परंतु मूलतः आवा उपन्यास हर जगन्नाथपुरी पर आधारित और जनजीवन प्रभावित दिखते। एक आगू हम चलथन तो सन 2006 में एक उपन्यास आईस माटी के मितान वो उपन्यास और आईस तब छत्तीसगढ़ बने के प्रथम पंचवर्षीय योजना खत्म हो गई से वो प्रथम पंचवर्षीय योजना के का प्रभाव समाज में पड़ीस जगह जगह ग्राम पंचायत मन में महिला मन के पढ़े लिखे बर रात्रि पाठशाला लड़की मन के कन्याशाला स्कूल और अटल सड़क योजना के द्वारा गांव गांव ला सड़क ले जोड़ना और एकर अलावा भी जैसे ग्राम पंचायत योजना के अंतर्गत गुड़ी के गोठ ला चौपाल से लेकर के साहित्य तक पहुंचाए के काम ए समय हुईस। ऐसे समय में जब राज्य के चहुमुखी विकास होत रही से तो ये विकास ला के धारा ला आम जनजीवन से जोड़ते हुए और गड़रिया कथरी सिलवैया डंगचघा ए मन ला के जीवन ला प्रदर्शित करते हुए उपन्यास आईस तेकरे बर वो उपन्यास के नाम पड़ीस माटी के मितान।

के धाराला आम जनजीवन से जोड़ते हुए औ गड़रिया कथरी सिलवैया डंगचघा ए मनला के जीवन ला प्रदर्शित करते हुए ऊपर

0: हमारे यहाँ उच्च शिक्षा में भी कॉलेज और विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम के रूप में होए चाहे शोध कार्य के रूप में है, हमार राजभाषा छत्तीसगढ़ी के का स्थिति है रघु जी?
1: उच्च शिक्षा में घलोक छत्तीसगढ़ी पर काफ़ी कुछ हो है, जैसे स्नातकोत्तर में एमए में छत्तीसगढ़ी साहित्य भी रखे गए है। ओखर बाद सबसे जिन बढ़िया काम उच्च शिक्षा में जिन हुआ थे विश्वविद्यालयीन स्तर पे महाविद्यालयीन स्तर पे, भाखाला केंद्रित करते हुए लघु शोध क्रियात्मक शोध और शोध पीएचडी के इमा छत्तीसगढ़ी के अलग अलग आयाम ला स्पर्श करते हुए बहुत अच्छा काम छत्तीसगढ़ी में हुआ थे। बस मोला एक ठन मने इमा लगते विषय है कि साहित्य ला केंद्रित तो हुआ थे, अब्बड़ अकन काम हुआ थे साहित्य ला केंद्रित हुए, भाखा ला केंद्रित करते हुए ये काम मल्ला यदि केंद्रित करे जाए तो औ हमार भाषा समृद्ध हो ही, ऐसे मोर मानना है।
0: हाँ, जैसे बताए पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी में वहाँ एमए के स्वतंत्र जब पढ़ाई होते तो भाषा विज्ञान है
1: जी।
0: पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय बिलासपुर में है, एक दो यूनिवर्सिटी में औ वैष्णव चलत है
1: जी।
0: दूसरिया बात पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी में तो भाषा लेके चलत है, पर दूसर जगह जहाँ साहित्य लेके चलत है तो ओमा एक दो पाठ एक आग दो अंश भाषा ला भी लेके प्रयास होते, पर जो आप जैसे कहा था वो हो ही चाहिए। उदाहरण के लिए हमारे यहाँ जैसे अभी एक शोध कार्य पूरा होते इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में छत्तीसगढ़ी के खंड काव्य, वो मतलब कहानी पर होते 2000 के बाद वाले खंड काव्य में जब हो है तो जैसे मनीलाल कटकवार के नागेश्वर कन्या, ये 2002 की ना, मेहता राम साहू के रतन बपरी, डॉक्टर प्रभंजन शास्त्री, डॉक्टर पंच राम सोनी, हरि ठाकुर सहित वीर नारायण सिंह, डॉक्टर निरुपमा शर्मा, अमर चिन्हारी, ये खंड काव्यिक हर गणेश यदु, भूमकाल, बुधराम यादव, हेमनाथ यदु, कपिलनाथ कश्यप, डॉक्टर दशरथ लाल निषाद, तो इमन खंड काव्य की जो रचना करे है तो ओमा अच्छा ढंग से वो भाषा है। मैं जीवन यदि सुशील कुमार यदु जी के रचना एक पढ़ाते रहे हूँ ओमा छत्तीसगढ़ के अमर सेनानी करके, तो ओखर जो मैं एक पढ़े और रचना तो ओमा लगीस के भाषा बढ़िया अच्छा अतका ढंग से रखे है कि हिंदी और दूसर भाषा के रचना के टक्कर से कम नहीं है, ओखर मुकाबला के है। यहू याद रखबे भुलाझन तो जाबे, कफन बांध के मुड़ का टायन कभू हम, हो इसका के भिनसरहा पायन न पायन, लहू के तो लाली वो गायन कभू हम, कोनो जानिन पहचानिन एकरो न मतलब, वतन गीत मस्ती म गायन कभू हम। शहीदी लहू एक दिन सिर चढ़ के कही कि दहकत अंगारा धध कायन कभू हम, कफन बांध के मूड़ कटायन कभू हम। तो कोनो भाषा के आप स्वतंत्रता सेनानी पंक्ति के मुकाबला हम खड़ा कर सकत हो, तो भाषा में वो जो मार्दव चाहिए, जो ओज चाहिए, जो अर्थ गंभीरता चाहिए तो छत्तीसगढ़ी में है, पर ओला रचना करैया मन केवल दीदी अक्सर कथे लिख के रख दे काम नहीं चलाए। एक तुलसीदास जी जैसे और जायसी जैसे सामर्थ्यवान कबील पाके अवधि दंदनात ऊपर चढ़ गए, सूरदास जी से कबील पाके ब्रजभाषा कहाँ पहुंच गए, तो मात्रा नहीं गुणवत्ता भी ध्यान होना चाहिए। तो एक दमदार हमारी यहाँ एक ठन विधा है और ओमा बढ़िया रचना आते छत्तीसगढ़ी निबंध मा नाटक मा इखर कैसे बढ़िया प्रयोग होते और का आशाजनक है। आदरणीय सरला जी में प्रकाश डाली।
2: आज हम जो चर्चा करा थन छत्तीसगढ़ी के 25 साल, बढ़िया विषय बहुत बढ़िया है। आप मन अभी अभी डॉक्टर राजन यादव से सुशील यदु के कविता के एक अंश ल सुने, आप मन ध्यान दे, भाषा है कतका उदार हो गए है कफन। और भी एक ठन उदाहरण ले हैं, अन्य अन्य भाषा मन के शब्द मन ल बहुत उदारता पूर्वक आजकल हमन छत्तीसगढ़ी में निभाथन, और एकर सबसे बढ़िया उदाहरण यह निबंध में पड़ते। ओकर नाम है निबंध, जेकर कोई बंधन नहीं है तो भाषा के बंधन घलाह तो टूटिस न। तो थोड़ी कन अपन मन ध्यान देवो एमेर कि भाषा के बंधन है टूटी से थोड़ी कन विषयांतर अगर नहीं हो बताना चाहिए हाँ। अभी मैं आकाशवाणी निकला तो मोर बाई है मोला कहिस गाँव जात हूँ।

0: एकदम संडे के आ गाड़ी लेट नहीं रही तो टाइम में आ जाऊ। ध्यान दे आप मन, संडे के वह जाही और ट्रेन है लेट नहीं रही ना, ट्रेन लेट तो वह टाइम में पहुंच जाए। कठिन शब्द अंग्रेजी की हुई ए हरे आज के छत्तीसगढ़ी। और मोर ये कहना है कि जौन भाषा हर जतके ज्यादा अन्य भाषा मन के शब्द मन ला आत्मसात कर ही अपन में मिला ही डेरावा झन। अरे दूध में कत को पानी मिला रहे दे रही तो वह दूध है, पानी तो नहीं हो जाए। तो उसने छत्तीसगढ़ी है छत्तीसगढ़ी रही। दूसर एक बात, आज के निबंध जौन लिखे जाते हैं तो उन निबंध मन ला पढ़ के हमन ला ये मालूम होते है कि हमन ये छत्तीसगढ़ी के 25 साल में हमन सबसे बड़े काम जौन करे हैं, हमन 52 अक्षर ला सहर्ष अपना ले हैं। आज हमार भाषा में हमार लेखन में हमार बोली बतरा में हमन 52 अक्षर के प्रयोग करत हन। एक बात और ध्यान दीन ना भाई कि हमार छत्तीसगढ़ी की लिपि है तो देवनागरी चेना जौन देवनागरी संस्कृत और हिंदी के है। तो जब हम हिंदी और संस्कृत के देवनागरी ला अपना ले हैं 52 अक्षर ला अपना ले हैं तो हमन रास्ता ला रद्दा काबर कहबो। एक बात और दूसर बात, आज के निबंध है आज के समस्या मन ऊपर नहीं लिखी ही, आज के लड़का मन के ऊपर भविष्य के ऊपर चिंता नहीं करी कैसे बने। तब है तो सरला शर्मा एक ठन निबंध लिखते मोर करण फूल मोबाइल। काबर ये मोबाइल है सही में करण फूल हो गए है और कतका कन एक्सीडेंट करावत है लड़का मन के पढ़े लिखे में चेत नहीं कि लड़का मन के ऊपर भविष्य के ऊपर चिंता नहीं करी कैसे बने। ये हर निबंध के बारे में हो। अब एकांकी और नाटक
1: जी
0: नाटक हर समय ज्यादा लेते एकांकी है कम। तो एकांकी घलाव हर समाज ले चित्रित करते, नाटक घलाव हर समाज के समस्या मन ले चित्रित करते। आज के छत्तीसगढ़ी नाटक हर एक बहुत बड़े समस्या समेट के चले है नाटक
1: जी
0: नाटक हर समय ज्यादा लेते एकांकी है कम। तो एकांकी घलाव हर समाज ले चित्रित करते, नाटक घलाव हर समाज के समस्या मन ले चित्रित करते। आज के छत्तीसगढ़ी नाटक हर एक बहुत बड़े समस्या समेट के चले है।

0: कोई एकांकी या नाटक हर दर्शात है, तो मैं सोचता हूँ कि पिछले 25 साल में छत्तीसगढ़ी गद्य ला संभारे में व्हाट्सएप ग्रुप के जो लोकाक्षर नाम के व्हाट्सएप ग्रुप है वो बहुत बढ़िया काम कर
1: रहे पढ़ता हूँ बीच बीच में
0: लोकाक्षर अच्छा ग्रुप में आखर के अर्घ नाम के जो निबंध संग्रह है जेमा गद्य के 16 भाग संस्मरण निबंध कहानी सब वो 16 कला के एक एक दिन उदाहरण सहित प्रशिक्षण दे गए इस लोकाक्षर में और यह छत्तीसगढ़ी गद्य के उज्ज्वल भविष्य ल दिखाते।
1: आप मन जो चिंता करे हो भाषा कैसे एक बारगी खोजेल पर जथे छत्तीसगढ़ी ल हरि ठाकुर बढ़िया बात करे हैं। छत्तीसगढ़ी कविता नाम के उनकर कविता है धान के कटोरा संग्रह में। भाषा हा सर्वन सही होते जब कांवर ल उतार के यती वोती होते तहां ले शब्द भेदी बान हा हर लेते वो कर प्राण ला शब्द भेदी बान ले अपन भाषा ला बचाए बर होए त खांध ले कांवर ल उतारो झन बोहे रहो और काल खंड ला खंड खंड करके रेंगते रहो सजग रहिल पढ़ी। हमन देखे हन के अब राजभाषा बन गए छत्तीसगढ़ी पर सरकारी कार्यालय मन मा ऑफिस मन मा बोलचाल के रूप मा छत्तीसगढ़ी भाषा हमार गोठ बात मा कतका प्रयोग मा आते। डॉक्टर रघु जी
2: एखर चर्चा शुरू करे पहली मैं अभी थोड़ी देर पहली दीदी है जिन उदाहरण दिस भाषा के प्रयोग के संबंध में वही चीज ला महू है बहुत दिन से निहारा था जाना था मैं हूँ बार एक बार हमार साथी मन खैरागढ़ डाइट के हमार साथी मन एक लघु शोध करीन और भाखा के एक कतका का स्थिति है एकर बारे में चर्चा करके मने मन शोध लघु शोध करीन उमा राह चलने वाले मन से सब्जी बेचैया मन से रिक्शा चलैया से सबसे बात करीन और उमा दीदी जैन उदाहरण दीस न वही स्थिति रही से 1500 शब्द में करीब करीब 400-450 शब्द उमन अंग्रेजी शब्द मन के उपयोग कर रहे थे स्वाभाविक रूप से ये स्थिति रही से। तो अभी जैन आप जानना चाहते हो प्रश्न हो इसकी शासकीय कार्यालय मन में दैनिक वार्तालाप मन में का स्थिति है ये है बहुत संतोषजनक तो नहीं है। ये है ऐसे चीजें मातृभाषा या हमार भाका ला स्वतः यदि हम प्रयोग नहीं कर वो संवाद में तो दूसरा आदमी है वो कहाँ ले सुनी जानी।
1: हाँ अपन बोली भाषा में गर्व तो करना चाहिए
2: करना
1: मा तो...
2: चाहिए वो माँ कार्यालय मन में जावे तो हिंदी हो अंग्रेजी
1: नहीं मैं तो लड़का मन विश्वविद्यालय में पढ़ात रहो तो कथो कोई विषय पूछता हूँ प्रश्न छत्तीसगढ़ी में बोल पावे तो छत्तीसगढ़ी में बोल या जौन प्रांत ले आए तो भाषा बोल हिंदी में नहीं आए तो मैं बोल बोल तो
2: नहीं
1: तो ये उत्साहवर्धन करना चाहिए
2: बिल्कुल,
1: और
2: बिल्कुल।
1: यदि हमन जाना थन छत्तीसगढ़ी तो सामने वाले छत्तीसगढ़ी भाषा भाषी तुम्हार से बात करना चाहिए भाषा ला पोठ करेल है तो गद्य के एक से एक रचना आना चाहिए पर सबसे ज्यादा लिखे कविता जाते तो अभी जो छंदोबद्ध रचना करत हैं बढ़िया बढ़िया शब्द के प्रयोग होते तो हमारे जो नवा कवि जी घर चर्चा करत रही हैं दीदी मन कि डॉक्टर सेवाराम पांडे जी प्रभंजन शास्त्री जी ये मैं 2000 के बाद के रचनाकार मन रचना जो आए उखर अनुसार बताता हूँ मणिराम साहू मितान महाकाव्य ही घर रामेश्वर शर्मा बुधराम यादव मणि मनेश्वर डॉक्टर पीसी लाल यादव धनेश्वरी गुल आशा देशमुख संगीता वर्मा राम कुमार चंद्रवंशी बलदाऊ साहू चंद्रशेखर यादव बंधु राजेश्वर खरे चोवाराम बादल भगत सिंह सोनी संतराम देशमुख राजन प्रसाद सिन्हा रमेश सोनी पंचराम सोनी और सुखदेव सिंह डुमन लाल भाई डॉक्टर रमा कांजी पुरुषोत्तम ठेठवार राजकुमार चौधरी सचिवभूषण अजय अमृतांश मणि मनेश्वर त्रिपति साहू विजेंद्र कुमार अशोक पटेल उर्मिला शुक्ल ऐसे बहुत हमार युवा जो रचनाकार हैं स्थापित रचनाकार है उखर रचना अब आत है तो कविता के संग संग गद्य की ओर भी आगे आए। मैं आपसे दीदी एक प्रश्न करी हूँ कि आप मन संगोष्ठी सभा सोसाइटी में बहुत आज जात रहा तो संगोष्ठी सम्मेलन और दूसर साहित्यिक आयोजन में छत्तीसगढ़ी के कतका भागीदारी होते।
0: छत्तीसगढ़ी के भागीदारी में मोला कोई संशय नहीं है
1: जी
0: बहुत हुआ थे पर वही मैं पहली कहे ना कि कविता के क्षेत्र में हुआ थे। अभी कविता में का हुआ थे कि लोगन करा अतका समय नहीं है कवि सम्मेलन रात भर जाग के सुने।

0: के उन मोबाइल में मगन है उन आउ कुछ मगन। और दूसर बात कि कविता में छंदबद्ध रचना पढ़ाइया मन के संख्या क्रमशः कम हो जात है। सबो जन लक्ष्मण मस्तूरिया नहीं हो भाई।
1: जी जी जी।
0: और तहत में पढ़ाइया जवन कवि मन है कवि कवियत्री मन है ओ मन जनता के श्रुति मधुर शब्द दे नहीं पावे काबर के उनकर पास लय और अभाव हो जाते। तीसर जो सबसे जरूरी बात जो आ गए है अभी छत्तीसगढ़ी के 25 साल ल देखत खानी हमन ल एहू बात ऊपर ध्यान रखना पड़ी कि आज के जो कवि है तो उन्हर सोशल मीडिया कति मुड़ गए है।
1: जी जी।
0: आज वो कवि है व्हाट्सएप में फेसबुक में इंस्टाग्राम में तब रील बना के तब अपन यूट्यूब में अपन कविता मन ल पढ़ के सुना के प्रचार प्रसार कर ले थे। दूसर बात छत्तीसगढ़ी कविता सुनैया रात रात भर जाग के ओमन के अभाव गांव में भी देखे बर मिला थे तो ओकर कारण भी हमन ये देखा थन कवि सम्मेलन मन के आयोजन में थोड़कन कमी आई से। दूसर एक कारण और मोला लगत है कि ये जो अभी सोशल मीडिया में जो हमन प्रस्तुत करा थन चाहे छत्तीसगढ़ी गद्य हो पन तो एहू है तो एक छत्तीसगढ़ी के बहुत बड़े सुखद पक्ष है न भाई।
1: विशेषकर हमन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हाँ हमन देखे हन कि हमार सांस्कृतिक कार्यक्रम होइस लोक उत्सव होइस ओमा तो बढ़िया प्रभाव पड़ी से। नंद कुमार साहू जी राम कथा के माध्यम से बहुत बड़े काम करें तो लोकाक्षर के जब आप नाम करें नंद किशोर तिवारी स्थापित अखबार मन तको आजकल हफ्ता में एक ठन पेपर एक पन्ना जरूर छत्तीसगढ़ी का छापत हैं तो हमन आशा करत हन कि छत्तीसगढ़ी भाषा विकास के पथ में बने आगे बढ़त हैं। ये 25 बरस के छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ी भाषा की जब हम बात करी तो हमन आशा के अनुकूल चलत हन अपन पांव जमात जाते। और अंत में मैं यही फिर कहीं हूँ आप मन बढ़िया बतायो जौन जौन दिशा में छत्तीसगढ़ी के प्रचार प्रसार हो सकत है काम करे जा सकत है फिर वही हमार बहुत बढ़िया कवि हरी ठाकुर की बात लेके कि अपन भाषा बाँचे रही तो हमार पहचान घलो बाँचे रही नहीं तो हमू मन कचरा में मिझरा जाबो जर जाबो भूंजा जाबो और एक दिन राख बन के सिरा जाबो। लोकमान्य तिलक रही से कि भाषा में स्वतंत्रता के बीज होते तो अपन भाषा ला बचाए रही बनाए रखी और बढ़िया प्रयास करी। आप दोनों जन ला बहुत बहुत बधाई बहुत बढ़िया विचार आप मन रखे हो धन्यवाद।
2: 25 बरस के छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ी भाखा एक विषय में अभी आप मन गोट बात सुनत रहा और गोट बात में भाग लेवत रहीन श्रीमती सरला शर्मा डॉक्टर राजन यादव और डॉक्टर बी रघु कुमार और ये कार्यक्रम के संचालन करत रहीन डॉक्टर राजन यादव और एक संग आज के ये कार्यक्रम ले मोला यह विदा देवा। जय जोहार राम राम।

छत्तीसगढ़ी साहित्य पत्रिका बोर भुइयां। अभी आप ये कार्यक्रम सुन रहे थे जिसे हम आकाशवाणी रायपुर से रिले कर रहे थे। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए श्री लाला जगदलपुरी का लिखा रूपक चिंतन कबीर की प्रस्तुति है जी श्याम की।

0: संत कबीर द्वारा अर्जित, निरूपित और संप्रेषित अध्यात्म इतना गहन, इतना बोधगम्य, इतना सार्वकालिक और इतना सहज स्वीकार्य हुआ है कि उसकी पहुंच बुद्धिजीवियों और आम लोगों के बीच समान रूप से आज तक बनी हुई है और निसंदेह आगे भी बनी ही रहेगी।
1: संत कबीर किताबों से प्राप्त कथित ज्ञान को पांडित्य नहीं मानते। उनके अनुसार कर्ता द्वारा अर्जित उसका स्वानुभूत ज्ञान ही पांडित्य की श्रेणी में आता है।
0: उन्होंने कथनी और करनी के सामंजस्य में ही पांडित्य

0: सत्य का एहसास किया है। इस संदर्भ में उन्होंने स्पष्ट कहा है, तू कहता कागत की लेखी, मैं कहता हूँ आंखें देखी।
1: महात्मा कबीर ने अपने व्यावहारिक जीवन में जो कुछ देखा, सुना, भोगा और अनुभव किया, उस सब को उन्होंने अपने ढंग से अध्यात्म की वाणी दे रखी है।
0: प्रेम भाव को उन्होंने अपने जीवन में सर्वोपरि माना। इस संबंध में उन्होंने अपनी भावना व्यक्त करते हुए कहा है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होय।
1: परंतु उनका ये प्रेम मात्र ढाई अक्षरों तक सीमित प्रेम नहीं है। उनका ये प्रेम समस्त जीव जगत से संबद्ध आत्म तत्व की प्रतीति का प्रेम है और आत्म तत्व से भी ऊपर परमात्म तत्व की अनुभूति का प्रेम है। उन्होंने मानव समाज को मिष्टभाषी होने का संदेश दिया है।

0: मिष्ट भाषी न होने के कारण मनुष्य मनुष्य के बीच दूरियां बढ़ती हैं, जिससे आत्म तत्व की निष्पत्ति नहीं हो पाती। और जब आत्म तत्व की निष्पत्ति नहीं हो पाती तो परमात्म तत्व की निष्पत्ति का प्रश्न ही नहीं उठता।
1: कबीर स्वभावतः कट्टर थे, प्रखर थे, कटु सत्य के पक्षधर थे। उन्होंने मानव कुटुंब और मानव धर्म के हित में पाखंड, संकीर्णता, अलगाव और आडंबर आदि त्याज्य कर्मों के विरुद्ध कटु सत्य का शस्त्र प्रयोग किया है। वे कटुक वचन के विरोधी थे, कटु सत्य के विरोधी नहीं थे।
0: कबीर ने मानव समाज में प्रचलित छुआछूत की त्याज्य रूढ़ी पर प्रहार करते हुए कहा

0: कबीरदास जाति के जुलाहा थे। प्रमाण में पंक्तियां साक्षी है, जाति जुलाहा मति को धीर, हरषि हरषि गुण रमे कबीर।
1: चरखा और करघा चलाने और कपड़ा बुनने की कला से उनकी गहरी पहचान होना स्वाभाविक है।

कबीर ने अपने चिरपरिचित यंत्र करघा के माध्यम से मनुष्य की शरीर रचना को तुलनात्मक दृष्टि से देखा, परखा और अपने उस अध्ययन को आध्यात्मिक

0: शरीर विज्ञान के अनुसार एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कुल 72,000 नाड़ियाँ स्थित हैं। इनमें 3 नाड़ियाँ प्रधान मानी गई हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा को इंगला भी कहते हैं।
1: ईड़ा नाड़ी मेरुदंड के बाएं भाग में और पिंगला नाड़ी दाहिने भाग में आती है। इन दोनों नाड़ियों के मध्य भाग में सुषुम्ना नाड़ी स्थित है। इसके निचले भाग में स्थित एक नाड़ी गुच्छ को कमल की संज्ञा दी गई है। इस कमल पर कुंडली बनाकर कुंडलिनी शक्ति सर्पाकार स्थित है। इन्हीं नाड़ियों से योग क्रियाओं द्वारा कपाल में स्थित सहस्त्रदल कमल तक कुंडली शक्ति पहुंचती है।
0: प्रस्तुत पद में मानव शरीर के संपूर्ण ढांचे को करघा, उसके ऊपरी आवरण को चादर, मेरुदंड के दाहिने बाएं भागों से लगी तथा मध्य में स्थित इंगला, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों को ताना, भरनी और तार माना गया है। नाभि के निचले भाग में स्थित नाड़ी गुच्छ को भी योग भाषा में कमल दल की संज्ञा दी गई है। यही है वह चरखा जिसे पद में संदर्भित किया गया है।
1: 5 तत्व और 3 गुण उस शरीर की पहचान देते हैं जिसे प्रसवित होने में 9 से लेकर 10 मास तक का समय लग जाता है। इस कृति का कर्ता वो करतार है जिसे कबीर ने साईं कहा है।
0: कबीर के अनुसार इस देह चादर को ओढ़कर सुर नर मुनियों ने मैली की है, जबकि कबीर इसे बड़ी सावधानी से ओढ़कर ज्यों की त्यों धर गए। कबीर साहब के इस कथन में कोई गर्वोक्ति नहीं मिलती, इस कथन में उनकी पूर्णतः आत्माभिव्यक्ति मिलती है। चादर ज्यों की त्यों धरी दीनी का अर्थ होता है वे अपनी शारीरिक सक्रियता का सदुपयोग कर गए। उन्होंने अपने इस बिंब प्रयोग के द्वारा प्रेरक जीवन जीने का संदेश दिया है।
1: शरीर मोह जीवन का सबसे बड़ा मोह होता है। मृत्यु भय संसार का सबसे बड़ा भय होता है। परंतु कबीर ने बड़े प्रेम से मृत्यु का स्मरण कर लिया था जिससे वो मृत्युंजय हो गए। इस संबंध में उनका एक दोहा याद आता है, जिस मरने थे जग डरे सो मेरे आनंद, कब मरी हूं कब देखी हूं पूरन परमानंद।
0: संत कबीर का संपूर्ण जीवन भक्ति भावना और भजन कीर्तन के आनंद में तन्मय रहा था, और जहां भजन कीर्तन की सांगीतिक प्रस्तुति हुआ करती है वहां तंबूरे का वादन सहयोग भी प्रायः संलग्न ही रहा करता है।
1: तंबूरे का आधार ग्रहण कर उन्होंने शरीर रचना की क्षण भंगुरता को बड़ी सहजता के साथ वाणी दी है। देखिए उनका ये बिंब कितना सार्थक और प्रभावोत्पादक लगता है।

0: कबीर का चिंतन शाश्वत है, चिरंतन है, कालजयी है।
1: वर्तमान में जो समकालीन चिंतन लेखन प्रचलित है, कबीर ने उसकी शुरुआत अपने समय में ही कर दी थी।
0: समकालीन व्यंग लेखन में कबीर के व्यंगात्मक चिंतन की झलक मिल जाती है।
1: विशेष रूप से उनकी उलटवासियों के कथ्यों में तीखे व्यंग मिलते हैं। प्रतिकूलताओं से निपटने जूझने का एहसास उनकी उलटवासियों में मुखरित होता सा प्रतीत होता है।
0: कबीर दास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीजे पानी, कंबल निरंतर भीजते भीजते भीजने के ऐसे आदि हो गए कि भीज भीज कर भी वे अपने आप में अनभीजे से रहे आए और बरसते पानी का आक्रोश ठंडा पड़ गया। कबीर की ये उलट बांसी इसी अर्थ में व्यंजित सी लगती है।
1: फील रबाबी बल्दू पखावच, कौआ ताल बजावे, पहरी चोलना गधा नाचे, भैंसा भगति करावे, कहत कबीर सुनहुरे पंडित, कीटी पर्वत खाया, मूसा बैठा बांबी में, लारे सापिन धाई, उलटी मूसे सापिन गीली, बहु अचरज भाई, सुरही चूसे बछतली, बछा दूध उतारे, ऐसा नवल गुणी भया, सार दुलही मारे।
0: हाथी सारंगी बजा रहा है, बैल पखावज बजा रहा है, गधा घाघरा पहनकर नाच रहा है और कौवा ताल देने में संलग्न है, भैंसा ऐसी भक्ति कराने में लगा हुआ है, चूहा बिल में बैठा सांप को निगल रहा है, बछड़ा दूध दे रहा है और गैया दूध पी रही है। ये सब विसंगतियां हैं, महसूस करने की बातें हैं। कबीर के रचना संसार की ये विचित्र घटनाएं कोई नई घटनाएं नहीं है, ये सब आज भी हमारे आसपास प्रत्यक्ष घटित होती आ रही हैं।

कबीर की आस्तिकता मंदिर मस्जिद आदि के पक्ष में नहीं थी। वो अपने असीम को किसी स्थान विशेष तक सीमित कर रखने की मनोवृत्ति को नहीं मानते थे।

0: प्रतीक पूजा से वह असहमत थे। उन्होंने प्रतीक पूजा के संबंध में अपना मत व्यक्त करते हुए कहा है, पाथर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहार, या से तो चाकी भली पीसी खाए संसार।
1: उन्होंने अपनी इन पंक्तियों के माध्यम से पत्थर की सार्थक उपयोगिता पर प्रभावपूर्ण प्रकाश डाला है। कबीर निराकार ब्रह्म के उपासक थे। गोस्वामी तुलसीदास ने भी निराकार ब्रह्म को स्वीकारा है। उनकी ये पंक्तियां साक्षी हैं, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। संत कबीर अपने इष्ट को अत्यंत व्यापक दृष्टि से देखते रहे हैं।
0: संपुट माही समाया सो साहिब नहीं होए, सकल माण में रमी रहा मेरा साहिब सोए।
1: ज्यों नैनो मैं पुतली त्यों खालिक घट माही, मूरिख लोग न जाने ही बाहरी ढूंढड़ जाही। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देख है नाही।
0: उन्होंने अपनी अंतर्दृष्टि से निराकार ब्रह्म की सर्वव्यापकता को महसूसा और भाव विभोर होकर अपने इष्ट की उस सर्वव्यापकता को सार्थक अभिव्यक्तियां दी हैं।
1: तेरा साईं तुझ में ज्यों पुहपन में बास, कस्तूरी का मिरक ज्यों फिर फिर ढूंढे घास। ज्यों तिल माही तेल है ज्यों चकमक में आगी, तेरा साईं तुझ में जागी सके तो जागी।
0: उनके भीतर से उनके अंतर्मुखी आराध्य की वाणी गूंजती है।

0: साधक जब अपने इष्ट के ध्यान में आत्मविस्मृत हो जाता है, तब उसे अपने इष्ट के अतिरिक्त वातावरण में और कुछ भी नहीं दिखाई देता, न संसार न संसारी। तब वो एकाकार हो जाता है अपने इष्ट में। साधना की इस स्थिति पर प्रकाश डालता महात्मा कबीर का एक दोहा विचारणीय है। नयनों की करी कोठरी, पुत्री पलंग बिछाए, पलकों की चिकडारी के प्यू को लेऊं रिझाए।
1: सूफियों के संपर्क में रहकर भी कबीर अपने इष्ट को प्रियतमा नहीं अपितु प्रियतम ही मानते रहे थे। उनकी इस मान्यता में भारतीयता सुरक्षित मिलती है।

0: कबीर के कथ्यों में जहाँ उनकी उलट बासियाँ चौंकाती है, वहीं उनकी अनेक ऐसी उक्तियाँ भी चर्चित हैं जिन्हें सामान्य लोग गर्वोक्तियाँ समझ बैठते हैं। वास्तव में वे उनकी आत्माभिव्यक्तियाँ हैं जो लोगों को गर्वोक्तियों के समान लगती है।
1: सच तो ये है कि छोटे मुंह बड़ी बात की कहावत उनके संबंध में चरितार्थ नहीं हो सकती। वो एक पहुंचे हुए महात्मा थे। उन्होंने अपनी गणना गोपीचंद, भर्तृहरि और गोरखनाथ के साथ की है। गोरख भर्तृहरि गोपी चंदा, ता मन सो मिली करें आनंदा, अकल निरंजन सकल शरीरा, ता मन सो मिली रहा कबीरा।
0: उनके और भी कई कथ्य इस संबंध में सोचने को बाध्य करते हैं। हम न मरे मरी है संसारा, एक न भूला दोई न भूला, भूला सब संसारा, एक न भूला दास कबीरा, जाके राम आधारा।
1: उन्होंने अपने विषय में बड़े अधिकार के साथ ये भी कह दिया है कि मन ऐसा उजला भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हर फिरे कहत कबीर कबीर।
0: विचार क्रांति के वे एक अपूर्व योद्धा थे, पौरुष के धनी थे। उन्हें फक्कड़पन से प्रेरित अपनी मार्गगामिता पर पूर्ण विश्वास था, इसलिए उन्होंने लोगों को अपने साथ

चिंतन कबीर की। अभी आपने ये रूपक सुना। लेखक थे श्रीलाला जगदलपुरी, वाचक स्वर था धर्मेंद्र ठाकुर और भारती राव का। गायन पक्ष के कलाकार थे शैलेंद्र मिश्रा, दीप किशोर भटनागर, अवंतिका और श्वेता शर्मा का। संगीत संयोजन था डीपी बड़ौदिया का और इस रूपक के प्रस्तुतकर्ता थे जी श्याम। आपकी सेवा में ये रूपक आकाशवाणी जगदलपुर से प्रसारित किया गया। सुबह के 9:30 बजे है। पेश है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज हम लेकर आए हैं 1964 में प्रदर्शित फिल्म दोस्ती के गीत और फिल्म से जुड़ी कुछ बातें। सबसे पहले सुनिए इस फिल्म से मोहम्मद रफी सर ने ये गीत।

कुछ रिश्ते खून से नहीं दिल से बनते हैं। दोस्ती ऐसी ही अमर कहानी है जो बताती है कि जब एक दोस्त दूसरे की ताकत बन जाए तो जीवन की सबसे कठिन राहें भी आसान हो जाती हैं।

आज भी भारतीय सिनेमा की सबसे यादगार फिल्मों में गिनी जाती है फिल्म दोस्ती। इस फिल्म को फिल्म फेयर पुरस्कारों में 6 पुरस्कारों से नवाजा गया, जिसमें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार भी शामिल है।

भी भारतीय सिनेमा की सबसे यादगार फिल्मों में गिनी जाती है फिल्म दोस्ती। इस फिल्म को फिल्म फेयर पुरस्कारों में 6 पुरस्कारों से नवाजा गया, जिसमें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार भी शामिल है।

फिल्म के सभी सुरीले गीतों की रचना की मजरूह सुल्तानपुरी ने और बेहद सुरीला संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस फिल्म में कुल 6 गीत हैं। इन गीतों को अपनी आवाज दी मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने। आइए अब सुनते हैं फिल्म का अगला गाना, स्वर है लता मंगेशकर का।

बेहद ही मार्मिक और दिल को छू लेने वाली कहानी है फिल्म दोस्ती की। कहानी का सारांश कुछ यूं है। रामू एक अनाथ लड़का है जो दुर्घटना के कारण चल नहीं सकता और बैसाखियों के सहारे चलता है। मोहन एक नेत्रहीन लड़का है जिसके पास देखने की शक्ति नहीं है। बचपन में ही वो अपनी आंखें खो बैठा है। दोनों की मुलाकात संयोग से होती है। एक के पास आंखें हैं लेकिन पैर साथ नहीं देते और दूसरे के पास पैर हैं लेकिन आंखें नहीं। दोनों यानी रामू और मोहन एक दूसरे का सहारा बन जाते हैं। मोहन रामू को अपने कंधों पर बैठाकर चलाता है और रामू रास्ता बताता है। वे भीख नहीं मांगते बल्कि मेहनत और ईमानदारी से जीवन जीने का प्रयास करते हैं। मोहन गाना गाता है और रामू माउथ आर्गन बजाकर उसका साथ देता है। लोग उनकी कला से प्रभावित होकर उन्हें कुछ पैसे देते हैं जिससे उनका गुजारा होता है। सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत।

समय के साथ कई कठिन परीक्षाओं से गुजरने के बाद जब सच्चाई सामने आती है तो दोनों मित्र फिर मिलते हैं। रामू अपनी पढ़ाई पूरी कर एक सफल और सम्मानित व्यक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ता है और अंत में उनकी सच्ची मित्रता संघर्ष और विश्वास की जीत होती है। दोस्ती केवल साथ चलने का नाम नहीं बल्कि उस हाथ का नाम है जो अंधेरे में भी राह दिखाए और मुश्किलों में हौसला बनकर खड़ा रहे। ऐसी ही अमर दोस्ती की कहानी कहती है ये फिल्म, जिसने लाखों दिलों को भावुक किया और मित्रता की एक नई परिभाषा गढ़ी। आइए कार्यक्रम के अंत में सुनते मोहम्मद रफी के स्वर में इस फिल्म का ये गीत।

0: एक ही फिल्म से कार्यक्रम में अभी आपने सुने फिल्म दोस्ती के गीत और फिल्म से जुड़ी कुछ बातें। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 9:55 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर बाद प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल की बिक्री और वितरण पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को 1 जुलाई से हटाने का फैसला लिया। बिजली बिल भुगतान समाधान योजना की अवधि 3 माह के लिए बढ़ाई जाएगी और भाजपा महिला मोर्चा में संभाग प्रभारियों और सह प्रभारियों की नियुक्ति की गई। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री तथा वितरण पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध 1 जुलाई से हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के खुदरा पेट्रोल पंपों पर अब सामान्य व्यवस्था के तहत ईंधन की बिक्री होगी। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति सामान्य हो गई है और पेट्रोल डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित है, इसलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बिजली बिल भुगतान समाधान योजना की अवधि 3 माह के लिए बढ़ाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कल रायपुर के पास सोनपैरी में आयोजित कबीर जयंती महोत्सव को संबोधित करते हुए यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि इससे अधिक से अधिक उपभोक्ता सरचार्ज माफी और आकर्षक प्रावधानों का लाभ लेकर अपने लंबित बिजली बिलों का भुगतान कर सकेंगे। प्रदेश के पात्र किसानों को इस वर्ष भी पिछले खरीफ सीजन के बराबर यूरिया उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य सरकार ने प्रदेश में यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता को देखते हुए पहले लागू कुछ प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया है। नई व्यवस्था के तहत किसानों को उनकी पात्रता के अनुसार यूरिया का वितरण किया जाएगा। यदि संबंधित सहकारी समिति में पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है तो किसानों को एक मुश्त यूरिया दिया जाएगा। वहीं स्टॉक सीमित होने की स्थिति में उपलब्ध मात्रा पहले वितरित की जाएगी और शेष यूरिया बाद में स्टॉक पहुंचते ही संबंधित किसान को उपलब्ध कराया जाएगा। शासन ने स्पष्ट किया है कि डीएपी उर्वरक के वितरण की पूर्व व्यवस्था यथावत लागू रहेगी, जबकि संशोधित निर्देश केवल यूरिया वितरण के लिए प्रभावी होंगे। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका ने नई दिल्ली प्रवास के दौरान राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से सौजन्य भेंट की। इससे पहले राज्यपाल श्री डेका ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच विभिन्न समसामयिक विषयों पर चर्चा हुई। भारतीय जनता पार्टी ने महिला मोर्चा में संभाग प्रभारियों और सह प्रभारियों की नियुक्तियां कर दी हैं। यह सूची बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव की सहमति से प्रदेश महामंत्री और मुख्यालय प्रभारी नवीन मार्कंडेय ने जारी की है। हेमलता चंद्राकर को रायपुर संभाग का प्रभारी और सुषमा खलको को सहप्रभारी नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार शीतल नायक को दुर्ग संभाग का प्रभारी और वर्षा सिंह को सहप्रभारी, रंजिता रंधावा को बस्तर संभाग का प्रभारी और जानकी कोरसा को

0: सह प्रभारी, फुलेश्वरी पैकरा को बिलासपुर संभाग का प्रभारी और किरण साहू को सह प्रभारी, किरण मरकाम को सरगुजा संभाग का प्रभारी और रजनी तिवारी को सह प्रभारी बनाया गया है। सरगुजा जिले में कल आंधी तूफान और मूसलाधार बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से 5 साल के मासूम समेत 3 लोगों की मौत हो गई जबकि एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई है। रथ यात्रा के अवसर पर यात्रियों की सुविधा के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने गोंदिया पुरी गोंदिया के बीच रथ यात्रा स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह विशेष ट्रेन 2, 9, 16 और 29 जुलाई को गोंदिया से पुरी के लिए चलेगी। वापसी में यह ट्रेन 3, 10, 17 और 30 जुलाई को पुरी से गोंदिया के लिए रवाना होगी। ट्रेन का ठहराव डोंगरगढ़, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर सहित कई प्रमुख स्टेशनों पर रहेगा। वहीं हटिया एलटीटी हटिया समर स्पेशल ट्रेन का परिचालन 15 जुलाई तक बढ़ाया गया है। छत्तीसगढ़ से इस वर्ष हज यात्रा पर गए सभी 813 हज यात्रियों की सकुशल स्वदेश वापसी हो गई है। राज्य हज कमेटी के अनुसार हाजियों का अंतिम जत्था कल मुंबई पहुंचा जहां उनका स्वागत किया गया। हज कमेटी के अध्यक्ष मिर्जा एजाज बेग ने बताया कि इस वर्ष राज्य से 813 श्रद्धालु हज पर गए हुए थे। इनमें से 417 पुरुष और 396 महिलाएं शामिल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल की बिक्री और वितरण पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को 1 जुलाई से हटाने का फैसला लिया। बिजली बिल भुगतान समाधान योजना की अवधि 3 माह के लिए बढ़ाई जाएगी और भाजपा महिला मोर्चा में संभाग प्रभारियों और सह प्रभारियों की नियुक्ति की गई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर।
2: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं छत्तीसगढ़ संवाद।

छत्तीसगढ़ धान की खेती के लिए जाना जाता है। यहाँ के धान की बेहतरीन किस्में देश विदेश में विख्यात हैं। धान की हरी भरी फसल जब लहलहाती है तो ऐसा लगता है जैसे छत्तीसगढ़ महतारी ने धानी चुनर ओढ़ ली हो। इसी दिलकश नजारे की वजह से ही तो छत्तीसगढ़ को कहा जाता है धान का कटोरा। हरियाली से भरे पूरे छत्तीसगढ़ में पहले पारंपरिक ढंग से खेती होती थी, लेकिन अब यहाँ

उन्नत तरीके से खेती करने लगे हैं। वैज्ञानिक खेती ने भरपूर उत्पादन के द्वार अवश्य खोले, लेकिन रासायनिक खादों और कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग ने मिट्टी को प्रदूषित कर दिया। कृषि वैज्ञानिकों ने इस समस्या को गंभीरता से लिया और किसानों को नैनो यूरिया और नैनो डीएपी जैसे असरदार उर्वरकों से परिचित कराया। कम खाद में ज्यादा उत्पादन

के, किंतु डीएपी का उपयोग शुरू में ही करते हैं। डीएपी हमारे पास 35 से 36% है सहकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र को मिला करके। तो डीएपी के विकल्प के रूप में एक हम नैनो डीएपी को ले रहे हैं जो तरल फॉर्म में रहता है। ये जो हम जिस खाद की बात करते हैं वो ग्रैन्युलर फॉर्म में रहता है, चाहे यूरिया हो चाहे डीएपी हो। नैनो डीएपी जो है या नैनो यूरिया, वो जो है उसकी एफिशिएंसी अधिक होती है और इसका 500 लीटर एक बैग को रिप्लेस करता है। विगत वर्ष भी कुछ उठाव हुआ था और इस वर्ष हम लोग बड़े पैमाने पर किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि नैनो डीएपी का उपयोग करें ताकि वो जो ग्रैनुलर फॉर्म में जो कमी है उसका प्रतिस्थापन किया जा सके। सो इस तरीके से हम लोगों ने जिलेवार एक रणनीति बनाई है कि जहां पर जितना भंडारण है और जो जिले की कंजम्पशन है उसको प्रतिस्थापित किया जाए इन खादों से। इसके अतिरिक्त हम लोग बायो फर्टिलाइजर को भी प्रमोट कर रहे हैं। ये चुनौती एक अवसर के रूप में भी सामने है। जो सस्टेनेबल कृषि की हम लोग बात करते हैं या भारत सरकार के द्वारा प्राकृतिक खेती मिशन चल रहा है और पूर्व से ही हमारे राज्य में जैविक खेती मिशन भी चल रहा है राज्य पोषित योजना के रूप में। तो जो प्राकृतिक खेती मिशन है वो बिल्कुल परंपरागत पद्धति है और उसमें गोबर का उपयोग किया जाता है। इन सारी चीजों को भी हमने क्लस्टर के फॉर्म में राज्य ने लिया हुआ है विगत वर्ष से। तो इस चुनौती को हमने किसानों से ये अपील की है कि हम इसको एक अवसर की तरह देखें कि छत्तीसगढ़ राज्य की जो मिट्टी है इतनी उपजाऊ है, इतना बेहतर यहाँ का क्लाइमेट है, तो हम क्यों ना सस्टेनेबल कृषि की ओर जाते हुए बायो फर्टिलाइजर का यूज करें और जो प्राकृतिक पद्धतियां हैं परंपरागत उनका भी उपयोग करें।

यूरिया और नैनो डीएपी इफको द्वारा विकसित एक तरल उर्वरक हैं। ये किसानों के लिए एक सौगात भी हैं। पारंपरिक खाद यानी यूरिया और डीएपी के प्रभावी विकल्प के रूप में इससे किसानों को खाद के भारी भरकम बोरों से छुटकारा मिला है और अब वे छोटी छोटी बोतलों में बंद पोषक तत्वों के चमत्कार से खूब खुश हो रहे हैं। नैनो यूरिया और नैनो डीएपी को लाना, रखना और इस्तेमाल करना

पीठ वाले स्पेयर में डालवा, लेकिन दोनों में भी बराबरी सेम टू सेम है। मतलब चना में बहुत ज्यादा ग्रोथ है जी, तो नैनो डीपी से मतलब बहुत ज्यादा फायदा मिला था। और पर साल जिसमें पता है ना करण भाव, जैसे बूट वाला चना है तो ऐसे फायदा रही से एक सत्य में कहा था कि मोर अनुभव के हिसाब से हर किसान मतलब नैनो डीपी नैनो यूरिया अपनाना चाहिए।

0: दरअसल नैनो यूरिया के तरल नाइट्रोजन उर्वरक हैं। ये पौधों में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करता है और पत्तियों को बढ़ने में मदद करता है। पौधों के लिए पारंपरिक यूरिया सिर्फ 30-50% तक ही उपयोगी होता है, जबकि नैनो यूरिया पौधों को 80% तक पोषण देते हैं। इसकी 500 मिलीलीटर की एक बोतल दानेदार यूरिया के एक 45 किलोग्राम के बोरे के बराबर होती है। यही वजह है कि पारंपरिक उर्वरकों की तुलना में नैनो उत्पाद काफी किफायती हैं। इफको के उप महाप्रबंधक श्री दिनेश गांधी इस विषय में और जानकारी दे रहे हैं।
1: नैनो उर्वरक जो है वो अभी आज के खेती की नई तकनीक है, जिसमें हम नैनो तकनीक का इस्तेमाल करके जो हमारे दानेदार खाद है, जैसे यूरिया है, डीएपी है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के हम उसकी जो दक्षता है उसको बढ़ा देते हैं। जैसे जो एक यूरिया का दाना है वो 1-2 मिलीमीटर का होता है, उसको हम नैनो तकनीक से 55,000 टुकड़ों में तोड़ते हैं और उसका जो एक टुकड़ा है वो एक नैनो का कण होता है जो कि 50-100 नैनोमीटर का होता है, जिसका और इसकी जो क्षमता है वो 10 इसकी जो सतही क्षेत्रफल है वो 10,000 गुना अधिक होता है। तो इससे उसकी जो कार्य दक्षता है वो बढ़ जाती है। फिर ये नैनो पार्टिकल्स जब हम पौधे के ऊपर छिड़काव करते हैं तो पत्ती के माध्यम से उसमें जो स्टोमेटा होता है उससे पौधे के अंदर प्रवेश कर जाता है और वहां जाके वो अपना काम चालू करता है, चाहे वो नाइट्रोजन के कण हो या फास्फोरस के कण हो। तो ये जब पौधे के अंदर प्रवेश करते हैं तो वहां पे पौधे अपनी जरूरत के हिसाब से इसका इस्तेमाल करते हैं और बाकी का जो नैनो जो उर्वरक है वो पौधे के अंदर रहता है, तो ये अपनी आवश्यकता के अनुसार से पौधे इसका इस्तेमाल कर पाते हैं और इसकी जो उपयोग

0: तो इस तरीके से नैनो यूरिया के इस्तेमाल से हम न सिर्फ हमारी जमीन को, पानी को और हवा को सुरक्षित करते हैं, बल्कि हम अपने स्वास्थ्य को भी सुरक्षित करते हैं। इसके अलावा ये जो नैनो उर्वरक है, इसकी कीमतें जो हैं वो दानेदार उर्वरक से काफी कम है, किसानों के लागत में भी, खेती की लागत में कमी आती है। इसके अलावा सरकार जो रासायनिक उर्वरकों के ऊपर भारी भरकम अनुदान देती है, वो भी इसमें बचत होती है सरकार की। इसका छिड़काव करना काफी आसान है। किसान भाई अगर कोई कीटनाशक दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साथ भी मिला के इसका छिड़काव कर सकते हैं, अलग से उनको लेबर की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा इफको जो है वो ड्रोन भी किसान भाइयों को उपलब्ध करवा रही है, जिसमें 10 लीटर पानी की जरूरत होती है एक एकड़ के लिए, और 5 से 7 मिनट में वो जो आधा लीटर नैनो उर्वरक है उसका घोल बना के हम 5 से 7 मिनट में एक एकड़ में छिड़काव कर सकते हैं। तो काफी आसान है। और इफको जो है इसको 300 रूपये प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों को चार्ज करती है उसको इस्तेमाल करने के लिए। इसके अलावा जो है नैनो उर्वरक जो है अब आगे इस श्रृंखला के रूप में नैनो जिंक और नैनो कापर भी इफको लेके आई है, जिसको हम खेती में बेहतरी के लिए और अपनी फसल की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो रासायनिक उर्वरक है उसका बेहतर विकल्प के रूप में आया है, और इसकी मात्रा को हम, इसके उपयोग से रासायनिक खाद की मात्रा को हम कम कर सकते हैं। तो ये आज के युग का खाद है, इसका एक किसानों के लिए वरदान के रूप में आया है, क्योंकि अब जब रासायनिक खाद की हमको कमी हो पड़ी है, विदेशों से आयात कम हो पा रही है, उपलब्धता इसकी कम हो गई है, तो ऐसे में अगर हम नैनो उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं तो हम अपनी खेती को बचा सकते हैं, हम अपने फसल की गुणवत्ता को बचा सकते हैं, हम अपनी लागत को बचा सकते हैं, और हम खेती को और बेहतर की ओर ले जा सकते हैं। नैनो डीएपी जो है उसको हम बीज उपचार के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, जिससे जो बीज के ऊपर जो आवरण होता है उसके माध्यम से वो नैनो डीएपी में नाइट्रोजन और फास्फोरस कण है उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। जब बीज उसमें अंकुरण होता है और उसमें जब जड़ें बननी चालू होती है तो ये नैनो फास्फोरस कण उसी समय पौधे को प्राप्त होते हैं, उसकी जड़ों में पहुंच जाते हैं, तो उससे उसके जड़ के बढ़वार में मदद मिलती है, उसकी संख्या अधिक बढ़ती है और पौधा मजबूत बनता है। तो ये एक तरीके से ये नैनो उर्वरक जो है वो उसके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, उसकी कंसे बढ़ाने में और उसकी उपज को बढ़ाने में मदद करता है। जैसे अभी नैनो उर्वरक की बात हो रही इनकी लागत को लेके, तो ये जो नैनो उर्वरक है वास्तव में देखें अगर हम, तो दानेदार जो उर्वरक हम लोग विदेशों से आयात करते हैं तो इसकी कीमतें जो है हमको डॉलर में देनी होती है, जो इसके जो भुगतान होते हैं, और इसकी कीमत जो होती है वो एक बोरी की, अगर यूरिया की बात करें तो इसकी कीमत आज के समय में 5,000 रूपये तक है, जबकि किसान भाइयों से सरकार जो है 267.50 रूपये ही चार्ज करती है, तो बाकी का जो राशि है वो भारत सरकार अनुदान के रूप में देती है। उसी तरीके से अगर हम डीएपी की बात करें तो एक बोरी डीएपी जो 50 किलो का होता है वो भी आज 5,000 से 6,000 रूपये उसकी लागत हो गई है, तो किसानों से 1,350 रूपये सरकार लेती है, बाकी उसका अनुदान के रूप में देती है। तो इस तरीके से 2 लाख करोड़ रूपये सालाना जो है भारत सरकार रासायनिक उर्वरक के अनुदान के रूप में खर्च करती है, जबकि जो नैनो उर्वरक है उसी के बेहतर विकल्प के रूप में है। इसकी जो कीमतें हैं वो दानेदार खाद से भी कम है। जो नैनो यूरिया है आधा लीटर का बॉटल है वो उसकी एक एकड़ के लिए पर्याप्त है, उसकी कीमत मात्र 225 रूपये है, जबकि नैनो डीएपी जो है उसके आधा लीटर के बॉटल जो एक एकड़ के लिए पर्याप्त है उसकी कीमत 600 रूपये है, जबकि इसके ऊपर भारत सरकार कोई अनुदान नहीं देता है, ये बिल्कुल अनुदान रहित है और सीधे किसानों को प्राप्त हो रहा है। तो इस तरीके से न सिर्फ किसान के स्तर पर इसकी लागतें कम है बल्कि भारत सरकार के ऊपर भी कोई बोझ नहीं पड़ता है, तो ये एकदम खेती के लिए बहुत ही लाभकारी उत्पाद है।
1: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं छत्तीसगढ़ संवाद।

एक तरल फास्फोरस और नाइट्रोजन आधारित उर्वरक है जिसे इफको ने विशेष रूप से पौधों की जड़ों के विकास और मजबूती के लिए तैयार किया है। ये फसल को शुरुआती दिनों में अच्छा पोषण प्रदान करता है।

0: है जिससे पौधे मजबूत होते हैं और उनकी शाखाओं में अच्छे दाने भरते हैं। नैनो डीएपी की 500 मिलीलीटर की एक बोतल पारंपरिक डीएपी के 50 किलोग्राम बोरे के बराबर काम करती है। इसका मतलब किसान भाई परिवहन, भंडारण और छिड़काव के कई झंझटों से मुक्त हो जाते हैं।
1: मोर नाम ताराचंद साहू है। मैं ग्राम सोनेसिली के किसान हूँ और पिछले पूर्वज मन जैसन करत रहे वैसन खेती महू करत रहे, लेकिन पिछले साल से मुला अपन खुद के अनुभव कि मोर धान हाँ 5 एकड़ में बो रहे हम मर गए। गाँव के हैंड पंप जवाब दे दिस कि पानी के बहुत बिगड़ाल समस्या हुई। वो स्थिति में ये निर्मित हुई कि भविष्य में सोचो अगर हम तो आज पानी के मतलब उपलब्ध है, हमार आने वाला भविष्य जो हमारे छोटे बच्चा है ओकर मन के बिना पानी के भविष्य कैसे निर्मित। तो ये में ना मैं अभी चना लगा हूँ। चना में नैनो डीएपी के पहली उपयोग करे मैं ओकर पहली नैनो डीपी का हर मोल मालूम ही नहीं रही से। 80% आदमी धान निबो है, दलहनी तिलहनी के उपयोग करे है और फसल है बहुत बढ़िया।

0: नैनो उर्वरकों के आसान इस्तेमाल की सलाह के लिए कृषि वैज्ञानिक हमेशा तैयार रहते हैं। बस किसानों को उन्हें ये बताना होता है कि वे कौन सी फसल ले रहे हैं। साथ ही ये जानना भी आवश्यक होता है कि किसान इनका उपयोग बुवाई के समय करना चाहते हैं या खड़ी फसल पर। आजकल छत्तीसगढ़ के किसान परिवर्तित फसलें भी ले रहे हैं, इसलिए दलहनी और तिलहनी फसलों के लिए भी नैनो उर्वरकों की सही मात्रा का ज्ञान होना आवश्यक है। कृषि वैज्ञानिक आर एस राठौर कहते हैं,
1: ये जो नैनो तरह

0: छत्तीसगढ़ के किसान परिवर्तित फसलें भी ले रहे हैं, इसलिए दलहनी और तिलहनी फसलों के लिए भी नैनो उर्वरकों की सही मात्रा का ज्ञान होना आवश्यक है। कृषि वैज्ञानिक आर एस राठौर कहते हैं,
1: ये जो नैनो तरह

लेकिन जो नैनो के तरल खाद हैं, वो नैनो तकनीक हमारे पौधों पर पत्तियों के ऊपर छिड़काव के माध्यम से उपयोग किए जाते हैं और वो पत्तियों के माध्यम से जो पोषक तत्व तो इसके माध्यम से मिलते हैं वो पत्तियों के माध्यम से घोल में अवशोषित करती हैं पत्तियां और वो पौधों को ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर तक पूरे शरीर में उनके में पौधों में प्रवाहित होते हैं जिससे उनकी पोषक तत्वों की पूर्ति होती। तो दोनों की कार्य पद्धति में अंतर है। एक समय वो था जब हमारे किसान भाई डीएपी एनपीके इन खादों का बहुत कम मात्रा में उपयोग करते थे, लेकिन चूंकि हमारे देश की आवश्यकता समझें कि जब हम विदेशों से अन्न आयात किया जाता था तब हम लोगों का पेट भरती थी सरकार, तो धीरे धीरे उसमें खाद की एक प्रमुख भूमिका रही है उत्पादन बढ़ाने में। तो जब किसान भाइयों को हमारे को ये समझ में आया कि खाद डालने से उत्पादन बढ़ सकता है तो धीरे धीरे वो डालते डालते अब वो एक सीमा रेखा से कहीं ज्यादा खाद का उपयोग करने लगे हैं। तो अंतर ये है कि दोनों में कि खाद जो बोरी वाला खाद या दानेदार खाद आता है, वास्तविकता ये है कि हमारे देश की जितनी खपत है प्रतिवर्ष की वो हमारे देश में उसका उत्पादन उतना नहीं है। तो आज अगर हम यूरिया की बात करें तो लगभग 30-35% यूरिया हमारे पूरे देश की प्रतिवर्ष की खपत का विदेशों से आयात होता है, और अगर हम डीएपी की बात करें तो लगभग 60-65% हिस्सा जो है खपत का वो भी विदेशों से आयात, हम विदेशों के ऊपर निर्भर है। ये इनका अंतर। अगर हम बात करें अगर उर्वरक की, तो जो नैनो खाद है वो नवीनतम तकनीक है, दानेदार खाद है वो पुरानी पारंपरिक तकनीक चली आ रही है, उसमें कार्य क्षमता कम होती है, नैनो की ज्यादा होती है। अगर हम बात करें रखने की या उसको लाने ले जाने की, तो किसान भाइयों के लिए बहुत आसान है, एक तरफ आधा लीटर की बोतल और एक तरफ 50 किलो की बोरी, तो उसको वजन भी ज्यादा है, जगह भी ज्यादा चाहिए, गाड़ियों से ट्रकों में मालगाड़ियों में जो भर के आता है उसकी बहुत कम आवश्यकता होगी, और इसके साथ साथ हमारी भारत सरकार जो है इस पे अनुदान भी देती है, लेकिन उसके बावजूद भी हम उस अनुदान वाली मतलब बोरी को उपयोग करके और हमारे ही जल मिट्टी और वायु को प्रदूषित कर रहे हैं। तो सरकार की सोच ये है कि हमारी भविष्य के लिए हमारी मिट्टी भी सुरक्षित रहे, हमारा पानी भी सुरक्षित रहे, जमीन की उपजाऊ शक्ति भी बनी रहे और हमारे किसानों को समय पे और उचित मूल्य पे खाद मिल सके। अभी हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में धान प्रमुख फसल है और अभी धान की बुवाई अथवा रोपाई का काम चल रहा है। कुछ लोग सीधे धान की बुवाई करते हैं, कुछ लोग उसकी नर्सरी बना के उसकी रोपाई करते हैं। तो जहां हम सीधे बीज की बुवाई करते हैं उसमें एक

साधारण भाषा में उससे भी समझते हैं कि 5 किलो बीज पर एक ढक्कन भर के नैनो डीएपी डालना है और उसको बीज में मिलाना है। अगर आवश्यकता पड़े तो उसमें थोड़ा बहुत पानी भी आवश्यकता अनुसार मिला के नैनो डीएपी में, फिर उसका छिड़काव बीज के ऊपर करके और उसको थोड़ी देर छोड़ दिया जाता है, जिससे वो डीएपी, नैनो डीएपी का जो घोल है वो बीज के अंदर समाहित हो जाता है और फिर उसकी बुवाई कर दी।

0: यूरिया और नैनो डीएपी कृषि के क्षेत्र में नवाचार की नई पहचान बन रहे हैं। बेहतर पोषण, दक्षता, कम लागत, आसान उपयोग और पर्यावरणीय संतुलन के साथ ये आधुनिक उर्वरक खेती अधिक उत्पादक, लाभकारी और टिकाऊ बना रहे हैं। कृषि विभाग द्वारा किसानों को धान सहित विभिन्न फसलों में नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए कृषि विभाग द्वारा समय समय पर विकास खंड और ग्राम स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम, प्रशिक्षण और प्रदर्शन आयोजित किए जाते हैं। इफको के उप महाप्रबंधक श्री राजेश कुमार गोले कहते हैं,
1: नैनो फर्टिलाइजर की दुनिया में एक नया क्रांतिकारी कदम है। और इसकी जरूरत क्यों पड़ गई? इसकी जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि जो दानेदार खाद हम डाल रहे हैं उसकी उपयोग क्षमता दिन ब दिन कम होती जा रही है। हम जितना डालते हैं उसका मात्र 40% यूरिया उपयोग होता है, 60% खेत में पड़ा रहता है। इसी प्रकार से डीएपी और दूसरे खाद भी 25% उपयोग हो पाते हैं कि पौधों के द्वारा, बाकी खेत में पड़े रहते हैं। इसलिए आपने देखा होगा खेत की मिट्टी कड़क होती जा रही है। सभी ने अनुभव किया खेत की मिट्टी कड़क होती जा रही है। खेत में जो लाभदायक जीवाणु थे, केचुए थे और दूसरे जीवाणु थे, वो कम होते जा रहे हैं। तो उसको दूर करने के लिए, अच्छा जो ये पड़ा हुआ खाद है, ये आप देख रहे हैं बोतल में, आज हम पानी पीने को मजबूर हो रहे हैं क्योंकि ये सब खाद जो है नाइट्रेट के रूप में पानी में जाके मिल रहा है, नालों में, ट्यूबवेल में। और उसके कारण आप देख रहे हैं कि बहुत कम उम्र में लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है या डायबिटीज हो रही है, दुनिया भर की बीमारियां फैल रही हैं। 40% उपयोग होता है और 60% जो है पॉल्यूशन कर रहा है। उस पॉल्यूशन से निपटने के लिए हमको पैदावार भी नहीं घटाना है और पॉल्यूशन से हमको निपटना है, बचना है। के लिए जो नैनो उर्वरक है ये सीधे पत्तियों पे उपयोग होता है और पत्तियों पे उपयोग होने से क्या होता है कि जमीन में नहीं जाता है। जब जमीन में नहीं जाता है तो वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन जीरो है। तो ये किसान भाई कोई भी फसल जो 35 से 40 दिन की हो जाती है, चाहे वो धान हो, मक्का हो, गेहूं हो या दूसरी जो भी साग भाजी है, जब पर्याप्त पत्ती आ जाती है तो इसको आप 5 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर, या मोटी भाषा में कहें एक टंकी जो 15 लीटर की, 2.5 ढक्कन नैनो यूरिया मिलाकर उस पे स्प्रे कर सकते हैं।

छत्तीसगढ़ के किसान आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए बेहद उत्साहित हैं। आज किसान समझ चुके हैं कि बिना किसी नुकसान के नैनो उर्वरकों को अपनाकर वे अपनी उपज का अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। यही कारण है कि

0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे छत्तीसगढ़ संवाद।
1: उजाले की ओर, अभी आपने ये प्रायोजित कार्यक्रम सुना जिसे हम आकाशवाणी रायपुर से रिले कर रहे थे। मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्स, FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम गुड़दुम। आज इसमें सुनिए नीलू राम और साथियों के गाए भत्री गीत। आइए इन्हीं का गाया सबसे पहले सुनिए ये गीत।
2: आज यो दे गला को

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: आकाशवाणी जगदलपुर से कार्यक्रम गुर्दू में आज आप सुन रहे हैं भत्री लोकगीत। गायक कलाकार है डीलू राम और साथी। आइए अब सुने इन्हीं का गाया ये अगला भत्री गीत।

0: किसान भाई बहन मन का जे नुआ वार्ड एदाए रोज शनिवार के सांझ बेरा 7:30 ले 8 तक सुना फोन इन किसान वाणी यथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे दे आपन मन चो खेती कमाने लिए जुड़ लो सपाय समस्या चो समाधान बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे। और हाँ, ये कार्यक्रम चो रिकॉर्डिंग होय से रोजे मंगलवार अड़ौ पहार 3:30 ले 4 तक। तो आपन मन सपाय सुना और आप लो सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा। आमचो फोन नंबर आए 07782226666। फोन इन किसानवाणी आपन मंचो सवाल आपन मंचो कहानी खेती बाड़ी चो जुबानी आकाशवाणी जगदलपुर ने।
1: आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से कार्यक्रम गुरदुबे आज आप सुन रहे हैं भद्री लोकगीत। गायक कलाकार है नीलू राम और साथी। आइए इन्हीं का गाया अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम भद्री।

0: बस्तर के लोक गीतों के कार्यक्रम गुर्दुम में अभी आप नीलूराम और साथियों के गाए भत्री गीत सुन रहे थे। ये आकाशवाणी जगदलपुर है।
1: बदलो बदलो आदत बदलो,
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो, अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। आप हमें एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी सुन रहे हैं। दिन के 11 बजे हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही कलाकार।

संगीत की दुनिया में कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो सीधे दिल में उतर जाती है। उन्हीं आवाजों में से एक ऐसी ही मधुर, सादगी से भरी और मोहम्मद रफी साहब की गायकी की मिठास की याद दिलाने वाली आवाज है विपिन सचदेवा की।

तो श्रोताओं, आज का एक ही कलाकार कार्यक्रम केंद्रित है उस गायक पर जिसकी आवाज में है अपनापन, मिठास और सुरों की सच्ची खुशबू, और वो पार्श्व गायक है विपिन सच।

वक्त का अपना एक अंदाज होता है। कभी वो किसी सितारे को हमसे जुदा कर देता है तो कभी उसी सितारे की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए एक नई आवाज दुनिया के सामने ले आता है। ऐसा ही एक यादगार अवसर विपिन सचदेवा के जीवन में आया, जब महान गायक मोहम्मद रफी की स्मृति में एक विशेष संगीतमय कार्यक्रम आयोजित किया गया। उस शाम मंच पर जब विपिन सचदेवा ने रफी साहब के अमर नगमों को अपनी सधी हुई और दिलकश आवाज में प्रस्तुत किया, तो श्रोताओं के साथ साथ कार्यक्रम में मौजूद जाने माने निर्माता निर्देशक सावन कुमार टाग भी उनकी गायकी से गहरे प्रभावित हुए। वो कहते हैं ना कि प्रतिभा को बस एक सही मंच की तलाश होती है। उस एक प्रस्तुति ने विपिन की जिंदगी की दिशा बदल दी। सावन

कार्यक्रम में मौजूद जाने माने निर्माता निर्देशक सावन कुमार टाग भी उनकी गायकी से गहरे प्रभावित हुए। वो कहते हैं ना कि प्रतिभा को बस एक सही मंच की तलाश होती है। उस एक प्रस्तुति ने विपिन की जिंदगी की दिशा बदल दी। सावन

बचपन से जिन स्वरों को सुनकर विपिन सचदेवा ने संगीत की दुनिया में कदम बढ़ाने का सपना देखा था, उन्हीं स्वरों की मलिका लता मंगेशकर के साथ गाने का अवसर उन्हें अपनी पहली ही फिल्म सनम बेवफा में मिला। सोचिए, एक ऐसा गायक जिसने बचपन में रेडियो पर लता जी के गीत सुनकर सुरों की साधना की हो, जब पहली बार उसी महान गायिका के साथ रिकॉर्डिंग स्टूडियो में खड़ा हुआ होगा तो उसके मन में कितनी खुशी, कितना सम्मान और कितना रोमांच रहा होगा। ये पल उनके लिए किसी सपने के सच होने से कम नहीं था। और जब सनम बेवफा के गीतों ने अपार सफलता हासिल की तो संगीतकार और फिल्म निर्देशक सावन कुमार का विश्वास उन पर और ज्यादा हो गया। यही वजह थी कि उन्होंने अपनी अगली फिल्म चांद का टुकड़ा में भी विपिन सचदेवा को मौका दिया। एक बार फिर उन्हें लता मंगेशकर के साथ युगल गीत गाने का सौभाग्य मिला। एक नए गायक के लिए इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता था कि उसे बार बार भारत की स्वर कोकिला के साथ गाने का अवसर मिले।

जब प्रतिभा अपनी पहचान बना लेती है तो अवसर खुद उसके दरवाजे पर दस्तक देने लगती है। सनम बेवफा की अपार सफलता के बाद विपिन सचदेवा की मधुर आवाज फिल्म जगत में गूंजने लगी। उनकी गायकी से संगीत प्रेमियों के साथ साथ संगीत जगत की बड़ी हस्तियां भी प्रभावित हुईं। इन्हीं में एक नाम था गुलशन कुमार का। विपिन सचदेवा की आवाज सुनकर गुलशन कुमार इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हें अपने ऑफिस बुलाया और कहा, क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? ये किसी भी उभरते हुए गायक के लिए बहुत बड़ा विश्वास और सम्मान था। विपिन सचदेवा ने इस अवसर का भरपूर लाभ उठाया और फिर शुरू हुआ उनकी गायकी का एक नया और सुनहरा अध्याय।

कहते हैं जब दो सुर एक दूसरे का सम्मान करते हुए मिलते हैं तो केवल गीत नहीं बनते, इतिहास बनता है। विपिन सचदेवा के करियर में एक नया और महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उनकी मुलाकात मशहूर पार्श्व गायिका अनुराधा पौडवाल से हुई। ये जोड़ी भी उसी इतिहास का एक खूबसूरत अध्याय है। फिल्मी गीतों से लेकर

केवल गीत नहीं बनते, इतिहास बनता है। विपिन सचदेवा के करियर में एक नया और महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उनकी मुलाकात मशहूर पार्श्व गायिका अनुराधा पौडवाल से हुई। ये जोड़ी भी उसी इतिहास का एक खूबसूरत अध्याय है। फिल्मी गीतों से लेकर

ये अनुराधा पौडवाल और विपिन सचदेवा की आवाज में फिल्म जुनून का गीत था, जिसका संगीत दिया था नदीम श्रवण ने। अब इन्हीं आवाजों में सुनते हैं फिल्म बेटा का गीत आनंद मिलन के संगीत निर्देशन में।

समय के साथ कलाकारों की मंजिलें बदलती हैं, लेकिन उनकी पहचान कभी नहीं बदलती। विपिन सचदेवा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। फिल्मों में यादगार गीत देने के बाद उनका रुझान स्टेज शो, प्राइवेट एल्बमों, भक्ति संगीत और अन्य कंपनियों के लिए गायन की ओर बढ़ा। देखते ही देखते उनका अधिकांश समय इन्हीं संगीत यात्राओं में व्यतीत होने लगा और धीरे धीरे उन्होंने फिल्मी पार्श्व गायन से कुछ दूरी बना ली। लेकिन सच्चा कलाकार कभी अपने श्रोताओं से दूर नहीं होता। आज भी विपिन सचदेवा देश विदेश के मंचों पर अपनी मधुर आवाज का जादू बिखेरते हैं। उनके भजन हो या प्राइवेट एल्बम हो या पुराने फिल्मी नगमे, हर प्रस्तुति में वही सादगी, वही आत्मीयता और वही सुरों की मिठास सुनाई देती है जिसने उन्हें लाखों दिलों का चहेता बनाया।

0: अभी आप सुन रहे थे एक ही कलाकार। आज का हमारा ये कार्यक्रम केंद्रित था जाने माने पार्श्व गायक विपिन सचदेवा पर।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स ग्रिट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। लोक वाद्य धुनों के कार्यक्रम पाड़ में आज प्रस्तुत है समधीन पाड़। वादक कलाकार हैं ईश्वर बघेल और साथी।

0: लोक वाद्य धुनों के कार्यक्रम पाड़ में अभी आप ईश्वर बघेल और साथियों का बजाया समधीन पाड़ सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय दिन के 11:55 होने वाले हैं। अब हिंदी में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर
1: प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल की बिक्री और वितरण पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को 1 जुलाई से हटाने का फैसला लिया। बिजली बिल भुगतान समाधान योजना की अवधि 3 माह के लिए बढ़ाई जाएगी और मुख्यमंत्री आज सरगुजा जिले में रामगढ़ महोत्सव के समापन समारोह में शामिल होंगे। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री तथा वितरण पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध 1 जुलाई से हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के खुदरा पेट्रोल पंपों पर अब सामान्य व्यवस्था के तहत ईंधन की बिक्री होगी। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति सामान्य हो गई है और पेट्रोल डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित है, इसलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का निर्णय।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बिजली बिल भुगतान समाधान योजना की अवधि 3 माह के लिए बढ़ाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कल रायपुर के पास सोनपैरी में आयोजित कबीर जयंती महोत्सव को संबोधित करते हुए यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि इससे अधिक से अधिक उपभोक्ता सरचार्ज माफी और आकर्षक प्रावधानों का लाभ लेकर अपने लंबित बिजली बिलों का भुगतान कर सकेंगे। सरगुजा जिले के रामगढ़ में चल रहे 2 दिवसीय रामगढ़ महोत्सव का आज समापन होगा। समापन समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इससे पहले पर्यटन और संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने कल इस महोत्सव का शुभारंभ किया। महोत्सव के उद्घाटन अवसर पर स्कूली बच्चों और स्थानीय कलाकारों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री अग्रवाल ने रामगढ़ महोत्सव के 50 साल पूरे होने पर बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि रामगढ़ केवल सरगुजा ही नहीं बल्कि पूरे देश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण केंद्र है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज सरगुजा और रायगढ़ जिले के दौरे पर रहेंगे। इससे पहले वे मुख्यमंत्री निवास में खेल और युवा कल्याण विभाग की बैठक लेंगे। इसके बाद वे हेलीकॉप्टर से सरगुजा जिले के उदयपुर स्थित झिरमिति स्टेडियम हेलीपैड पहुंचेंगे। दोपहर वे रामगढ़ महोत्सव के समापन समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद दोपहर लगभग 2:30 बजे खरसिया रायगढ़ के लिए रवाना होंगे। प्रदेश में कल से सहकारिता सप्ताह मनाया जा रहा है। कल रायपुर में इसका शुभारंभ सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत सहकारिता आंदोलन के जनक पंडित वामन राव बलिराम लाखे को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और इस अवसर पर श्री कश्यप ने कहा कि सहकारी संस्थाओं को गांव गांव तक सशक्त किया जा रहा है और किसानों को समय पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। जांजगीर चांपा जिले के चांपा रेलवे स्टेशन के पास स्थित ओवरब्रिज पर 2 मोटरसाइकिल की हुई टक्कर में सड़क पर गिरा एक युवक तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद वाहन चालक वाहन समेत फरार हो गया। वहीं राजधानी रायपुर में ट्रैक्टरों से लदा ट्रेलर पलट गया, जिससे दुर्ग रायपुर मार्ग बाधित हो गया है। यातायात सुचारू बनाए रखने के लिए राहगीरों को एम्स महोबा बाजार मार्ग से वैकल्पिक रास्ते का उपयोग करने की सलाह दी गई है। बालोद जिले में पुलिस ने नौकरी लगाने के नाम पर ठगी के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार किया है, जो मुख्य सचिव से पहचान होने का झांसा देकर नौकरी लगाने का दावा करती थी। आरोपी महिला ने 7 लोगों से 25 लाख रुपए से अधिक की राशि की ठगी की है। पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल की बिक्री और वितरण पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को 1 जुलाई से हटाने का फैसला लिया। बिजली बिल भुगतान समाधान योजना की अवधि 3 माह के लिए बढ़ाई जाएगी और मुख्यमंत्री आज सरगुजा जिले के रामगढ़ महोत्सव के समापन समारोह में शामिल होंगे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 12 बजे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम कला और कलाकार।
1: दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा

कला और कलाकार कार्यक्रम सुनतोर सपाय गांव करिया दादा दीदी सियान सजन और संगजोरिया संगवारी मन के मैरेला करे से खुबे खुबे जुहार और रेडियो कटा बसला सपाय नोनी बाबू मन के मचो बाटले खुबे खुबे मया और खुबे खुबे चुमावले। तो भाई बहन मन तुम्ही तो पेज खादला सोती ने और पेज खाऊन डंडी एक रेडियो कटा बसला सोती। तो भाई बहन मन आजकाली तो गांव बाटे बोड़ा सा खूबे खाऊ मिरे से तो तुम्ही बले बढ़िया बोड़ा आमट खाए सास होती ने। तो आमी गांव चो लोग जो कितरो अच्छा गोटो ऐसे ने कि आम की कितरो महंगा जिनिस मन खाऊ मिरे से और एकदम नीरवा नीरवा जिनिस मन बले मिरे से। भाई बहन मन आमी दखू से आमचो गांव ने पारा ने कितरो कलाकार भाई बहन मन रहसत जोन समया समया ने आमचो जीवना ने आम की खूबे संग देसत अले दका ने आमी दखू से आमचो गांव ने बड़ैया थ नहाले लुहारात नहाले कुमारात नहाले बाउंस कला काम करतो भाई बहन मन ऐसोत नहाले बिजली मिस्त्री जो काम करतो भाई बहन मन रहसोत और मिस्त्री भाई बहन मन रहसोत जोन मन घर बनाए सोत बाजा बजातो लोग गीत गातो लोग सपाय लोग मन रहसोत ने और बहन मन जो बले खूबे सहयोग आसे उन मन बले कपड़ा सिल तो काम मन बल कर सोत ने और उसन कितरो काम बुता मन कर सोत जोन आम जो जीवना ने आम के खूबे संग उन मन देसोत। तो कलाकार भाई बहन मन समाज का चे सांस्कृतिक धरोहर आत ने और उनमन परंपरा और रचनात्मक अभिव्यक्ति जो जोन संवाहकत उन बल उन काम के बल उनमन कर सोत उनमन चित्रकारी मूर्तिकला संगीत नाचा नाट लोक कला हस्तशिल्प और बले कला मन के समाज के समृद्ध बनाए तो का जे खूबे कोशिश कर सोत और अधिक ले अधिक कलाकार मन के आर्थिक असुरक्षा और वित्तीय कठिनाई चो सामना बले करु पड़े से मांतर कलाकार भाई बहन मन ए कठिनाई के सामना करुन पाती बले कला के आगे बढ़ातो का जे खुबे मसागत कर शोध। अधिकांश कलाकार भाई बहन मन जो आय निश्चित नहीं रहे से और उन मन जो कमाई कोनी कार्यक्रम हो नहाले प्रदर्शनी हो नहाले बाना हो चित्रकला चित्रकारी हो मूर्ति कर तो काम हो और उसनी काम बुता मन ने कलाकृति मंचो बिक्री होलो ने उन मंचो आय जो ने उन निर्भर करे से और एक कार्यक्रम मन नी होलो ने उन मन के तो काई आमदनी नी मिले से। कई कलाकार भाई बहन मंचो कलाकृति जो मूर बले नी मिरे से और उन मन मेहनत मसागत तो खूबे खर्शोत मांतर उन मन जो जोन जिनिस मन होए से उनके बिचौलिया मन गिनुन नहसोत और उन मन खूबे धाम ने बिकसोत और जोन लाभ होए से उन बिचौलिया मन की मिरे से कलाकार भाई बहन मन के नी मिरे से और उन मन के उन मन जोन मेहनत होए से उन मन जो मेहनत जो आमदनी जो है उन मन के नी मिरे से। कलाकार भाई बहन मन हस्तशिल्प और पारंपरिक कलाकार भाई बहन मन जो जोन बाजार होए से उन खूब भी सीमित होए से बल्लो ने बाजार

कलाकार भाई बहन मन काजे खूबे योजना मन चलाए से। मांतर समिया ने कलाकार भाई मन बहन मन लगे यो योजना मन अमरे से के नी अमरे से उन बले दक्तर गोट होए से। और गोटक गोट जन खूबे जरूरी गोट होए से कि सपाय कलाकार भाई बहन मन लगे पेंशन, इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल बीमा और नियमित रोजगार जो सुविधा नहीं रहे से। काही बीमारी हो नहाले काही हनी अटक पड़ लो ने नहाले काही बली उनमन की दुर्घटना होली जाले उनमन की खूबे आर्थिक संकट जो सामना करुक पड़े से। काही बले आपदा एलो ने जसन महामारी हेलो नहाले काही प्राकृतिक आपदा होलो नहाले आर्थिक मंदी होलो ने उन मन के कोनी प्रदर्शनी नी मिले से कोनी मेला मड़े नी होए से उसन ने उन मन जो कमाई जो साधन जो ना

काही बले आपदा येलो ने, जसन महामारी हेलो, नहाले काही प्राकृतिक आपदा होलो, नहाले आर्थिक मंदी होलो ने, उन मन के कोनी प्रदर्शनी नी मिले से, कोनी मेला मड़े नी होए से, उसन ने उन मन जो कमाई जो साधन जो ना

0: होए से उनमन का जे बाजार ने स्पेस बना दोर और उनमन के डिजिटल ट्रेनिंग आजिकाल जो जमाना ने जोन ई मार्केटिंग होए से ने ई कॉमर्स जो जमाना होए से तो उनचो काजे उनमन के आपलो जिनिस मंचो प्रचार प्रसार करतो काजे आपलो कला के और खुब्बे लोग लगे अमरातो काजे उनमन के सोशल मीडिया ने कसन कसन काम करतो राय उनमन के ट्रेनिंग देतो और खुब्बे जरूरी होए से कसन बल्ले आज जो समय आने उन्हीं खुब्बे चले से और गवर्नमेंट बाटले जोन योजना मने है से शासन बाटले जोन योजना मने है से जोन अनुदान मने है से और जोन लोन मंच प्रावधान होए से उन मन के बले सब पाए कलाकार भाई बहन मन लगे अमरा तोर खूबे जरूरी होए से उन मन के सरकार चो योजना मंचो प्रति जागरूकता अंतर काजे बले कोशिश करू पड़े दे और जोन कला जो मेला होए से प्रदर्शनी होए से सांस्कृतिक आयोजन होए से उन मन के बले उन मन के जानकारी दे तोर और उन प्रदर्शनी ने सपाए कलाकार भाई बहन मन के अमरातो काजे कोशिश कर तोर जरूरी होए से और कोनी मन कॉपीराइट करसो कलाकार भाई बहन मन जो कला की कॉपीराइट करसो तो उन मन के कॉपीराइट कानून जो कड़ा ले पालन करातोर बले जरूरी होए से और ये तो खूबे जरूरी गोट होए से कि उन मन के पेंशन बीमा और जो समाज जो सुरक्षा होए से उन बले दिलातोर खूबे जरूरी गोट होए से कलाकार भाई बहन मन आप लोग संस्कृति के परंपरा के और खुब्बे रचनात्मक चीज मन के संरक्षित करुन संगाए सोतने उन मन जो आर्थिक स्थिति मजबूत होली जाले उन मन आप लो कला के और ऊपरे उठा दे और उठा तो काजे उन मन विचार कर दे और खुब्बे मेहनत मसागत एबे तो कर सोत लेकिन उन मन के आर्थिक सुरक्षा मिल ली जाले उन मन और अच्छा ले खुब्बे मेहनत कर दे और आप लो कला के नंगत ले और नंगत बना दे उन्हीं का जे सरकार और समाज सपाए लोग जो जिम्मेदारी होए से कि कलाकार भाई बहन मंचो आर्थिक चुनौती ने आमन उन मंचो साथ देव ने तो भाई बहन मन ए तो रली ज्ञान दियान छो गोट मंत्र आजी आम जो लगे गोटक जहाला बले आसे आले ए जहाला के आमी सुनो
1: क्या बात है उमेश आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
2: हाँ यार पत्रकार जो हूँ।
1: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
2: सुधीर मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
1: उमेश स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम पता फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
2: क्यों?
1: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
3: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
4: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
5: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
6: इत बदले मत्तांक अच्छा मानेडा इलाज सुडून सस्ता आता सेंगेन वेटरनरी सर्जिकल जाकी और वेंट सामान किन मोलवेंट कम मत्तांक जानवर किन इलाज तकवेंट राहत दरकना उम्मीद मिंदे यू पूना मोलते ग्राहक लोर्क और व्यापारी लोर्क फायदा दरकिता जीएसटी तक कोंडे पूना मोला 22 सितंबर 2025 तीना लागू आयन मिंदे।
0: तो भाई बहन मन ए नंगत गोट मन के तो आमी सुन लू ने मानता रे दे कहा तो गोटक लोक गीत संगाऊ रले। हाँ हाँ मिरली मिरली मिरली आले ये गीत गोविंद के आले आमी सुनू फिर आमी गीत कुड़िया मन के चिताऊ।

0: हाँ, तो ये नंगत नंगत गीत के आमी सुनलू ने आले गीत कुड़िया मन के तुम्हें चितालास। हाँ, लकेश्वर कुद्रा मरुंचो संगवारी मान। तो भाई बहन मन ये नंगत गीत के तो सुन लू मानतर आमचो लगे अदाय गोटक जहाला आसे आले ए जहाला के आमी सुनू।
1: किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाट एदाए रोज शनिवार के सांझ बेरा 7:30 बजे ले 8 बजे तक सुना फोन इन किसान वाणी। यथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे दे आपन मन चो खेती कमाने ले जुड़ लो सपाय समस्या चो समाधान। बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे। और हाँ, ये कार्यक्रम चो रिकॉर्डिंग होय से रोजे मंगलवार अड़ौ पहार 3:30 बजे ले 4 बजे तक। तो आपन मन सपाय सुना और आप लोग सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा। आमचो फोन नंबर आय 07782222666। फोन इन किसानवाणी आपन मंचो सवाल आपन मंचो कहानी खेती बाड़ी चो जुबानी आकाशवाणी जगदलपुर ने।
2: मिस सीमा
3: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
3: क्यों, लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
3: डिजिटल अरेस्ट?
2: 1 लाख दो बन जाओगे।
3: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो वरना बेटा जेल जाएगा।
3: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
4: हेलो मम्मा।
5: RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
8: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
7: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
8: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
7: आकाशवाणी से।
9: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
0: हाँ, ये नंगत नंगत गोट मन के तो आमी सुन लो ने। तो भाई बहन मन, आमी देखूं से कि आमचो ठान ने, आमचो माटी ने कितरो बड़े बड़े महान कलाकार मन जन्म दरला से। और आप लोग कला के खूबे मेहनत मसागत करुण बाती इतरो ऊपर उठाला कि उनमन आप लोग संग संगे आमचो गांव चो, आमचो समाज चो।

जो देश जो नाम खूबे दूरले रोशन करला। तो उसन कलाकार भाई बहन मंचो उसन कलाकार मंचो गोट बात आमी करते रहूं से ने, तो उसन कलाकार मंचो जीवनाचो गोट की आमी करूं से। तो आजी आमचो जन कलाकार रात उन मनात जामिनी रॉय। जामिनी रॉय भारतीय आधुनिक कला जो असन महान कलाकार रलाय, जुनमन आपलो भारतीय लोक कला के आधुनिक चित्रकला जो केंद्र स्थापित करला। उनमन जो जन्म 11 अप्रैल 1887 ने पश्चिम बंगाल जो बांकुड़ा जिला जो बेलियारी तोर गांव ने हुई।

जो असन महान कलाकार जुनमन आपलो भारतीय लोककला के आधुनिक चित्रकला चो केंद्र स्थापित करला। उनमन चो जन्म 11 अप्रैल 1887 ने पश्चिम बंगाल चो बांकुड़ा जिला चो बेलियारी तोर गांव ने हुई।

समियाने सपाय कलाकार मन यूरोपीय शैली जो अनुसरण करते रहला। मंतर जामिनी राय मन भारतीय लोक कला के अपनाउन भाती यह सिद्ध करला कि लोक कला बले उच्च कोटि जो कला बनुक सके। उनमन विदेशी प्रभाव जो ठान ने भारतीय संस्कृति और परंपरा संगे संगे लोक जीवना के बले आपलो भीतरे आधार बनाला। ए मंचो उसन प्रयास काजे भारतीय कला के गोटक विशेष और अलग पहचान मिरली। उनमन जो बाना ने ग्रामीण जीवना संताल जनजाति और केथियर भाई बहन मंजो गोट बात माँ और बेटा लोक नाचा चेड़े चढ़ूम जनावर मन और भगवान श्री कृष्ण और राधा रामायण असन धार्मिक विषय मन मूल रूप ले दकुक मिरला। उनमन जो विशिष्ट चित्र शैली वैसे कंडिक मोटा और चकचका दक्तोर लहीन चमकतोर और सलमट रंग मन जो उपयोग उनमन करला। खुब्बे सरल और नंगत नंगत बाना चीना मन उनमन बनाला। देसी और प्राकृतिक रंग मन जो उपयोगता करला। कंडी कम रेखा ने कंडी गहरा प्रभाव उता दकाला। स्वदेश भावना चो प्रचार करला। उनमन विदेशी कैनवास और महंगा रंग मंचो बजाय स्थानीय और प्राकृतिक रंग मंचो उपयोग करला। असन ने भारतीय कला ने स्वदेशी विचारधारा के खूबे बहू मिलला। उनमन आपलो जनबाना हुए से चित्रकृति बोलो से आमी उनके तो उन मंचो अपेक्षाकृत सुलभ बनाला। उन चित्रकला जो नोए से उन बाना जो नोए से उनके उनमन खूबे सरल बनाला और आप लोग कला की इतरो सरल बनाला कि जो आम लोग रह सोत उन मन के बले समझ में ये उन मतलब उन मन जो कला के लोग मन सपाय लोग समझुक सको तो उन मन के कठिन नहीं लागो। जामिनी रॉय ये सिद्ध करला कि आधुनिकता जो मतलब नुआ जो मतलब बाहरी कला की अपना तो नहीं वैसे बल्कि भारतीय परंपरा के नुआ रूप ले आमी मोर करुक सकू। उन मंचो बाना ने प्रमुख माँ और बेटा चो बाना रली और दुजन बिलई मंचो बाना रली और संताल ढांस रली और श्री कृष्ण भगवान और राधा मैया चो बले बाना मन रली। उन मंचो कला चो सेवा काजे भारत सरकार सन 1954 ने पद्म भूषण ले उन मन के खूबे सम्मान दिला। जामिनी रॉय मन भारतीय लोक कला के खूबे संरक्षित बले संगाला और संरक्षित तो संगाला ची मानतर उंचु संगे संगे आधुनिक चित्रकला जो अभिन्न हंग बले बनाला। उनमन भारतीय कला परंपरा के पूरा देश ने आप लोग कला के दकाला और उन्हीं कारण उनमन के भारतीय लोक शैली के आधुनिक कला ने खूबे प्रतिष्ठा दिला तो भी थी अग्रणी चित्रकार बलून सब पाए लोग जानला। तो उसन कलाकार के हमी सपाई लोग खुबे मान देऊ से और खुबे खुबे सम्मान बले हमी देऊ से। तो भाई बहन मन ये तो गोटरली जामिनी राय जो जोन लोक शैली जोन रहे से उनके आधुनिक कला ने खुबे मान दिलाला। तो भाई बहन मन ए नंगत नंगत गोट बात मन तो होली से मानतर आम जो मुंडरा ने गोटक गीत गोविंद और दका दे से तो आले ए गीत के आमी सुन।

हाँ तो भाई बहन मन ए नंगत गीत की तो आमी सुन लो ने ए गीत की गाउरला गीत कुड़ीन बहन बुद्री और उनचो संगवारी मन तो दादा दीदी मन ए नगत ज्ञान ध्यान और गीत गोविंद तो होली और संग संगे मचोर जातो समयाबली होली से तो जातोर पूरे कला और कलाकार कार्यक्रम सुनतोर सपाए गांव करिया दादा दीदी सियान सजन और संगजोरिया संगवारी मन के।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कला और कलाकार। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय दिन के 12:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम।

हाँ, मैं तो अमरली और बहन मन तुम्ही बले रेडियो कटा बसला सो 300 यानी क्राउन ने तो बहन मन घर द्वार कार्यक्रम सुन तोर सपाय बहन मन के मैं रेला करे से खुबे खुबे जोहार और रेडियो कटा बसला सपाय नोनी बाबू मन के मचो बाटले खुबे खुबे मया तो बहन मन तुम्ही तो पेज पानी खादला सोती ने और घर जो जमाए लोग के पेज बाद बले दिला सोती तो बहन मन आजिकाली तो तुम्हें खुबे बास्ता बोड़ा मन बले कायसत होती ने और खुबे बरन बरन जो भाजी मन बले मेरे से आजिकाली तो चरोटा भाजी मन बले मेरे से ने उन भाजी मन के चना संग बना लो ने आम के कितरो नगद लगे से और कंडी तपलो तपलो पेज होलो ने खा तो कजे आम के और नगद लगे से ने तो बहन मन आम की तो के भी काम कम नहीं हो ऐसे ने कुकड़ा बासले उठन बाती काम करुन करुन राती होन जाए से मानते राम चो काम नहीं सरे ने अले तक आप बिहाने बल्ले उठन बाती घर चो दुआर आए नहाले गोबर आए ने आ घर चो घर भीतर चो बुताए सराए बाड़ाए लिपाए पोताए ने और जाचो घरे नानी नानी नोनी बाबू मन रहसो उन मन के नहलातर धुलातर उन मन कच फिर अलग से एनी खाए माँ उन खाएं दे बल्लो नी उन चो कच फिर नाश्ता पानी बल्ले कंडी दूसर दूसर बल बनाओ पड़े से और घर ने सफाई परिवार जो लोग का जरांदा बड़ा बल करुक पड़े से और घर ने काम कमाने जा तो लोग मन कज बले पेज पानी देव पड़े से ने और कोनी बड़े बुजुर्ग लोग रला जाले उन मंचो सेवा साधना बले अलग होए से और ऐसे संग संगे आज काली तो बेड़ा खड़ा चो काम बले होए से तो उन बाटे बले आम की कंडी संग देव जाओ पड़े से ने और कोनी कोनी बहन मन तो ऐसे संगे संगे आप लो काम धाम कोनी धंधा पानी बले कर सोत कोन बहन मन सिलाई कढ़ाई बुनाई जो काम कर सोत नहाले कोनी बहन मन दुकान बले खोलला से होती ने तो उसन काम मन काज बले आम के समय निकराउ जाऊक पड़े से तो बहन मन आमी देखू से कि कंडी आमी लेट ले उठलो ने आम जो काम मन सब एता उता होन जाए से तो आम के बिहाने उठलो ने का है कि बिहाने उठ तोर आदत जनो ऐसे उन कुबे नंगत लागे से बिहाने उठलो ने आए कि आम जो सब पाए काम जब के सरलो असन कंडिक लागे से ने नहाले कंडिक लेट उठलो ने तो सब पाए ए कहाँ से उन कहाँ से डगराउन नी मीरे से काय ऐसे उसन ने आम के खुबे लेट होन जाए से तो बहन मन बिहाने उठ तोर आदत खुबे नंगत ऐसे।

0: करलो ने जो नाई की आमचो दे जोन रहे से उन मजबूत और खूबे बफूबीती रहे दे और जोन बीमारी सीमारी रहसोत उन मनचो लड़ तो बीती बफू बले कंडिक बड़े दे और नुआ बीमारी मन बले आए आमचो देह ने डंडिक नियाओक सब दूरे दूरे रहसोत आप लो मन ताजा रहे दे और आप बफूबीती रहे दे और जोन बीमारी सीमारी रहसोत उन मनचो लड़ तो बीती बफू बले कंडिक बड़े दे और नुआ बीमारी मन बले आए आमचो देह ने डंडिक नियाओक मन मन काजे बले बिहान जो समय खूबे अच्छा हुए से कसन बल्ले ए समय ने जोन पढ़ू से आमी जोन ध्यान करूं से आमी उन खूबे समय ले आमचो मन भीतरे रहे से आमचो मन भीतर चो जोन काई बले तनाव है नाले कहा बले डर है उन मन बले दूर हो जाए से जोन विद्यार्थी मन बिहान समय ने उठून पढ़ सोत उन मन के पढ़लो विषय खूबे समयाले सुरता रहे से और कठिन कठिन विषय मन बल रह से ने उन मन के बले समझ तो काजे सरल होए से और परीक्षा ने अच्छा नंबर आन तो काजे खूबे मदद मिले से बिहानी उठलो ने आपलो जीवना ने समयाचो पाबंदी के बले आमी जानुक सकु से और अनुशासन अपनाओ से ने और आत्मविश्वास बले खूबे विकसित होए से ए आदत उन मन के खूबे जिम्मेदार बनाए से बिहाने जबकि उठतोर आदत रलो ने आमचो जीवना ने दिन भर काम करतोर बपू आम के मिले से बल्लो ने आम दिन भर आम के ताजा ताजा लागे से और आमचो मन नी थके से और बिहाने पूजा पाठ ध्यान जप प्रार्थना आसन आम काई कर रलो ने आमचो मन कितरो निर्वाह हो जाए से तुम्ही तो जानासी बिहाने उठलो ने आमचो देह आमचो मन शिक्षा दीक्षा अनुशासन सफलता सपाय मिरे से और समय ने सोन प्रतिदिन जबके सपाय लोग की उठतो रहे मंत्र बहिन मन आमी तो दखू से कि आमचो जीवना ने समय समय ने कितरो बदलाव है ऐसे जसन कि आजकल जो समय हो ऐसे उन मोबाइल और इंटरनेट जो समय हो ऐसे तो मोबाइल ने लोग काई काई दक्षोत बले काई काई पढ़सोत बले नहाले सपाई काम मोबाइल ले करसोत बले तो उन्हीं का जे सोतर बले खूबे लेट हुए से कोनी कोनी तो राती बेरा खूबे राती तक काम करते रहसोत ने जोन मन ऑफिस जाए सोत उन मन तो 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक उन मन जागते रहसोत तो उसन ने आम के बिहाने उठतो काजे कंडी लेट बले होए से और आम जो दिनचर्या जोन रहे से जीवनाचो उन बले बदले से बल्लो ने आम जो खातोर सोतोर समया जो ठिकाना नहीं रहे से के बे तो 12 बजे बाद खाऊं से के बे तो 10 बजे खाऊं से जब मन कर ले तब हमी खाऊं से तो उसन ने आम जो सोतोर समया बले बिगड़े से और उठतोर समया बले बिगड़े से आज काली दखू से की सपाय लोग मन पढ़ सोत लिख सोत कौन तो ऑफिस ने जा सोत नहाले कौन एक काम कर सोत दुई काम कर सोत उसन ने उन मन चो जो जिम्मेदारी होए से उन खुबे बढ़ जाए से और काम खुबे होए से तो आम चो जीवना ने जो तकलीफ होए से जो तनाव हमी बोलू से ने आम चो दिमाग चो उन बले बड़े से तो उसन ने बिहाने जबकि उठ तो काजे बले कंडी मुश्किल होए से और आजकल तो हमें देखू से कि मनोरंजन जो खूबे साधन आम छो लगे आसे टीवी आसे नाले मोबाइल आसे उता आम नाना प्रकार चो मनोरंजन चो सामग्री मन उता आसे तो उनके दखुन दखुन खेबे कबार तो हमी 2 बजे 3 बजे बोले सोसे तो उसन ने आम के उठ तो काजे बोले कंडिक लेट हुए से और कोनी कोनी लोग मन के आप लो स्वास्थ्य चो समस्या बल रहे से तो उन मन की उठतोर सोहतर कंडिक लेट हुए से और आमचो जीवन शैली बले आजकल बदले से आमी शहर जो जोन जीवना होए से उनके बले अपनाऊ से तो उन चो चल तो ले आमचो जोन जीवना होए से उन बदले से और आमी बिहान ने उठू बले नहीं सकू से और हम देखू से कि आमचो खान पान बले बदले से तो उसन ने आमचो सोतोर उठतोर समय बले कंडिक बदले से मंत्र भाई बहन मन बिहानी उठलो ने आम जो खूबे काम आसान हो जाए से और आम जो जीवना काज बले आम जो देह काज बले खूबे अच्छा होए से तो आम के बिहानी उठतोर कोशिश करतो रहे और राती बेरा जबके सोतोर बले कोशिश करतो रहे तो भाई बहन मन ए गुड बात तो रहे से जी मंत्र आम जो लगे कुटक जहाला आसे आले ए जहाला के आमी सुनो
1: GST चो दर के कम

0: सरलो ने सोझे मनुख जीव चो इलाज खंडिक सस्ता नहीं होली से बल्कि जनावर मन चो इलाज बोले सस्ता हो तो भरसा आसे। जीएसटी ले वेटनरी सर्जिकल चो सामान सस्ता होली से नुआ कीमत ले सामान बना तो लोग और घेन तो लोग दोनों के लाभ मिरे दे। ये नुआ जीएसटी दर 22 सितंबर 2025 ले लागू हो दे।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
3: सो बिड़किन बिड़िया राहत तिंदनाथ उंडाना सामान तलाय दरकता डबल रोटी आरी और छेना पनीर असित के इंजे जीएसटी लगे मयो इदेन संगेन 33 जरूरी दवाई नद मोला वेंट कम की सित तोड़ अदेन के इलाज तलाय खर्चा वेंट कम लगे माता जीवन बीमा तगवेंट इंजे जीएसटी छूट दोर किता अदेन के पॉलिसी पोईतनद इंजे सस्ता आंता सुडला कार गाड़ी और 350 सीसी ता कोटरो गाड़ी ता पर्रो 28% जीएसटी मत्ता अद कम मास इंजे 18% अत्ता इदेन मतलब इद की इंजे गाड़ी पोटरो गाड़ी असित के सस्ता दोर कीता।
4: किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाट एदाए रोजे शनिवार के सांझ बेरा 7:30 बजे ले 8 बजे तक सुना फोन इन किसान वाणी यथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे दे आपन मन चो खेती कमाने ले जुड़ लो सपाय समस्या चो समाधान बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे। और हाँ ये कार्यक्रम चो रिकॉर्डिंग हो से रोजे मंगलवार अड़ौ पहार 3:30 बजे ले 4 बजे तक तो आपन मन सपाय सुना और आप लोग सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा। आमचो फोन नंबर आए 07782226666। फोन इन किसानवाणी आपन मंचो सवाल आपन मंचो कहानी खेती बाड़ी चो जुबानी आकाशवाणी जगदलपुर ने।
5: तो बहिन मन ए नंगत नंगत गुट मन की तो आमी सुन लू ने मांतर अदाय समय आवली से भेंट वार्ता चो और आज ही आमचो संग्यासोत बहिन मन की कुर्राम जोन चंपापुल सोसायता समूह चो सदस्यात और उन मन के भेंट कर सोत सीआर मरकाम आले मन चो गुट बात क्या मी सुनु।
4: घर द्वार सुन तो सपाय दीदी मन के जुहार। तो दीदी मन असन है काम बुता तो हम करूं से काम बुता बोलन कई कसन बुता हो से जे क्या मी आमचो जीवना ने करूं से और आमचो पीला झीला हो नाल घर परिवार हो उनके आमी चलाऊं से भले आमी मेहनत मसागत तो करूं से मांतर नानी असन काम ले भले आमी बढ़ती करुक लाई सकूं और उन्नति करुक लाई सकूं वही हिसाब ने मैं आज फिर गोटोक दीदी संगे गुड बात करें से। तो दीदी तुके सब लागे जुहार
6: जुहार।
4: तुचो नाव और गांव चो नाव के सांगोनेस।
6: मुझो नाम मन की कोरामा है मैं ग्राम पंचायत चिनबार डोंगरी पारा लाए।
4: अच्छा और दक मन की दीदी तुझो बोलीस की तु भी काय काम बुता कर सी जाले असन सोसाता समूह आए कि कहीं असन तुझो स्वरोजगार बीती का यहाँ से जाल।
6: नहीं मैं तो समूह बल जुड़ ले से और मैं हुंतन केडर के रूप में बल काम करूँ।
4: अच्छा अच्छा तो स्वसहायता समूह चो नाव रख सांगोंदेस।
6: मुझो समूह चो नाव है चंपापुल समूह।
4: अच्छा कित बर कसन होली जाले जो जो ये समूह ने
6: 2017।
4: अच्छा 2017 ले जुड़ला।
6: हाँ।
4: तो किस जान आसन आसाद जाले महिला मन तुम्ही ये था
6: 11 जना सदस्य।
4: अच्छा हाँ हाँ तो ये स्वसहायता समूह ले जुड़न बाती ये भी कहीं कर सोत कहीं काम धाम स्वसहायता समूह जैसन लोग जुड़ुआत उता महिला। हाँ। मन और कहीं नाल कहीं काम धंधा बोल करुआत।
6: हाँ।
4: पंचायत हो नाले कहीं असन स्वरोजगार करते हिसाब ने कहीं भी चले तुम जो समूह ने
6: ये भी तो नहीं चले।
4: हाँ हाँ।
6: बस पंचायत ले मांग कर लू से।
4: अच्छा।
6: कुछ काम दे दिलाओ बोलते।
4: हाँ हाँ।
6: सरपंच सचिव ले।
4: अच्छा और ये जैसन केडर बल लिए तो उनचो कसन काम आए जाले तो जो
6: केडर मैं भन ले से 4 ग्राम संगठन दुकवाए।
4: हाँ हाँ। मतलब
6: 3 पंचायत ने 4 ग्राम संगठन आसे।
4: अच्छा
6: तो हुन तानो जितलो बल समूह आसे।
4: हाँ हाँ।
6: वो 400 ने 60 समूह आसे।
4: अच्छा तुम मन चो जसन ट्रेनिंग मन बल हुआ है उसन करावास के तुई बल करवास जाले।
6: हाँ ट्रेनिंग बले दिवाम और ये जसन की लोन दिला तो रहा है।
4: हाँ हाँ।
6: बैंक ले या फिर ग्राम संगठन ले।
4: अच्छा
6: दीदी मन के समूह के।
4: हाँ हाँ। तो जसन ये समूह जुड़ता तो 2017 ले जुड़ लीस बोली सर केडर भी ती कित बार खोली जाले छो।
6: हाँ 2017 ले ही मैं समूह।
4: अच्छा।
6: जुड़ ले और उदली दाले केडर काम करूँ।
4: हाँ हाँ ये थाने जसन तो ये भी बोली 3 पंचायत बोली।

0: तीन पंचायत चार ग्राम संगठन।
1: अच्छा अच्छा, तो एक ग्राम संगठन बोलो न कसन हिसाब आए जाले, मतलब समूह असन रुआई के कसन रुआ ग्राम संगठन ने
0: हुन असन रुआ कि गांव ने जैसन 10 या 15 समूह रोन बाती एक ग्राम संगठन बनवा।
1: हाँ, हाँ।
0: जैसन कि 10 ले 15 दीदी ने एक समूह बनावा, तसनी 10 ले 15 समूह मिसुन बाती एक ग्राम संगठन बनवा।
1: अच्छा,
0: हाँ, हाँ। ग्राम संगठन बोलवा।
1: अच्छा अच्छा, एक केडर बोलो ने हर समूह ने हर पंचायत ने रुवत का अलग अलग, जैसन केडर मन रुवत पंचायत तो अलग अलग है सपाए। हाँ। गाँव चो तो सपाए गाँव ने एक एक जन रुवत कि तीन तीन पंचायत दो दो पंचायत मिसान बात बनावा जाए।
0: नहीं, मैं एपल सीआरपी चो काम करूँ है तो मुके चार ग्राम संगठन में लिस्ट, तीन पंचायत चार ग्राम संगठन।
1: अच्छा।
0: अशक्री महिला कृषि सखी पशु सखी आरवी के एपल सीआरपी रुआ था।
1: हाँ हाँ।
0: तो और पंचायत ने तीन केडर अलग से रुआ था, हम दो केडर जन असन रुआम जोन चार ग्राम संगठन के दुकान।
1: अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। तो इता जसन ये भी खूब सारा सांगली जसन पशु सखी बोल होली बोली और असन उमन चो बोल तुम्हें ट्रेनिंग वगैरह बोल करा भास के उमन चो कसन हिसाब रुए जन।
0: नहीं, हुन मन की बाहर ले ट्रेनर हुआ था। अच्छा, ट्रेनिंग दिवा था।
1: हाँ हाँ। तो उन चुका बोला अलग महिला मन रहे सोत कि तू ची सहायता समूह नहीं ची जोन महिला मन आसा 11 जन तो उन्हीं मन ची पशु सखी रुआत के अलग लेवल रुआत
0: जाली। नहीं, समूह ले जोन दीदी झुड़ली से हुनी रुआ है।
1: अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, मतलब ये
0: अलग ले नहीं रहे समूह ले जोन बा नी जुड़े उन दीदी नहीं रहे।
1: हाँ हाँ, तो ये सब काम काज बोलो सहायता समूह ने जुड़ता रहे बोलो वे जरूरी है।
0: हाँ
1: हाँ हाँ,
0: कि समूह ने जुड़ ले उनके जानकारी मिले से, अगर समूह ने नहीं जुड़े हुन दीदी तो उनके कई जानकारी नहीं रहे।
1: आई जी, हाँ हाँ। तो दख मन की दीदी पढ़ा लिखा हिसाब ने कितना पढ़ लिखे जाले?
0: मैं ग्रेजुएशन।
1: अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। तो दख इतलो पढ़ा लिखा तो आसित मानतर ये काम के कर सी, तुझो मन अच्छा लागे से ये काम के करो, संतोष
0: हाँ,
1: लागे,
0: लागे से अच्छा लागे से।
1: हाँ हाँ, आई छी। और दखे बे बोलो बे पढ़ा लिखा तो होसो जितलो बोल जुआन दादा दीदी बनासत भाई बहन बनासत, नौकरी ची बाटे जाऊन बाती नौकरी करें बोले उनचो उम्र बोले होते जाए से, नौकरी अभी मिलतर खिनिक बोलो ने नीमी रहे से, ज्यादा मेहनत मशागत करूक लागे से, पढ़ा लिखा ज्यादा लोग होला काय कसन, तो आम के आमचो धंधा पानी नाला आमचो कहीं बोले रोजगार खिनिक आमदनी मीरो बोलते काई नल काई काम कर लो नहीं आमचो काचे अच्छा बल होए से आई कसन आई छी। और दक तुचो जन गोट के एबे तु सांगलीस की सहायता ले समूह ने जोड़न बाती केडर बल दक्षित तु तीन पंचायत चो केडर मतलब संभाल सी तो अच्छा है ऐसन बने। और कुछ चाहे से कि के भी असन ग्रेजुएट होलिस तो उन चला आगे कहीं पढ़ तो काची कहीं मन नहीं कर लिया आगे पढ़ाई जो जो असन कहीं हिसाब
0: उसन तो नहीं, मैं भी बल पढ़ाई करूँ छी आए।
1: अच्छा अच्छा,
0: बोले काम करते करते हाँ, मैं पढ़ाई इन बले झूठ ले से भी।
1: अच्छा हाँ हाँ, तो जैसन ये भी बोल लीस तु ग्रेजुएट बोलते कौन विषय ने कर ली सी जाली
0: हेबे एमए कट का सोच ले से फिर कंप्यूटर।
1: अच्छा अच्छा
0: सब।
1: हाँ हाँ, नहीं स्नातक जोन बल ली सुन कौन बी ए कर ली।
0: हाँ हाँ, हाँ।
1: और दीदी ये सांग की जसन ये भी तो बल ली से 2017 ले जुड़ ले बोलते तो ये थान जितलो बोले महिला मनासोत असन पैसा कौड़ी चो लेन देन आए नहाले जसन कोनी ब्याज नहीं दीवात पैसा असन बैंक ले लोन नहीं करावात असन कहीं काम बल हुआ है तुम चो समूह ने?
0: हाँ हुआ है।
1: अच्छा।
0: समूह के लोन बल दिलाऊ है हनुमान चौ जीविका कर तो का जी।
1: हाँ हाँ, तो जसन कोनी धरुन बाय जसन काम धाम काजे बल धरलास की असनी ची जसन निकरू आए सौता ता समूचो पैसा और उन अपना हन काजे बटुआत तो उन पैसा के काम धाम ने बोल लगाला की गसनी आप लोग?
0: नहीं, उन काम धाम ने बोल लगा हुआ ता और आप लोग घर
1: गृहस्थी
0: पढ़ाई लिखाई ये सब काज बल कर छुआ।
1: अच्छा अच्छा, बोलो बे तुम चो इस सहायता समूह ले जुड़न बाती मतलब आप लोग आर्थिक मदद जोन हो से खिनिका दक उन मीरे से बोलो ने?
0: हाँ।
1: बोलो बे जैसन ब्याज कसन हिसाब रुआ जाले बाकी लोग तो असन जोन सहायता समूह ने नहीं आत उनमन के ब्याज अगर धरुआत बैंक भी मन तो तुमन मन के कम आए असन लागे ये सहायता समूह लोग के?
0: हाँ,
1: ब्याज कम,
0: ब्याज तो कम ही आए।
1: अच्छा अच्छा, और बाकी जसन गांव पारा लोग के बोल को कि चीपा पोड़ है पैसा कौड़ी तो उसन लोग के बोले ब्याज नहीं दीवा हास पैसा मन?
0: नहीं नहीं देवत।
1: अच्छा, बोले तुम्ही ची उठान बाती उताई तुम्ही ची फिर पठावा?
0: हाँ
1: हाँ हाँ। और ये तुम चो सहायता समूह हिसाब ने ये भी तो कहीं नहीं करो पड़ता तुम चो पहले कहीं चलते रहे काम?
0: पहले तो बल कहीं नहीं असन चलते।
1: अच्छा, बोलो बे
0: बे साफ सफाई वीती का जे एक बार पंचायत ले बोलू रहला लेकिन एक दो बार काम कर लू पैसा वैसा नहीं मिल ली।
1: हाँ, हाँ।
0: दीदी मन इंटरेस्ट नहीं धरला।
1: अच्छा, और ये मांग कर ला साथ बल्लीस तो मांग कहीं पूरा हो लो नहीं फिर उन काम को मुर करा से।
0: हाँ
1: हाँ हाँ, तो इधर सन तीन पंचायत ने तुम जो केडर बल्लीस तो

0: थाने बोले स्वसहायता समूह मन कितक ठान के दकवाज जाले
1: मुचो चार ग्राम संगठन ने 60 समूह ही हुआ है
0: हर 60 समूह
1: हाँ 60 समूह ही हुआ है हर गांव ने अलग अलग
0: अच्छा
1: कौन तो गांव 10 आसे तो कौन तो गांव 20 आसे
0: असन मतलब सबके जोड़न बात नहीं तो ये जो जसन ये भी चमास बता रहा है नाहले जेट है असन समय ने जसन पंचायत ने दूर दूर बला से होती गांव पर तो उसन जातता ने कहीं असन समस्या कहीं नहीं होइस तो मन मन के जसन महिला मना हास तो
1: असन तो नहीं होली से भी फोन चो माध्यम लेवल खूब सारा काम हुआ है और दीदी ये भी हम जाऊं जान हुन मन संगे मिल्लू से अरे मनाम चो काम करवात बोलते हुन मन अच्छी तरह ले जानला से तो असन कई बहाना नहीं बना हुआ था हुआ था असन करता है उन तन यात्रा है बल्ले अच्छा, मानवा था
0: हाँ हाँ तो दक मन की दीदी और तुम जो काम धाम बल अच्छा चले से तो और आगे जसन मांग करला सा तो नहीं साहब ने मांग पूरा होलो नहीं उनके बल करा से बल्लीस तो ये सब गोड़ बात के सरसर आले सांगली साले चुका चे तो के खूबे खूबे जुहार
1: जुहार
2: तो बहिन मन ए गोट बात के तो आमी सुन लू ने तो ये मंडल है चंपापुर सोसायता समूह जो सदस्य रला बहिन मन की को राम और उन मन के भेंट करते रहोत सी आर कश्यप तो बहिन मन आम सुन लो कि मन की को राम जन बहिनात उन मन सोसायता समूह ने भिड़न बाती कितरो नगत नगत आमदनी का जी काम मन कर सोत ने तो ये नगत नगत गोट मान बात मन तो होली ने मानतर आम चो मुंडरा ने अदय गोटक गीत गोविंद धका दे से तो आले ए गीत की आमी सुनो गीत कुड़ीन मन के पाचे आमी चितावा

गीतके तो आम्ही सुनलो ने, तो ए गीतके गाऊरला बसंती और उन मन जो संगवारी मन। तो बहिन मन ए नंगत गीत की तो सुन लू मांतर गोटक गीत गोविंद और दका दे इसे आले ए गीत के बले सुनो फिर आमी गीत कुड़ी मन की।

0: di tu moco jodoh tergera siapa lo asal hai si bolun di le selikan kira siapa
1: तो बहिन मन ये नंगत गीत की तो आमी सुन लो ने तो ये गीत के गाउरला बालमती और उनचो संगवारी मन तो बहिन मन एचु संगे संगे मचो जातोर समयावली होली से तो जातोर पूरे घर द्वार कार्यक्रम सुन तोर सपाए बहिन मन के मैं रैला करे से कुबे कुबे जुहार।

0: अभी आप हमारा ये कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय दिन का 1 बजने को है। अब हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कृषि क्षेत्र के विकास के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। हरियाणा के हिसार में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करने पर काम कर रही है जो मिट्टी और उससे आवश्यक उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। उन्होंने किसानों को जैविक खेती अपनाने की भी सलाह दी।
2: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है, जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहां भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
1: श्री चौहान बाद में पूर्वोत्तर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। सरकार ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के सामने अपील करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय के अनुसार पिछले वर्ष सितंबर में जारी अधिसूचना में अपील दायर करने की अंतिम तिथि इस वर्ष 30 जून निर्धारित की गई थी। विभिन्न हितधारकों ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर करने की भारी संख्या के कारण आई तकनीकी बाधा का हवाला दिया था, जिसके बाद सरकार ने अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 जुलाई निर्धारित की थी। सरकार ने करदाताओं को भी सलाह दी है कि वे समय रहते ही अपील दायर कर दें और अंतिम तिथि का इंतजार न करें। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
3: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
1: जनरल द्विवेदी आज नई दिल्ली में सेना प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं। नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को जिम्मेदारी सौंपते हुए जनरल द्विवेदी ने विश्वास व्यक्त किया कि जनरल सेठ के नेतृत्व में भारतीय सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं, व्यावसायिकता और दृढ़ संकल्प को कायम रखते हुए और भी ऊंचाइयों को छुएगी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने सोशल मीडिया पर वायरल उस फर्जी नोटिस का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि निजी पेट्रोलियम कंपनियां विभिन्न तेल विपणन कंपनियों के लोगों वाले एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को बेच रही हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में कॉरपोरेशन ने कहा है कि यह दावा फर्जी है और निगम ने ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया है। यूरो बैंक ने ग्रीस से भारत में सीमा पार धन हस्तांतरण के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। ये पहल बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरो बैंक में सेवाओं का उद्घाटन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक विस्तार में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान की यह कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए भी गंभीर खतरा है। विश्व के कई नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी पाकिस्तानी सैन्य हवाई हमलों की निंदा की है। हिंसा पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश ने शत्रुता को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया और सभी पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा करने का आग्रह किया। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए चल रहे कूटनीतिक प्रयासों में बाधा आ रही है। दोहा में होने वाली अगले चरण की वार्ता को लेकर अमरीका और ईरान विरोध

0: आभासी बयान दे रहे हैं। जर्मनी विश्व कप के राउंड ऑफ 32 से बाहर हो गया है। बोस्टन में खेले गए मैच में पराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को 4-3 से हराया। विश्व कप में पेनल्टी शूटआउट में जर्मनी की यह पहली हार है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। आप हमें एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी सुन रहे हैं। इस समय दोपहर के 1:05 हुए हैं। अब सुनिए कृषि समय की बेड़ा खाड़ा चुगोट।
2: सपाय सुनतो खेतीहार दादा दीदी मन, तुम्ही तो सपाय जानास कि धान चो फसल संगे संगे खेती कमानी का जे साग चो फसल बोले खूबे जरूरी है। और जसन की जमियाने जुगे करून भिंडी कुमड़ा और लाहा बीती साग जसन की लाऊ काकड़ी करेला ए सफाई चो कमानी होए से।

0: वो खुबे रह से एक कीड़ी नानी नानी और हरदिया रंग चो हुए से और एक कीड़ी मन रस के चुहकुन सपाए साग चो कमानी के खुबे नुकसान करे सो और एक कीड़ी भेंडी पाना चो खाले रहे से जेचो ले बूटा चो बाढ़ ठेबुन जाए से और फर भले खुबे कम हो से एचो रोकधाम काजे फास्पो मीडान 85 EC 200 ले धरून 250 मिलीलीटर नहाले डायमिथेट नाव चो जोन ओखत रहे से एके 30 EC 650 ले धरून 750 मिलीलीटर चो मात्रा ने छिचुन देतो रहे मांतर ए फसल फरतो समयाने इंडोसल्फान 35 EC नहाले मेलाथियान 50 EC के 1 लीटर 2.5 एकड़ चो हिसाब ने छिचुन देतोर हुए से दुआ ओखत डारतो जुन 5 दिन चो पाछे फर के टोड़तोर हुए से ते का दुआ ओखत ने खुबी मात्रा ने दुआई रहे से तो तुरते पाछे हुनके नी टूटा तोरा 5 दिन चो पाछे फर के टोड़तोर हुए से फर के काना कर कीड़ी खुबे नुकसान करे से ए कीड़ी मन शुरू समयाने फर चो छाली चो ऊपरे काना करून भीतरे अलून गुदा के खाए से जे चोले पाना कमचुन जाए से जे चोले बूटा चो ऊपर चो जो खेंदी आए हुन बले सुखुन जाए से फूल तो समयाने कीड़ी चो प्रकोप जुगे होए से जे चोले फल फूल बनतो पहिल ची नसुन जाए से एचो बले दखा रखा करतो काजे कीड़ी बीति जन बूटा के झिकुन देतो रहे पाछे हुनके जरान देतो रहे जे चोले कीड़ी बले मरुन जा दे फर बेरा कीड़ी चो प्रकोप होतो समयाने फास्पो मीडान नाव चो उखत होए से एके 250 मिलीलीटर नहाले कार्बोरिल 50% झपके घोरी भूत बीती गुंड के 1.5 किलो के 2.5 एकड़ चो हिसाब ने बिखरून देतो राय सबले पहल तो फर तोड़तो पाछे इंडोसल्फान 35 EC के 1200 मिलीलीटर के सिंथेटिक पायरेथाइड जसन के रिप कार्ड डेसिसिस सुम्मी मिसडान सिम्बूस के 300 ले धरून 500 मिलीलीटर 2.5 एकड़ चो हिसाब ने छिचून देतो रहा और खूब एक खूबी नगद बले रहे से और जे जेबे चो काम फिर पड़ ली जाले नहीं फिर अखत के फिर एकार बूटा ने डारून देतो रहे से और जसन भिंडी चो फसल ने कीड़ी संगे संगे रोग राई बले खूबे नुकसान करे से और ये रोग राई ने खूबे नुकसान करतो बीती रोग हो से ए आए उकठा रोग ए रोग बले जन कोनी बले भेंडी फसल ने जसन भेंडी नानी नौ नल बार तो समयाने खुबे जोंटे से जे चले बूटा सुखुन जाए से और रोग चो कोनी समयाने बूटा और चो संगे संगे फर के बले खुबे नुकसान करे से जे चे थाने आम के भेंडी चो फल खुबे कम मिरे से और ए चो नगत दखा रखा कर तो काजे सबले पहिल तो आम के एक बूटा कर तो राय की बेड़ा के नगत जो पुन देतो राय जे चले हुन थान जन भीतर जन कीड़ी रह से हुन झपके मरुन जाए से और बीच बंडा तो समय ने एक गोट के जुग्गे करुन ध्यान देतो राय कि माटी के उल्टा पलटा कर लो ने रोग राय कम बले धरे से तो सफाई खेतीहार दादा दीदी मन जे भी आमी सफाई गोट के ध्यान देनु जाले भेंडी फसल चो कमानी आम के नगद तो मिरे दे खातो काजे नगद कौरी भेंडी बले आम के मिरे दे और एके हाट पसरा ने आमी बिकलू जाले नी आम के नगद पैसा बले मिरे दे
1: अभी कृषि समय की बेड़ाखाड़ा चो गोट का पुनः प्रसारण किया गया
2: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार क्या है स्वस्थ रहने का आधार जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह
1: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है दोपहर के 1:10 हुए हैं पेश है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन

अभी आपने आनंद बख्शी का लिखा और राहुल देवबर्मन का संगीतबद्ध किया गीत फिल्म बेताब से सुना। आवाजें थी शब्बीर कुमार और लता मंगेशकर की। इस गीत के फरमाइशकर्ताओं के नाम हैं ऊपरकोट मोहल्ला चौखनटी बुलंदशहर से मोहम्मद सैयद अब्बासी, निघात परवीन अब्बासी, शहनवाज फरदीन, सुहान अरजान और अबान अब्बासी, बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन, बाग बहारा भदरसी से इस गीत को सुनना चाहा था पन्ना लाल सेन, तारा कौशल और खुशबू सेन ने, गोरबा भिलाईगढ़ से देवलाल कर्ष, कामिनी और यश कर्ष, जेल रोड रायगढ़ से भाई नरेंद्र कुमार तिवारी, यवतमाल विदर्भ से संत

घोष और विनोद खड़से और गुमला झारखंड से एसएम जावेद और शगुप्ता अंजुम। इस गीत की फरमाइश पारुंड विश्रामपुरी से आई थी प्यारीदास मुनिकपुरी, शिव कुमारी, खिलेश नमिता और डिम्पी मानिकपुरी की। पुणे से पंकज वाडोदे, आर्या प्रियंका, बीटी वाडोदे और चंद्र प्रभा वाडोदे। कंवर कॉलोनी बड़वाहा से प्रवीण शिमाली, मीना आदित्य, अदिति शिवानी और मीनू राज शिमाली। शंकर सलाम, नरसिंह थापा, चैतराम नेताम, शिवराम जैन, रामधर कश्यप, धोमन लाल कोटारी और ललित नागवंशी आप सभी बस्तर के श्रोता हैं। धरसीमा से हैं छिंदू लाल यादव, श्रीमती सीता यादव, अर्चना अरुणा और अनुराधा के साथ अल्पना यादव। संतोषी नगर दुर्गापारा रायपुर से छन्नूलाल यादव, अनुराग, अभिषेक, अलका, अनामिका, बलदाऊ, कुमारी रानू, खुशी, प्रवीण साहू और सी एल साहू। फरसगांव के हमारे श्रोता हैं फागेश्वर मंडावी और हेमराज भारद्वाज। गणेशपेठ पाथरडी महाराष्ट्र से अम्बादास शिंदे, संगीता अमोल, अमृत और सुवर्णा शिंदे। देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश मिस्त्री। आप हैं महामाया पारा ग्राम दरजूरा से फिरंता साहू, दुलोरिन साहू, कामेश्वरी, प्रीतम कुमार साहू। ग्राम दरचूरा से ददुआ साहू, भूरी साहू, रेखा और मोतीलाल साहू। केशकाल के हमारे श्रोते हैं सुनील यादव, शिव कुमार, बेबी तनिष्का और नौबत यादव। महेंद्र सरकट्टे विजय और मिलिन सरकट्टे वरुण जोलका से हैं गौरी नगर इंदौर के श्रोता आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस, तपस्या, करिश्मा और उनके साथ ही श्री कृष्ण बाठे, संदीप, अमूल्य और वैशाली बाठे। धाड़ीनादुरा महाराष्ट्र से हमें पत्र भेजा है। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मिका, बलदेव विर्क, जयते विर्क और मिका विर्क। आप हैं ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉ प्रशांत राजे जाधव, कुमारी संचित वायाल, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख। आप सभी मोताला से हैं, रिसोर्ट से हैं सानवी और सर्वद देशमुख। विनोद मुड़त, नेहा जैन, दीपक मयंक मुड़त, चिरन नाहटा, दिलीप सिंह पवार, दिशा और कुश मुड़त। आप जिला आप सभी उज्जैन के श्रोता हैं। रघुनाथपुर श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता हिना और खुशी गोस्वामी। बेरड़ी से हुकुम कर्मकर, सुनीता, हार्दिक, प्राची और तनु कर्मकर। आप हैं नसवाला चौक मलकापुर से संजय पाटिल, उषा, प्रथमेश, निवृत्ति और संजय कुमार चौहान। कमल साहनी, पिंकी, डॉ अफजल मलिक और अमोल मानकर ये श्रोता नागपुर के महाराष्ट्र से हैं। रामगढ़ कैंट झारखंड से हैं निप्पी साहनी, सुनीता और संदीप मक्कड़। चितलवाड़ी अकोला से हैं अमोल इंगले, अर्चना सर्वेश, अधीरा और उनके साथ ही। बुरसुंदा से हैं चंद्रप्रकाश, चिराग सेन, संतोषी, नेहा भगवानी और गजेंद्र सेन। फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित कुमार और गजेंद्र कुमार चंदन सोंगा मगरलोड धमतरी से हैं। और आप हैं शाहूनगर यमतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल और चेतन मनवर, साथ में रोशनी और बेबी प्रियांशी हैं। परसाटोला जिला अंबागढ़ चौकी के श्रोता हैं ओम प्रकाश मसिया, सिलोचनी, खुमेंद्र और तुषारणी मसिया, रिजवान खान, आयशा, सबिया, अनस और रेहान भी यहीं से हैं। लेवी छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास और रानी मानिकपुरी। इच्छा महासबून के श्रोता अदालत दास वैष्णव, मानस शांति वैष्णव, ऋचा गायत्री वैष्णव और भीषण दास मानिकपुरी। और इसी गीत की फरमाइश आई थी कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता की पीपरिया से।

0: खेतों की जुबानी।
1: श्रोता सुमन कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से। अगले गीत की फरमाइशकर्ताओं के नाम दंतेवाड़ा बचेली से बलराम सेन, इंदु सेन, पुष्पराज, रितिका और भुवनेश्वर सेन, छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश। आप हैं सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया, मेघापारा लोरमी से कृष्ण कुमार साहू, धनंजय, सत्यम, कुमारी गायत्री और मनोज कुमार साहू, धुर्रा बांधा भाटापारा से प्रमोद, देव कुमार, नेत्राम और भूपेंद्र साहू। आप हैं छत्तीसगढ़ हसदा नंबर दो से कमलेश साहू, जितेंद्र और पायल साहू। बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से हैं ब्रिजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली सोनम और आशीष विश्वकर्मा। शीतलानगर दुर्ग से शिव चंद्राकर और भगवान चंद्राकर। मोहम्मद रफीक पवार, मोहम्मद साकिब पवार और मोहम्मद हसनैन पवार आप सभी लक्कड़ बाजार खंडवा से हैं। शंकरलाल गंगराड़े, वनीता, छोटू, पूजा, रोशनी, अजय और वामिका गंगराड़े ग्राम दीवाल बाजार चौक के ये श्रोता हैं। और ग्राम छेगांव से हैं अशोक कुमार वाधे, वंदना, भूपेंद्र, झवर, तनुश्री, आरोही और कान्हा वाधे। उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किशुताशु, अर्णव आनंद और सत्यम आनंद ये श्रोता हैं पाकुर झारखंड के। मेचका नगरी से भूपेंद्र नाथ, पूर्णिमा, निखिल और तरुणदीप नाग। भाटापारा से हैं दान सिंह रावत, पद्मिनी, शुभम, सौरव और नीरज। सोमना रोमनाथ यादव, वंदना, सूर्यप्रकाश, शीला, कनक, कुनकुन, बेबी, अदिति और तन्मय आप सभी रायपुर से हैं। नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार गायकवाड़, साई गायकवाड़ गांव कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से। लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश और मुकेश कुमार साहू। रिंगने छत्तीसगढ़ से हैं दिनेश कुमार वर्मा, करुणा देवी, प्रियंका, गौरव बंछोड़ और भागवत वर्मा। बेलरगांव से हैं मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन, हिमांशु और अंकित देवांगन। आप हैं अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा, बेबी गाव्य और भाई सुच्चा पाठक। नांदेड़ के हमारे श्रोता हैं प्रभाकर जोंदले, आरती जोंदले। चंडीगढ़ से इस गीत की फरमाइश भेजी है सतीश अनिज और विमला अनिजा ने। आप जूनापानी सनावत से कालू सिंह वड़ोले, सीताराम हीरालाल, तेर सिंह डावर, साहिल हरिओम, पिशाल, सुमन और रमा के साथ कंचन हैं। रोहांसी से डगेश्वर, घनश्याम और नूतन के साथ गौरव साहू हैं। बुर्जगहन से रामदुलारी, प्रराम शरण, चंद्रेश कुमार और चंद्रकलरा के साथ हैं शशिकांता प्रजापति। मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा, प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा प्रकाश, प्राजंगता, प्रांजलि, सोहम बोरगांवकर, सदानंद बोरगांवकर और सुभाष सूर्यवाड़ी औरंगाबाद से हैं। नरोत्तम कश्यप, नीतू, मोहनीश और अनुराग कश्यप कुल्हारी कोट पांडुका से हैं। सुभाष चक्रधारी, श्रीमती कविता के साथ मुस्कान और अनुष्का चक्रधारी भंडार सिवनी कोंडा गांव के श्रोता हैं। आप गांव जाखोद राजस्थान से हैं पूजा खटक, बिमला देवी और शंभू दयाल खटक। आप सबकी पसंद पर पेश है ये गाना।

यह आवाज मोहम्मद अजीज की है और इनका साथ दिया है इस जानकी ने। और आप सबने पसंद किया है फिल्म जानकी बाजी का गाना। बोल अनजान के हैं, अनु मलिक की धुन है।

इसी गीत को सुनना चाहा था हीरा वाली फजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, बिमला गोदारा, इंदु पार्वती और हिमांशु गोदारा ने। साथ में चंडीगढ़ से हैं शेफाली अरुण कुमार, शेफी हिमांशु सेठी और बुर्ज हनुमानगढ़ फजिलका से रमन वर्मा, अमन वर्मा और डॉक्टर मदन लाल वर्मा ने भी सुनना चाहा था इसी गीत को।

गीदम रोड जगदलपुर से टी राजू राव, टी सुनील राव, शिवानी राव, कृष्णा तुलसी राव, भाग्य लक्ष्मी राव, आनंद राव, मनीषा, रोहिणी, श्रवण, नानू, साक्षी, काव्या और राधिका राव हैं। बेरड़ी से हैं गणेश, राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी ढोमने, चंचल ढोमने, अर्जुन कमनेकर और धीरज सव्वासेरे। वरुण जामटी से हैं मुकेश कासलेकर और विशाखा बोबड़े। कस्बा गुन्नौर से हैं फारूक अली खान, फैजी फरहाज, फरहीन फरहान, फरिया और ताहिरा। आप हैं दरियानमल, अनीता मोटवानी, राजेश, मुकेश मोटवानी। चार मीनार चौक गंडई पंडरिया से हैं। गांधीबाग नागपुर से हैं अशोक कुमार सावलानी। झूलेलाल चौक तिल्दा से हैं हरीश, कमल, सेतपाल भूमिका और सुशीला देवी। गोलबाजार बक्सर से हैं श्रद्धानंद आर्य, अभय परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित के साथ बीना आर्य। ग्राम नागरकोहरा जिला राजनांदगांव से हैं छग्गर राम साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम पूजा दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू। गोविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनमीत, मनविंदर पांधा, गोलू काको और जीएस रामगढ़िया, फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल के हमारे ये श्रोता हैं। आप हैं बालोतरा राजस्थान से हैं कृष्ण कुमार डाबी, भूपत कुमार, राधा देवी, विक्रम अर्चना और साक्षी डाबी। राजस्थान झालावाड़ा से हमारे ये श्रोता हैं हर्षिता, रामेश्वर, कान्हा, सफलता, कपिल, मीनाक्षी, सत्यनारायण, मनोहर बाई और प्रभुलाल बागरी। खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य कोयल और नानकचंद मल्होत्रा, अनिल कुमार, अंजुलता आदित्य और कृष्ण श्रीवास्तव शिवाजी चौक राजिम से हैं। बोरागाछी से हैं मुन्ना भगत और गुट्टी भगत। एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर से हैं कुमारी वंदना मराठा, कुमारी देविका चौधरी, गणेश दादा, कार्तिक भाव मराठा, परिसंजना, मालती चौधरी, स्वाति प्रयाग चौधरी और ललिता नारायण खर्चे। दत्ता घयाल, सुनीता बाई घयाल, सानिका और गजानन घयाल, आप सभी हैं मालेगांव के श्रोता। खुपटी महाराष्ट्र से हैं वंडू लोहार पोपलघट, माया, शिवांश, चंद्रकला पोपलघट और देवीदास पोपलघट। श्रीरामपुर भोकर से हैं हरिभाव बिड़वे, श्रावण, अनीता बिड़वे। मोहनपारा कलतरा से हैं अभिनव साहू, अभिषेक और उमा देवी साहू। राजनगर मधुबनी बिहार से हैं नवीन सिंह, ज्योति, श्वेता, स्वाति, सुशांत, चुलबुल रानी और संतोष सिंह। प्रेमलाल साहू, भूपेन्द्र, दुष्यंत, राघवेंद्र और तेजल साहू भाटापारा के ये श्रोता हैं। आर्यनगर कोहका भिलाई से हैं उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत, आयुष और नंदिनी जंघेल। इसी गीत की फरमाइश अघनपुर धर्मपुरा बस्तर से आई है डी वनीता नायडू, डी कृष्णा राव नायडू, डी ईश्वर राव नायडू, डी रोजा, मास्टर शिवांशु और डी सोम शेखर राव नायडू की। साथ में है ये श्रोता है मामूलवाड़ी नांदूरा महाराष्ट्र से सोपान ताइड़े, विजया ताइड़े, अमोल और सरिता ताइड़े। नांदूरा जीगांव से हैं बसंत राव भोजने, सुनंदा भोजने, राजू और सोनू भोजने के साथ निवृत्ति आड़ोकार। उमरगांव नगरी से हैं दीपक कुमार साहू, अश्विनी बाई, उमाशंकर और ठामेश्वरी साहू। बुलंदशहर से पंकज सिंह, चंचल, रशिका कृति और वंशराज सिंह। रानीगांव नगरी से किलेश कुमार साहू, चित्ररेखा, शुभम, सेजल, इंद्राणी और रोहन भरो साहू। आप हैं गांधीनगर गुज्जा से सुरेश राठौर, मंजुला राठौर, विशाल और निशा राठौर।

पर। फकीरा रेडियो श्रोता संघ जिला बीड़चे से हैं रंजीत कुमार नामदेव, रितेश, आकाश, रश्मि, रंजना, गबरू, पहलवान थोरात, प्रकाश जैन और ये भी यहीं से हैं, और तिरुपति नगर लातूर से हैं संगीता, सूरज और पीआर जैन। भाडापारा के श्रोता बज कामल, मोतीलाल यादव, डॉक्टर बसंत भृगु, विनय ठाकुर, सोनाडी से सुब्रत चौधरी और बेबी अनिशा, रायपुर से हैं नीलू भेग, डॉक्टर वंदना और बिट्टू कुमार, रायगढ़ के श्रोता रोहित, लक्ष्मी अंश, लक्ष्मी और ऋषभ लक्ष्मी, ये हैं द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार और झावेंद्र कुमार वर्मा। भाटापारा दतरिंगी से हैं महादेव घाट, अमलेश्वर से डोमल ठाकुर, सुमन, मिथिलेश तारिणी, सूरज, सुजला और ज्योति के साथ रियांश ठाकुर हैं। दतरिंगी से मनोज कुमार साहू, सूरज कुमार और सागर कुमार साहू, और आप हैं जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, शमरीन परवीन और मोहम्मद रिहान के साथ माहिरा नूर। आप सबके अनुरोध पर हम आपको सुनवा रहे हैं इतिहास फिल्म का गाना, शब्द रचना समीर की, गीत में आवाज दी हेलका याग्निक और कुमार शानू ने, संगीतकार हैं दिलीप सेन, समीर सेन।

श्रोता सुमन कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर के युगल सुरों में। फिल्म का नाम है भोला भाला। आनंद बख्शी के लिखे गीत को सुरों से सजाया है आरडी बर्मन ने। ख्वाहिशमंद श्रोताओं के नाम है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत राय, डॉक्टर अमनदीप और अनिल शर्मा। कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल। इस गीत की फरमाइश पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से आई है। सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह की। कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालोद से इस गीत को सुनना चाहा है। देवशंकर तामोरिया, अजय देव, राधिका, तुषार तामोरिया, डॉली मास्टर अल कबीर, बेबी पूजा तामोरिया और प्रभा देवी तामोरिया ने। किकिरमेटा बेलहारी पाटन से संतोष शर्मा, रुक्मणी शर्मा। गुरामी डोंडी लोहारा बालोद से पीयूष जोहत त्रिबाई नेदाम। जुनवानी दुर्ग से सुरीत रमेश साहू। और इसी गीत की फरमाइश ग्राम बन बघेरा जिला राजनांदगांव से आई योगेश सरवा, आशा सरवा, नीरज नीलेश और कुमारी अंजलि सरवा की। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवहाणकर, सरिता सिद्धांत, प्रिंस एकांश गवहाणकर के साथ प्रणीता गवहाणकर हैं। बहादुरा नागपुर से हैं शैलेश गवहाणकर, वैशाली श्वेता, सुमित गवहाणकर और कुमारी ध्वनि गवहाणकर। धनेश मटाई, राकेश मटाई, उमेश सहजवानी, हनी अमिता, जिम्पी दियाना और जियानू मटाई अब सभी हैं पलसीकर कॉलोनी इंदौर के श्रोता। आप हैं पलारी जिला बालोदा बाजार से हैं नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, तनुजा देवांगन और ईशांत देवांगन। हटोद बाजार लाहौद से कमलनाथ पटेल, राकेश कुमार पटेल, समीर पटेल और राजकुमारी पटेल। डबरापारा सोंगा मंगलोट से हैं कोमल सेन, तोषण कुमार सेन, विनायक सेन, रीना पिंकी सेन। स्कूलपारा कोड़ा पारा भनपुर से नारायण, पंकज, नेहा, पार्वती, सेवती सेन। बाजारपारा बेमित्रा से हैं भाई भरत लाल सिन्हा, लव कुमार, लक्की सिन्हा, मुरली मनोहर पटेल, भगवान सिंह राजपूत। जतुका किशनपुर के श्रोता हैं आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, शबाना आलम, चांदनी नाज, सिराजपुर, गणेशपुर से हिना कैसर, मोहम्मद वकील राही, फिरोज आलम और नाज प्रवीण हैं। आप हैं बुल्ढाना महाराष्ट्र से वासुदेव बोधवड़े, माधुरी बोधवड़े, आकाश कुमार बोधवड़े। यहीं से संत गाड़गे नगर से हैं अनीता गाठोड़े, रमेश राव गाठोड़े और लोकेश कुमार गाठोड़े। घंटाघर चौक खंडवा से हैं संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। राधेश्याम देवांगन, चंपा देवांगन और राजू जगदीश देवांगन इंद्रानगर भंवरपुर छत्तीसगढ़ के ये श्रोता हैं। सुरेश सारथी, पूर्णिमा सारथी बेमित्रा से हैं, नवागढ़ कटई से हैं नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत, सीमा शारदा और दामिनी वर्मा। चांदनी चौक गंडी पंडरिया के श्रोता हैं पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की, नानू, रविन्द्र सेन और यहीं से हैं रौनक सेन। उस्मान खत्री, रिजवान खत्री, अब्दुल गफ्फार खत्री आप हैं खरगोन मध्य प्रदेश के श्रोता। लोरमी चचेड़ी से हैं कमलकांत मरावी, प्रमिला नेहा मरावी, पुष्पराज और ऋषभ मरावी। ग्राम तरसा जिला मुरैना मध्य प्रदेश से हैं हरि विलास सिंह तोमर। वेद मिड्डा, अलका मिड्डा, सुजल मिड्डा और गिफ्टी मिड्डा आप सभी हैं। नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से हैं। शहडोल मध्य प्रदेश से हैं सोनू मोनू और गोलू खान। दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से हैं मुकेश कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, तन्वी,

अध्यक्ष सोनी मानवी मोहिनी और ऋतिक। आप हैं मास्टर विठल सुरुषे, सुषमा सुरुषे, परिधि सुरुषे, निधीश और मायरा सुरुषे। वाशिम महाराष्ट्र से हैं। डोबीवली मुंबई से भावना यादव, अधीश, स्मित गोरे और श्रेयांश गोरे। दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनेद अब्बासी हैं। भटिंडा रोड डब्बाली से हैं राजेंद्र, अंजू और मोहित नारंग। हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल और नवनीत भाटिया के साथ पप्पी भाटिया, आप सभी जमशेदपुर के श्रोता हैं। राजनांदगांव से हैं राष्ट्रपाल गजबी है, राधिका बेबी अनिष्का के साथ तन्मय गजबी है। ये श्रोता है मोरटक्का माफी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम ज्योति, ललित, मनीषा, शुभम, देवी किशन, भावना कनिका, आदित्य मानस, मन पटेल। संबलपुर कांकेर से हैं फागुराम यादव, ज्योति, ओजस्वी, इशिका और तेजल यादव। जालना महाराष्ट्र के श्रोता हैं विजय पाटिल, पद्माबाई, ज्ञानेश्वर और तेजस्वनी। आदर्श नगर मलोट पंजाब से हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, मैंडी, योगेश, सौरभ, शाहीना और निवान शर्मा। जलालाबाद पंजाब से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, निमित गगनेजा, विशाल प्रिया और दीशानी हैं। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर, राही और मेहराज जहां आप सभी हैं। लक्सर हरिद्वार से हैं। बंगला माटिया से हैं शिव कुमार अंगारे, अंजनी त्रंबिका, लीना अंशुमल, आशुतोष अंगारे। ग्राम भरे टोली डोंडी बालो से नमित कुमार गौतम, पीहू नीतू, प्रियंका और मुरली गौतम। आप हैं अस्पताल रोड केंद्रीय विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के श्रोता चंद्रेश गौहर, श्रीमती वंदना गौहर, तयंग मयंक और तन्वी गौहर। धाम मोहल्ला मध्य प्रदेश से कौशल किशोर, संगीता हर्षित और वैभव मट्टू। ग्राम लोहेड़ी महोबा उत्तर प्रदेश से हैं जयपाल यादव और राघवेंद्र, अरविंद, रिया, रेणु, दिव्यांशी, रोनिका और रागिनी यादव। प्रकाश, तिरसुनिया, विकास, नैतिक, मुकुल, दिव्यांश, धैर्य, आराध्य आप सभी हैं उत्तर बस्तर कांकेर के श्रोता। नाना डोंगर दीवे, रमाताई, सीमाताई, रीमाताई, दीक्षाताई और राहुल डोंगर दीवे सेमिनरी हिल्स नागपुर से हैं और नया गंज वार्ड भटापारा बलुदा बाजार से हैं विष्णु साहू, पूरब वीरा, योगेश्वरी, कुमकुम और हर्ष साहू। मन की लोरमी से नारायण खांडे, रजनी तुषार और समीर खांडे हैं। चुड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक और अल्ताफ हैं। आप सबकी पसंद पर सुनिए फिल्म भोला भाला का गाना। आवाज लता मंगेशकर और किशोर कुमार की है। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार आरटी बर्मन।

कैलाश वीर शहर से प्रकाश बगारिया, पराग बगारिया, प्रदीप बगारिया, केशव पटेल और रामनिवास अग्रवाल। तीन महुआ खापरखेड़ा जिला रायसेन से हैं तुलसीराम साहू, मुकेश कुमार साहू, हेमंत कुमार साहू, आरती और ममता के साथ गोमती साहू। सावरगांव से हैं रघुनाथ नारे, पुष्पाताई नारे, श्रीधर और मीनल नारे। आप हैं पुजारीपारा कोंडागांव से सेतुराम चक्रधारी, मंगदीन आशीष और अस्तिका चक्रधारी। खपरीकला से हैं संतोष कुमार सोनी, सुनीता, अखिलेश, नेहल, पीहू, छोटी दानिश, दीक्षा, संजय और पूजा रामा पूर्वी। यंग रेडियो लिसनर जवाहरगंज जबलपुर की श्रोता हैं जिनेन्द्र जैन, महेंद्र और सत्येन्द्र जैन। आप हैं अनूपपुर से जयमंत्री केवट, अंजलि, रुद्राणी और कृष्णा केवट। गोदाम मछली गोदाम कैदीमुड़ा रायगढ़ से हैं पुरुषोत्तम सिंह, श्रीमती उषा सिंह, प्रियंका, पूजा सिंह, लीलू, ऋतु सिंह, ऋषभ के साथ उनके साथी हैं। आप हैं ग्राम मामड़पाल दरभा बस्तर से गणपत बघेल, मनीष और अनंत बघेल। भटेना से बलकरण, अंजनी वर्मा, कुमारी ज्योति। चटोदा सारागांव से सुजान वर्मा, सुहद्र वर्मा, आयुषी और कृत वर्मा। मदनपुर कवर्धा से हैं श्रवण कुमार साहू, योगेश और राहुल साहू। पोटिया कला दुर्ग से हैं संजय, सुजाता, शशांक और सीमा साहू। गांव सुपाही साही झारखंड से ये पत्र आया है देवेंद्र तांती, राकेश, प्रकाश तांती, नीरव कुमारी और देवेन का। डॉक्टर रमेश कुमार झाजोरिया, गीता रानी झाजोरिया, गगनदीप और बीबी आरजू झाजोरिया पटेल नगर मलोट पंजाब से हैं। रोहानसी पलारी से है श्यामलाल साहू, युवराज बिंदु और वर्षा साहू। गुरमीत सिंह मित्ता साउथ एक्सटेंड नई दिल्ली के ये श्रोता हैं। आप हैं मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर। शेरकोट जिला बिजनौर के ये सभी श्रोता हैं। कुंडलवाड़ी नांदेड़ से गंगाधर सावनकर, विजया लक्ष्मी, राजेश, राकेश और रक्षित सावनकर हैं। हरजिंदर छिंदा, जसवीर, रेखा, गगन, सोनी।

गीता और गीता गावना थाना पंजाब से हैं, कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से हैं, ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार और हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांचल राय, गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति और नवनीत राय, आप हैं बाजार भिलाई से सुशील जैन, कल्पना जैन, सौरभ सैया, शुभम और शौर्य जैन, छत्तीसगढ़ भाटापारा से हैं सोहन जोशी, श्रीमती अर्चना जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, श्रीमती भानी चावला, लोकेश जोशी, श्रीमती पायल जोशी, धनेश तिवारी, सावन नायक, कुमारी अंकिता जोशी और बीबी वेदेही जोशी, ग्राम पजोनिया जिला जालौन से हैं सत्येंद्र कुमार चंसुलिया, आदर्श सार्थक और अलौकिक चंसुलिया, बिलासपुर से छन्नू लाल, अनिता, पुष्पराज श्रीवास, संजू योगिता श्रीवास, रामायण श्रीवास और रज्जन साहू के साथ हेमंत नामदेव, गांधीग्राम से हैं प्रवीण सोनी, राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार, विशाल कुमार, शीला और गायत्री धनजे ग्राम लोहारी के श्रोता हैं, मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद, नीतू वैद और उनके साथी हैं, और कल्लनौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा और नितिन के साथ मयंक शर्मा हैं। आप सबकी फरमाइश पर पेश है फिल्म नमक हलाल का गीत, आवाज आशा भोसले की है, नगमा निगार है अनजान और मौसीकार है बप्पी।

तो श्रोताओं, ये था आज के कार्यक्रम का अंतिम गीत फिल्म नमक हलाल से। और अब कार्यक्रम श्रोता सुमन से दीजिए आपके रेडियो दोस्त मनिंदर सिंह देवगुण को इजाजत। नमस्कार, हैव ए नाइस डे।

0: See, uncertainty looms over U.S. and Iran peace negotiations as Tehran rejects U.S. President Trump's claim of meeting in Doha. And Germany knocked out of 2026 FIFA World Cup after facing defeat from Paraguay in a 4-3 penalty shootout. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। यूरो बैंक ने यूनान से भारत के लिए यूपीआई के माध्यम से धन भुगतान की सेवा शुरू की। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसे भारत के डिजिटल भुगतान विस्तार में मील का पत्थर बताया। दिल्ली सहित चार राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू। पाकिस्तान के ग्रे सूची निगरानी की आलोचना के बाद भारत ने वित्तीय कार्यवाही कार्य बल के लिए अपना समर्थन दोहराया। ईरान के दोहा में बैठक से इंकार के बाद अमेरिका ईरान के बीच शांति वार्ता पर अनिश्चितता बरकरार। उत्तर प्रदेश बिहार मध्य महाराष्ट्र कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले दो दिन तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और जर्मनी पैराग्वे से पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हारकर फीफा विश्व कप से बाहर। मोरक्को ने नीदरलैंड को हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। यूरो बैंक ने यूनान से भारत में सीमा पार धन भुगतान के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। ये पहल बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। एक रिपोर्ट।
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरो बैंक में सेवाओं का उद्घाटन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक विस्तार में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उन्होंने कहा कि यूनान में यूपीआई के शुरू होने से ग्राहक तुरंत सुरक्षित और निर्बाध रूप से धन हस्तांतरण कर सकते हैं। इससे लेन देन लागत पारंपरिक हस्तांतरण लागत के मुकाबले काफी कम हो गई है। श्री गोयल ने यूपीआई की बढ़ती वैश्विक स्वीकृति की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दृष्टिकोण में विश्वास को भी दर्शाता है जिसके तहत प्रौद्योगिकी आधारित समाधान विकसित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
1: दिल्ली सहित चार राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। दिल्ली में घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य शुरू किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ अगले महीने की 29 तारीख तक हर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे ताकि मतदाता सूची का सत्यापन और अद्यतन किया जा सके। कल मतदाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी।

0: अधिकारी, 336 सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी और 7,556 बीएलओ पर्यवेक्षक भी पुनरीक्षण प्रक्रिया में शामिल हैं। झारखंड में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: बूथ लेवल अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर मतदाताओं को आंशिक रूप से भरे हुए इन्यूमरेशन फॉर्म उपलब्ध कराएंगे और सत्यापन करेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध, पारदर्शी और त्रुटि रहित बनाना है, ताकि कोई भी पात्र भारतीय मतदाता सूची से वंचित न रहे और कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो। श्री कुमार ने मतदाताओं से अपील की कि फॉर्म प्राप्त होने पर आवश्यक जानकारी भरकर हस्ताक्षर सहित शीघ्र बीएलओ को वापस करें, ताकि उनका नाम 5 अगस्त को प्रकाशित होने वाली प्रारूप मतदाता सूची में शामिल किया जा सके। आज राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने खूंटी जिले के तोरपा विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 84, 87 और 89 का निरीक्षण कर बीएलओ और बीएलए 2 के साथ बैठक की और विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की तैयारियों और कार्य योजना की समीक्षा की। विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 2026 अभियान को गति देने के लिए #झारखंडSIR के साथ सोशल मीडिया जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से महवेश रहमान की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
0: मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स के उपायुक्त अभिलाष बरनवाल ने बताया कि 1021 बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ जिले के सभी 1021 मतदान केंद्रों पर 29 जुलाई तक घरों का दौरा करेंगे और उन मतदाताओं को पहले से भरे हुए स्वगणना प्रपत्र वितरित करेंगे जिनके नाम 2025 की मतदाता सूची में पहले से ही शामिल हैं। इस बीच केरलम में जनगणना 2027 के लिए स्वगणना प्रक्रिया आज समाप्त हो रही है। राज्य में रहने वाले सभी लोग आधी रात तक पोर्टल पर अपना विवरण दर्ज कर सकते हैं। आगे की जानकारी एकत्र करने के लिए जनगणना कर्मी कल से घरों का दौरा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आंध्र प्रदेश के केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में भाग लेने के लिए विशाखापट्टनम पहुंची। उनका स्वागत INS देगा में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल S. अब्दुल नजीर ने किया। इस अवसर पर कई जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज कहा कि सरकार ने देश में स्वास्थ्य सेवा, अवसंरचना और कुशल चिकित्सा मानव संसाधन दोनों को मजबूत करने पर समान रूप से जोर दिया है। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज के 10वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि ILBS जैसे संस्थान देश के स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं।
2: ILBS ने नहीं सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में अपना नाम स्थापित किया है। ऐसे समय में 10th कॉन्वोकेशन हो रहा है ये सेलिब्रेट करने की। स्टूडेंट्स जिनको आज डिग्री मिल रही है उनके लिए भी ये सेलिब्रेशन का मौका है, पर उनके सेलिब्रेशन है उनकी सैक्रिफाइस, उनका डिसिप्लिन, उस सब के कारण आज वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि उनको ये डिग्रियां हासिल हो रही हैं। इसलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि क्षेत्र के विकास के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। हरियाणा के हिसार में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करने पर काम कर रही है जो मिट्टी और उसमें आवश्यक उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। उन्होंने किसानों को जैविक खेती अपनाने की भी सलाह दी।
3: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल, सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहां भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
0: ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन RGVVS 2026 का आयोजन किया है। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ग्रामीण परिवर्तन के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए किया गया जिसका समापन हाल ही में हुआ है। इसके अंतर्गत केंद्र राज्य के मजबूत सहयोग, समुदाय आधारित विकास और प्रौद्योगिकी आधारित शासन के माध्यम से विकसित ग्राम विकसित भारत के दृष्टिकोण को गति देने की साझा प्रतिबद्धता को ध्यान में रखा गया। सरकार ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के सामने अपील करने की अंतिम तिथि

0: 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय के अनुसार पिछले वर्ष सितंबर में जारी अधिसूचना में अपील दायर करने की अंतिम तिथि इस वर्ष 30 जून निर्धारित की गई थी। विभिन्न हितधारकों ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर करने की भारी संख्या के कारण आई तकनीकी बाधा का हवाला दिया था। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्ष में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
1: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: जनरल द्विवेदी आज नई दिल्ली में सेना प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं। नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को जिम्मेदारी सौंपते हुए जनरल द्विवेदी ने विश्वास व्यक्त किया कि जनरल सेठ के नेतृत्व में भारतीय सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं, व्यावसायिकता और दृढ़ संकल्प को कायम रखते हुए और भी ऊंचाइयों को छुएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। भारत ने वित्तीय कार्रवाई कार्य बल को आतंकवाद को धन मुहैया कराने और धन शोधन के खिलाफ वैश्विक लड़ाई का अविभाज्य अंग बताते हुए इसके लिए अपना पुरजोर समर्थन फिर से व्यक्त किया है। संगठन की ग्रे लिस्ट में शामिल किए जाने के बाद पाकिस्तान ने FATF की आलोचना की थी, जिसके बाद भारत ने FATF के प्रति अपना समर्थन दोहराया। संयुक्त राष्ट्र में आतंकरोधी सप्ताह से अलग एक समारोह में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि FATF की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने का प्रयास जायज चिंताओं के बजाय जांच के दायरे में आने का भय अधिक दर्शाता है। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए चल रहे कूटनीतिक प्रयासों में बाधा आ रही है। दोहा में होने वाली अगले चरण की वार्ता को लेकर अमरीका और ईरान विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दोहा में नई वार्ता आयोजित किए जाने के संकेत के बाद अमेरिका ईरान संबंधों के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। हालांकि ईरान ने इस दावे को दृढ़ता पूर्वक अस्वीकार करते हुए कहा कि फिलहाल अमेरिका के साथ किसी भी प्रकार की बातचीत की योजना नहीं है। ईरान के अधिकारियों का कहना है कि अभी उनका ध्यान 14 सूत्री समझौता ज्ञापन को लागू करने पर है, जिसके बाद वे किसी व्यापक या अंतिम समझौते पर चर्चा करने पर विचार करेंगे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने भी यह स्पष्ट किया है कि ईरान अपने वादों को तभी पूरा करेगा जब अमेरिका भी अपनी जिम्मेदारियां निभाएगा। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने आपदा से प्रभावित लोगों के लिए चिकित्सा सहायता और आपातकालीन सहायता पर विशेष ध्यान देते हुए राहत कार्यों का विस्तार किया है। मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय बचाव और चिकित्सा दल वेनेजुएला के अधिकारियों के साथ मिलकर आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में बहुत तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। सिक्किम, असम, मेघालय, केरलम और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में भी आज इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के दौरान कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कल तक छिटपुट स्थानों पर तेज सतही हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस के अवसर पर सभी निर्वाचित अधिकारियों और विश्व के लोकतांत्रिक संस्थानों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिड़ला ने कहा कि संसद जनता की आकांक्षाओं, अधिकारों और विश्वास की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है, जहां विचारों का मंथन होता है, नीतियां बनती हैं और राष्ट्र के भविष्य की दिशा तय होती है। झारखंड में आज हूल दिवस मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि यह दिवस जनजातीय क्रांतिकारियों सिद्धो कान्हो, चांद भैरव और फूलो झानो के बलिदान के स्मरण में मनाया जाता है।
3: झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडी में हूल दिवस के अवसर पर हजारों लोग संथाल हूल के अमर शहीदों सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो और झानो को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 30 जून 1855 को

0: भोगनाडी से सिद्धू कानू के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन और महाजनी प्रथा के खिलाफ संथाल हुल का बिगुल फूका गया था। क्रांतिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को कई मोर्चों पर कड़ी चुनौती दी और आंदोलन लगभग एक वर्ष तक चला। इस संघर्ष के दौरान चांद और भैरव शहीद हो गए, जबकि बाद में सिद्धू और कान्हू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी। झारखंड में हूल दिवस स्वाभिमान, प्रतिरोध और जनजातीय अस्मिता का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: जर्मनी फुटबॉल फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 से बाहर हो गया है। बोस्टन में खेले गए मैच में पैराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया। विश्व कप में पेनल्टी शूटआउट में जर्मनी की यह पहली हार है। मोरक्को और ब्राजील भी अंतिम 16 में पहुंच गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यूरो बैंक ने यूनान से भारत के लिए यूपीआई के माध्यम से धन भुगतान की सेवा शुरू की। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसे भारत के डिजिटल भुगतान विस्तार में मील का पत्थर बताया। दिल्ली सहित 4 राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू। पाकिस्तान के गृह सूची निगरानी की आलोचना के बाद भारत ने वित्तीय कार्यवाही कार्य बल के लिए अपना समर्थन दोहराया। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिन तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय दोपहर के 2:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

0: शब्दांग
1: CIET प्रस्तुत करता है
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ आपका मित्र अजीत। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ, जिसे हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। लिखते हैं,
3: आंगन का पेड़ घर की शान, देता है छाया, सुख और सम्मान।
1: बहुत सुंदर था आपका सुविचार, बहुत ही शानदार। आप सबको हमारा बहुत बहुत आभार। आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है गांव खिंदासर, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर, राजस्थान से कानाराम चौहान जी का।
3: संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
1: संजय मार्केंडे जी ने लिखा है, गुजरे सप्ताह हमने सुना दोस्त की पहचान, गौरा देवी और पहली उड़ान। ये भी जानिए मैं लाहौल स्पीति का शीत मरुस्थल। सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगे। सभी उमंग कार्यक्रम के परिवार को बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करते हैं हम।
3: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे और उत्तम जमदाड़े।
1: और ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
3: धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए।
1: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। इस मनोरंजक ज्ञान श्रृंखला में हम लेकर आते हैं ढेर सारे

0: के और उत्तम जमदाड़े।
1: और ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
0: धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए।
1: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। इस मनोरंजक ज्ञान श्रृंखला में हम लेकर

0: ये तो जान लें कि खनिज पदार्थ किसे कहते हैं।
1: जी, ये तो हमें जानना ही चाहिए। देखिए, खनिज शब्द संस्कृत के खनी शब्द से निकला है
0: जी।
1: जिसका अर्थ है धरती या धरती के भीतर का भंडार। इसी शब्द से खान या बोलचाल की भाषा में खदान निकला है।
0: जी श्रोताओ, खनिज को सरल शब्दों में यदि परिभाषित करें तो कहेंगे प्राकृतिक रूप से पृथ्वी की सतह या अंदर से प्राप्त ऐसे पदार्थ जिनकी एक निश्चित रासायनिक संरचना और भौतिक गुण होते हैं, वे खनिज पदार्थ कहलाते हैं। इन्हें खोद कर निकालने की प्रक्रिया को खनन कहते हैं।
1: जी, तो विमलेश जी, ये तो हुई खनिज की बात। अब ये तो बताइए कि आज हम किस खनिज की बात करने जा रहे हैं।
0: अजीत जी, आज हम बात करेंगे कोयले की। ये बहुत जरूरी खनिजों में गिना जाता है। मानव सभ्यता के विकास में कोयले का बहुत महत्व रहा है। ये ऊर्जा का प्रमुख स्रोत रहा है। अनेक ताप संयंत्रों में बिजली उत्पादन के लिए इसका उपयोग होता रहा है। ये बहुत सारे उद्योगों का आधार है।
1: जी, हम इसे अर्थव्यवस्था का आधार भी कह सकते हैं। ये सब कुछ तो हम जानते हैं, लेकिन आइए अब बात करते हैं कि कोयला बनता कैसे है।
0: अजीत जी, एक बेहद रोचक बात मैं साझा करना चाहती हूँ।
1: जी जी।
0: वो ये है कि आज जिस कोयले को हम जलाते हैं, वो वास्तव में करोड़ों वर्ष पहले के जंगलों और पौधों का परिवर्तित रूप है। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो कोयले में प्राचीन वनस्पतियों और प्राचीन सूर्य की ऊर्जा छिपी हुई है। यानी कोयले में ऊष्मा सूर्य से आई है।
1: जी, ये तो बड़ी रोचक बात आपने बताई, लेकिन ऐसा कैसे? जरा इस बात को विस्तार तो दीजिए, हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे।
0: जी श्रोताओ, आइए आपको ले चलें आज से लगभग 40 करोड़ वर्ष पहले। हिमयुग के बाद धरती का तापमान बढ़ा और पेड़ पौधे उगने लगे। तब तक डायनासोर भी पृथ्वी पर नहीं थे। चारों ओर जंगल ही जंगल थे। दलदली भूमि, विभिन्न प्रकार के फर्न और घने पेड़ पौधे फैले हुए थे।
1: जी श्रोताओ, भूगर्भीय गतिविधियों और टेक्टोनिक प्लेट के सरकने के कारण बहुत भूकंप भी आते थे उन दिनों। भूकंप के कारण विशाल जंगल भूमि के नीचे दब गए।
0: जी,
1: वे कालांतर में मिट्टी और रेत के नीचे लगातार दबते चले गए। इतने नीचे कि मिट्टी ने उन्हें हवा से अलग कर दिया, जिसके कारण वे सड़ नहीं पाए। इसलिए उनमें सूर्य की अवशोषित ऊर्जा बनी रही।
0: समय बीतता गया। ऊपर मिट्टी और चट्टानों की परतें जमती रहीं। नीचे दबे जंगलों और पौधों पर अत्यधिक दबाव और ताप पड़ने लगा। कालांतर में उनका रूप बदलने लगा और उन वनस्पतियों ने कोयले का रूप धारण कर लिया।
1: जी विमलेश जी, इसीलिए वैज्ञानिक कोयले को दफनाया हुआ जंगल यानी बैरिड फॉरेस्ट भी कहते हैं। श्रोताओ, दरअसल आपके हाथ में जो कोयले का टुकड़ा है, वो करोड़ों वर्ष पहले पुराने प्राचीन जंगल का अवशेष है। यानी कोयले के रूप में हम प्राचीन पेड़ों की संचित ऊर्जा का उपयोग कर रहे होते हैं। हालांकि कोयले के जलने से वायु प्रदूषण होता है, इसीलिए दुनिया अब ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर ध्यान देने लगी है।
0: जी बिल्कुल सही। पर अजीत जी, अब जरा कोयले की उत्पत्ति की प्रक्रिया पर बात कर ली जाए। वैज्ञानिक रूप से ये कैसे होता है?
1: विमलेश जी, ये हम सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे सूर्य का प्रकाश ग्रहण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा सूर्य की ऊर्जा को अपने भीतर संचित करते हैं।
0: जी।
1: प्राचीन पौधे कोयले में बदल गए क्योंकि हवा से संपर्क न होने के कारण उनका क्षय नहीं हुआ और उनके भीतर संचित सूर्य की ऊर्जा भी उनके साथ सुरक्षित रह गई। बताना चाहता हूँ कि कोयला प्रकाश संश्लेषण का एक प्रकार से समीकरण है।
0: जी, तो इसका अर्थ ये हुआ श्रोताओं कि जब हम कोयला जलाते हैं तो करोड़ों वर्ष पहले के सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा या गर्मी के रूप में मुक्त कर रहे होते हैं। तो अजीत जी, रोचक बात ये है कि कोयला मात्र एक खनिज नहीं है, लेकिन ये पृथ्वी के प्राचीन वन इतिहास का जीवित प्रमाण है।
1: जी विमलेश जी, बिल्कुल सही। इसीलिए तो हम कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल कहते हैं, क्योंकि ये जीवित पेड़ पौधों के रासायनिक अवशेष हैं।
0: जी।
1: तो श्रोताओ, ये थी मनोरंजक वैज्ञानिक कथा कोयले की उत्पत्ति की। अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं?
1: आप हमारे प्रश्न का उत्तर और अपने संदेश हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं और साथ ही साथ हमारे ईमेल पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
0: आप सोशल मीडिया पर भी यानी इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो सुनते हैं सबसे पहला कार्यक्रम सीखो।
0: ये संगीत कार्यक्रम कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित है, जिसमें कवि संदेश देता है कि हमें प्रकृति से बहुत कुछ सीखना चाहिए।
1: तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ।

0: फूलों से नित हंसना सीखो,
1: फूलों से नित हंसना सीखो,
0: भौरों से नित गाना,
1: भौरों से नित गाना,
0: तरु की झुकी डालियों से नित,
1: तरु की झुकी डालियों से नित,
0: सीखो शीश झुकाना,
1: सीखो शीश झुकाना,
0: सीख हवा के झोंकों से लो,
1: सीख हवा के झोंकों से लो,
0: कोमल भाव बहाना,
1: कोमल भाव बहाना,
0: दूध तथा पानी से सीखो,
1: दूध तथा पानी से सीखो,
0: मिलना और मिलाना,
1: मिलना और मिलाना,
0: सूरज की किरणों से सीखो,
1: सूरज की किरणों से सीखो,
0: सूरज की किरणों से सीखो,
1: सूरज की किरणों से सीखो,
0: जगना और जगाना,
1: जगना और जगाना,
0: लता और पेड़ों से सीखो,
1: लता और पेड़ों से सीखो,
0: सबको गले लगाना,
1: सबको गले लगाना,
0: दीपक से सीखो जितना,
1: दीपक से सीखो जितना,
0: हो सके अंधेरा हरना,
1: हो सके अंधेरा हरना,
0: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
1: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
0: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
1: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
0: सच्ची सेवा करना,
1: सच्ची सेवा करना,
0: जलधारा से सीखो आगे,
1: जलधारा से सीखो आगे,
0: जलधारा से सीखो आगे,
1: जलधारा से सीखो आगे,
0: जीवन पथ में बढ़ना,
1: जीवन पथ में बढ़ना,
0: और धुएं से सीखो हरदम,
1: और धुएं से सीखो हरदम,
0: ऊंचे ही पर चढ़ना,
1: ऊंचे ही पर चढ़ना।
2: अभी आपने सुना इस कविता का आदर्श वाचन। आइए अब सुनते हैं इस कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

0: तो सुना बच्चों ये गीत कैसा लगा? अच्छा लगा ना? हमने सुना कि फूलों से, पक्षियों से, नदी से, दूध और पानी से और धुएं से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, है ना? सच तो ये है कि पूरी प्रकृति से हम कुछ ना कुछ जरूर सीख सकते हैं, बस जरूरत है ध्यान से देखने और सोचने की, है ना? इतना ही नहीं, हम अपने मित्रों से और बड़ों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि पता है हम जिससे भी मिलते हैं ना, उसे कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मालूम है जो शायद हमें मालूम नहीं है। तो बच्चों, अब आपके लिए एक काम, पूरी कविता एक बार फिर से पढ़िए और पता लगाइए कि जिनका वर्णन कविता में है उन्हें छोड़कर और कौन कौन सी चीजें प्रकृति में हैं जिनसे हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो जरा सोचिए और पता कीजिए और अपने बड़ों और मित्रों से साझा कीजिए। श्रोताओ, अभी सुना आपने ये खूबसूरत गीत सीखो, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम एकल खोर पपीहा।
1: ये कार्यक्रम एक जनजातीय लोक कथा पर आधारित है, जिसके द्वारा मुख्य रूप से ये संदेश दिया गया है कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए हमें सबका साथ चाहिए।
0: जी,
2: एक सुबह जंगली मुर्गा बोला, फिर चहके बाकी पंछी भी, धीरे धीरे करके फिर बोल उठे सारे पशु पक्षी। बहुत ही था न्यारा उस दिन का सवेरा, सारे जंगल वालों ने जब मिलकर ठाना था, अपने जंगल में खोदेंगे तालाब बड़ा सा।
3: खोदेंगे भाई, खोदेंगे।
2: बारिश का मौसम था वैसे भी, भर सकता था ताल बड़ा सा भी,

0: थोड़ी देर करें आराम, फिर निपटाए जाए बाकी काम।
1: राजन, अभी बहुत सा काम बचा है, जल्दी निपटिए जाए यही अच्छा है। बारिश जाने कब हो जाए खत्म, जल्द खोद ले ताल, काम करे खत्म।
0: ठीक कहा हाथी तुमने, तो यही करो यही करो।
2: खोदेंगे भाई खोदेंगे, हम सब मिलकर एक ताल, गर्मी में प्यासे न मरेंगे ना होंगे बेहाल।
3: सब पशु पक्षी आओ आओ आओ, गाँव गाँव गाँव।
4: कौवे भैया, हम भी तो गर्मी में इससे प्यास बुझाएंगे, यूं ही नहीं पिएंगे, हम भी हाथ बटाएंगे। क्यों, है ना कोयल बहन?
5: कू कू।
6: हाँ चिड़िया बहन, मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, ताल खोदना भी चाहती हूँ, पर काम क्या करूँ समझ नहीं आता।
5: कू कू।
7: मेरा भी कुछ यही हाल है।
3: तो ये बात है, अच्छा बात मेरी तो मानो, करो वही जो करना जानो, काम काम काम।
4: क्या, क्या?

0: क्या?
1: ऊंचा सप्तक कोयल गाए,
0: नीचा
1: सप्तक सांप सुनाए, सबका तुम दो चोंच बढ़ाना, तुम सब में उत्साह जगाना काम।
2: यही करो तुम दोनों।
0: जो आज्ञा महाराज। दम लगा के कू,
3: हईशा।
0: दम लगा के कू,
3: हईशा।
1: काम काम काम, शाबाश शाबाश, सभी जुटे हैं, सभी कर रहे हैं काम। अरे पपीहा कहाँ है? करता होगा पड़ा आराम, चलूं उसे भी ले आऊं मैं, ताल खोदना बहुत जरूरी, चलकर उसको समझाऊं मैं। काम काम काम काम काम काम, लो ये रहा पपीहा चुप्पा, बैठा गाल फुला कर कुप्पा। काम काम काम, अरे पपीहे ऐसे क्यों बैठा है भैये, सारा जंगल झूम रहा है, अरे तू कैसा दुख मना रहा है। काम काम काम,
3: तंग मत कर तू मुझको कौवे, जा जा जा मुझसे बतियाने से पहले, अरे तू मुंह तो धोकर आ।
1: काम काम काम, मुंह भी धोकर आऊंगा मैं, पानी भी पीऊंगा जी भर, सबके संग मिलता लखोदने, मैं भी मदद करूंगा डट कर। अरे पपी है, अरे पपी है, तुम भी चलो कुछ मदद करो।
3: ताल खोदने में इस जंगल में खुदेगा तालाब, अरे वाह जनाब, ताल के अंदर मिट्टी होगी, पानी भी गंदा ही होगा, छी छी कौन पिएगा उसको, अरे काले कौवे मुझको बख्शो।
1: का का का,
4: कौवा मदद मांगने आया, पपीहे ने डांट कर उसे भगाया, रिमछिम रिमछिम बरखा आई, पपीहे ने झूम

0: काले कौवे मुझको बख्शो।
1: का का का।
2: कौवा मदद मांगने आया, पपीहे ने डांट कर उसे भगाया। रिमछिम रिमछिम बरखा आई, पपीहे ने छू

0: इसने तो बस रट ही पकड़ ली।
1: बहु बहु बहु, अरे ये कौवे का मजाक उड़ा रहा है।
0: अरे
1: अरे ये तो इस तरह बोलता ही रहेगा। बहु बहु, कोई इसे कुछ कहता क्यों नहीं?
0: गाँव गाँव गाँव, कुत्ते देख नहीं रहे, शेर राजा भी तालाब खोद रहे हैं। अरे कुछ कहना होगा तो वो ही कहेंगे। गाँव गाँव, शेर महाराज अब बहुत हो गया ये सब, आप ही इसे कुछ क्यों नहीं कहते?
2: मैं भी पपीहे की बात सुनकर थक गया हूँ। पपीहे सुन, पानी नहीं पिएगा तू इस ताल का, सबकी मेहनत से खुद कर जो बना, अभी तू इस ताल में भरने वाले पानी को छू तक सकेगा नहीं कभी।
3: अब गर्मी का मौसम आ गया था, नदी नाले सब सूखने लगे, भयंकर लू चलने लगी, जंगल में कहीं भी पानी नहीं था सिवाय इस तालाब के। सारे जंगलों के पशु पक्षी अपनी प्यास बुझाने इस तालाब पर आने लगे।
0: गाँ, गाँ, अरे वो देखो, वो दूर के किसी जंगल से नील गाय आ रही है।
4: हाँ, और किसी जंगल में पानी नहीं है ना, सारे जानवर यहीं आ रहे हैं, भयानक गर्मी है ना।
5: भाई मैं तो ठहरा कछुआ, दिन रात इसी में पड़ा रहता हूँ ना, इसलिए सबकी बातें सुनता रहता हूँ। कोयल बहन ठीक कह रही है, सब बातें करते हैं और बताते हैं कि पानी कहीं भी नहीं है।
0: अरे कछुए भैया, दूसरे जंगलों के पशु पक्षियों को भी अपने यहाँ तालाब खोदने चाहिए। हाँ
5: हाँ, कल ही किसी जंगल का राजा शेर अपने लूमड़ मंत्री से कह रहा था कि हम भी मिलजुल कर अपने जंगल में तालाब खोदेंगे।
4: क्यों नहीं, मिलजुल कर काम करेंगे तो खोद लेंगे ऐसा तालाब।
0: खाओ, खाओ, खाओ।
4: तुम हंस क्यों रहे हो कौवे, क्या मैंने गलत कहा?
0: अरे नहीं नहीं कोयल, मैं तो ये सोच कर हंस रहा था कि कहीं उनके जंगल में भी पपीहे जैसा कोई हुआ तो क्या होगा। अरे प्यास से मर जाएंगे मगर हाथ नहीं हिलाएंगे।
4: बाप रे, मुझे तो उसका नाम लेते ही उसकी शक्ल नजर आ जाती है। वैसे वो क्या करता है आजकल, इतनी गर्मी में कैसे काम चलता है उसका?
5: मैं भी हैरान हूँ, कभी कभी दूर से उसकी आवाज तो आती है रोने जैसे गाने की।
0: काँ, काँ। हाँ, मैंने तो ये भी सुना है कि जिधर से बरसात का आखिरी बादल गया था वो उसी ओर मुंह उठाए ताकता रहता है।

0: उसकी दर्द भरी आवाज कैसी लग रही है।
1: और इसका जिम्मेदार और कोई नहीं, वो खुद ही है।
2: अच्छा अच्छा, हम पपी है के पास जा रहे हैं। कछुए भाई आकर बताएंगे तुम्हें कि वो क्या कह रहा था। आओ कोयल, चलो चले
0: चलो।
2: कोयल रानी चुपचाप वो सामने वाली डाल पर बैठकर सुनते हैं कि वो क्या कह रहा है।

0: बारिश बिन पानी।
1: क्या ये मर गया?
2: क्या पता,
1: अभी अभी जान है लेकिन बिन पानी तो ये मर ही जाएगा।
2: चलो इसे उठाकर तालाब तक ले चलते हैं।
1: हाँ, ये ठीक रहेगा।
2: पापी है, अरे देखो तो हम आए हैं तुम्हें लेने। बाहू कौआ, अरे उठो, आंखें तो खोलो भाई।
3: पानी,
2: अरे
1: ये भाई।

छतरपुर केंद्र है। इस समय दोपहर के 3 बजे हैं। अब हमारी ये सभा संपन्न होती है। एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अब विविध भारती के कार्यक्रम जारी रहेंगे। शाम 5 बजे हम सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।

मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलो हर्ट्स, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स और न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। शाम 6:30 से इंग्लैंड द ओवल लंदन में ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के मध्य खेले जाने वाले सेमीफाइनल आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2026 का आंखों देखा हाल मीडियम वेव पर सुना जा सकेगा। इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रोजाना प्रसारित कार्यक्रम आप एफएम बैंड और न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर सुन सकते हैं। कार्यक्रम विवरण इस प्रकार है। शाम 6:35 पर लखेश्वर खुदराम और साथियों के गाए हल्बी गीत सुना जा सकेगा। बस्तर के

शाम 7:21 पर होगा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। 8 बजे कार्यक्रम शिक्षकों के लिए, इसमें होगी वार्ता। विद्यार्थी क्यों चुने इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच, वार्ताकार होंगे सुभाष मिश्रा। पीला मन का जे गोट 8:30 पर। ये कार्यक्रम केंद्रित होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर। प्रस्तुति होगी माधुरी यादव की। 9:15 पर कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। मोचो मंचो गीत, पत्रों पर आधारित लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम रात 9:30 पर। रात 10 बजे लोक वाद्य धुन के कार्यक्रम पाड़ में होगा मारी रोसना पाड़ और खेल पाड़ वादक कला।

0: 20 मिनट पर श्री रामचरित मानस का गायन, 6:25 पर गायक स्वर सुरेश वाडकर का, संगीत निर्देशक होंगे सतीश भाटिया। बेड़ा खाड़ा चौक गोट सुबह 6:35 पर, 6:40 पर हुलहुली कार्यक्रम में होगा बोहरैया माता पाड़। वादक कलाकार होंगे गणपति कड़ियारी और साथी। सुबह 7:05 समय होता है कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर का। आकर्षण स्वास्थ्य की बातें क्रम में पथरी रोग विषय पर डॉक्टर चितरंजन पाढ़ी से ली गई भेंट वार्ता। इनसे बातचीत करेंगी चंद्र ऋषि ठाकुर और होगी मधुर गीतों की मधुरिमा। हल्बी समाचार बुलेटिन सुबह 7:30 पर, 8:30 पर कार्यक्रम लोक मंजरी में होगा विभिन्न बोलियों में लोकगीत। झुमझुमा कार्यक्रम में होगा हल्बी गीत। कलाकार होंगे दयो और साथी। प्रसारण समय सुबह 9:00। एक ही फिल्म से 9:30 पर फिल्म होगी तलाश। गुलशन कार्यक्रम में सुबह 10:00 सुनिएगा बरसात शीर्षक पर फिल्मी गीत। 10:30 पर लोकगीतों के कार्यक्रम में होगा मेघनाथ पटनायक और साथियों के गाए हल्बी गीत। 11:00 कार्यक्रम एक ही कलाकार। ये कार्यक्रम केंद्रित होगा पार्श्व गायक मोहम्मद इरफान पर। विभिन्न प्रदेशों के गीतों का कार्यक्रम सबरस 11:30 पर। कला और कलाकार ये कार्यक्रम होगा दोपहर 12:00। घर द्वार महिलाओं का कार्यक्रम 12:30 पर। 1:10 पर होगा फरमाइशी फिल्मी नगमों का कार्यक्रम श्रोता सुमन। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। प्रसारण समय होगा दोपहर 2:30 पर। सांध्यकालीन सभा की शुरुआत होगी शाम 5:00। 5:05 पर होगा देशभक्ति गीत। युवाओं का कार्यक्रम युवाणी शाम 5:10 पर। शाम 6:30 पर होगा गूंडी समाचार बुलेटिन। बस्तर के स्वर शाम 7:00। 7:21 पर होगा ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम आमचो गांव। 8:00 लोकगीतों के कार्यक्रम कुड़ई पुल में आपको सुनवाएंगे नीलू राम और साथियों के गाए हल्बी गीत। पीलामन का जे गोट 8:30 पर, इसमें सुनेंगे पंचतंत्र की कहानियां। प्रस्तुति होगी उर्वशी पाणिग्राही की पुरानी फिल्मों से। रात 9:15 पर, 9:30 पर शासकीय योजनाओं की जानकारी पर आधारित कार्यक्रम उवाट में जैविक खेती मिशन विषय अंतर्गत होगी वार्ता। वार्ताकार होंगी दीपिका ठाकुर। रात 10:00 परिचर्चा। परिचर्चा का विषय होगा मानवाधिकार आज की आवश्यकता। प्रतिभागी होंगे बलदेव मौर्य, जगन्नाथ बघेल, मंधर राम नाग। संपादक होंगे बलवीर सिंह कच्छ। रात 10:30 पर होगा पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनी गंधा। ये थी हमारे केंद्र से प्रसारित कार्यक्रमों की रूपरेखा। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 5:06 हुए हैं। प्रस्तुत है समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम भारत सरकार आपके द्वार गोंडी बोली में।
1: केंज वाले समसामयिक विषय पर आधारित कार्यक्रम संगे नाना सुखलाल नेता हूँ। केंज वाले माँ व ईद कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सवेरे बस्तर संभाग तलापी दूर और अंदरूनी इलाके लगे माता योग अभ्यास कार्यक्रम पे केंद्रित। 12वें राष्ट्रीय योग दिवस तबारी ते 21 जून दिया देश मेटे ते लगे माता योग अभ्यास कार्यक्रम नडुम छत्तीसगढ़ बस्तर संभाग तलापी दूर और अंदरूनी इलाके बने पहली बेरा योग अभ्यास का कार्यक्रम लगा की। बस के माओवादी लोरक न बर्रेल तकारें ते ईद कार्यक्रम किया ना आयो आन वह ने उन्द बीजापुर जिला उचुक अंदरूनी इलाका वने आंद अगा लोकुर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ते

यो कियान नतुनहुर सी वातुर बसके माओवादी ना गढ़ कर या कब्जा से मत्तर जिला करेगुट्टा मटाते बने मात एफओबी ताड़ पाल से तैनात सुरक्षा बल तुर अधिकारी और जवान लोर ईद दिया मिले माची योग अभ्यास की तुर ब्लैक पास्ट परोहिते बुंदाना आंध ईद हैंग हजार फीट ऊंचा मटा बसके कुख्यात माओवादी लोकना सबली सुरक्षा गढ़ मत्ता वर्षा 2025 ते अप्रैल महीने ते सुरक्षा बल द्वारा चला कीतूर ऐतिहासिक

मुख्य धारा से मलसी वाले आत्मसमर्पित माओवादी लोग बने ईद वर्षा लगे मात योग अभ्यास कार्यक्रम ते हिस्सा पैतू अधिनते हरिकाश नाटिन लोरकुन वने योग तपरती रुझान हुडला पुट्टू बीजापुर ता जिला पंचायत संसाधन केंद्र ते लगे मात कार्यक्रम ते जनप्रतिनिधि अधिकारी कर्मचारी सुरक्षा बल और आम नागरिक लोर संगे संगे आत्मसमर्पित माओवादी लोर कुन हुड़ सरी कातूर ईद बेरते योग ता अलग अलग डेरक ने संगे ईदे नता आयना फायदा ता बारे ते जानकारी ही तो ईद बेरते आत्मसमर्पित माओवादी लोर रोजे योग कियाना और समाज ता मुख्य धारा ते मंजूर बेश जीवन जिए मायना तक क्रिया पैतूर ईद लहकर कोंडानार जिला ता शासकीय आदर्श आवासीय कन्या महाविद्यालय कॉलेज परिसर ते लगा किलेर जिला स्तरीय सामूहिक योग अभ्यास कार्यक्रम ते देवकर गांव ते मंता पुनर्वास केंद्र ता पुनर्वासित माओवादी लोर वने हरिकाश हिस्सा पैतू ईद बेरते सबोई लोर योग अभ्यास की स्वास्थ्य जीवन शैली अपना कियाना और योग ताना रोजे ता दिनचर्या ते हिस्सा बने मायना ता क्रिया पैतू कार्यक्रम ते कैंकेरे सांसद भोजराज नाग और बस्तर विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष लता हुसैंडी पुनर्वासित माओवादी लोरकुन मिले मासी और पुनः जीवन शुरुआत ज्ञान काज शुभकामनाएं हेतु ईद पुनर्वास केंद्र से ईसालिंगे 21 आत्मा समर्पित माओवादी मंत्र और कुन मुख्य धारा से जोड़े किया और आत्मनिर्भर बना किया न काजे लाइवलीहुड कॉलेज का माध्यम से कौशल विकास और ट्रेनिंग यंत्र या हिंद यना इवेह ने मोर प्रशिक्षण थी लुर

0: असिस्टेंट स्टेरलिंग हियाना कियांतोर। दूसरा 15 पुनर्वासित मानेकुन जल्दी ही बढ़ाई राजमिस्त्री इलेक्ट्रीशियन सिलाई और गाड़ी चालक तसंगे अलग अलग व्यवसायी के ट्रेड ते स्टेरलिंग हियाना आयार। इस वर्षा 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस विषय स्वस्थ आयु तकाजे योग मत्ता योग उन पुराना शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास तान ताना उत्पत्ति जन्म भारत ते आसमत्ता योग शब्द तुन संस्कृति ते लेह मातुर और इदेत ता अर्थांत जोड़े मायना और उन्द जुट आयना ते की मेंदुल और बुद्धि त मिले मायना त इशाराम सेवा जोहार।
1: एक मजबूत
2: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 5:11 हुए हैं, लीजिए सुनिए युवाओं का कार्यक्रम युववाणी।

0: हेलो हाय गुड इवनिंग नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में, जिसमें मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त पायल दास
1: और मैं हूं रेखा नायक। दोस्तों आप सभी को हमारा प्यार भरा अभिवादन।
0: नमस्कार रेखा, कैसी हो तुम?
1: मैं ठीक हूँ पायल, तुम बताओ तुम कैसी हो?
0: रेखा मैं भी अच्छी हूँ। रेखा आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह हर युवा के लिए भविष्य से जुड़ा हुआ है। विषय है युवाओं के लिए वित्तीय शिक्षा का महत्व।
1: बिल्कुल पायल, आज के समय में युवा पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, है ना?
0: हाँ रेखा, लेकिन क्या वे पैसों का सही प्रबंधन करना जानते हैं?

0: से भी कर सकता है ना।
1: बिल्कुल, एक बात तो अक्सर सुनने को मिलती है कि अभी तो उम्र ही क्या है, बचत बाद में कर लेंगे, है ना।
0: सही, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। बचत की आदत जितनी जल्दी शुरू हो जाए उतना अच्छा है। छोटी छोटी बचत भी समय के साथ बड़ी रकम में बदल सकती है।
1: बिल्कुल, और आजकल सोशल मीडिया पर निवेश से जुड़ी ढेर सारी जानकारी भी देखने को मिलती है।
0: हाँ, लेकिन किसी भी निवेश से पहले पूरी जानकारी लेना बहुत ज़रूरी होता है। बिना समझे पैसा लगाना नुकसान का कारण भी बन सकता है, है ना?
1: हाँ बिल्कुल, सही कहा तुमने पायल। और वित्तीय शिक्षा युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में भी मदद करती है ना।
0: हाँ बिल्कुल, जब युवा अपने पैसों का सही प्रबंधन करता है, सीख जाता है ना, प्रबंधन करना अगर वो सीख जाता है तो उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है और वे अपने लक्ष्यों को बेहतर तरीके से हासिल कर पाता है।
1: बिल्कुल दोस्तों, ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के लिए भी जागरूकता ज़रूरी है। OTP, पासवर्ड और बैंक की जानकारी किसी के साथ साझा नहीं करनी चाहिए।
0: जी हाँ दोस्तों, डिजिटल सुरक्षा भी वित्तीय शिक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है।
1: तो श्रोताओं, आज की चर्चा में हमने जाना है कि वित्तीय शिक्षा केवल पैसे का ज्ञान नहीं बल्कि एक सुरक्षित और सफल भविष्य की नींव है। और अगर युवा आज से ही बचत और समझदारी से खर्च करने की आदत डाल ले तो आर्थिक रूप से मजबूत बन सकता है और साथ ही आत्मनिर्भर भी।
0: इसी संदेश के साथ आइए अब बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर और जानते हैं रेखा से हमारे आज के कार्यक्रम की सूची।
1: बिल्कुल, तो दोस्तों आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश, जिसमें हम हमारे श्रोता दोस्तों के पसंद के गीत सुनेंगे और लेकर आए हैं कार्यक्रम सामान्य ज्ञान की बातें और साथ ही होगा कार्यक्रम वार्ता। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश की ओर और जानते हैं कि हमारे श्रोता दोस्त कौन है और इन्होंने कौन से गाने की फरमाइश की है।
0: कनेरा मोहल्ला पटियाला से हैं आप मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका वंशपत्ता। और साथ ही है सुभाष वार्ड भाटापारा से ML यादव, अजय कुमार यादव, अमित अमीन यादव, गिरीश करण यादव, युवान यादव। इन सभी ने सुनना चाहा है ये गीत।
1: दोस्तों इन सभी ने सुनना चाहा है फिल्म रब ने बना दी जोड़ी का गीत, जिसमें स्वर दिया है सुखविंदर सिंह, संगीतकार है सलीम, गीतकार है जयदीप। आइए सुनते हैं हमारे दोस्तों के पसंद का ये गीत।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 cc तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
3: दोस्तों, आपकी फरमाइश में और भी गीत सुनेंगे, पर अभी वक्त हो चला है कार्यक्रम समान ज्ञान की बातों को जानने का।
4: दोस्तों, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है, जो गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है, और भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा है।
3: अगली समान ज्ञान है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। यहाँ दुनिया की लगभग 60% आबादी निवास करती है।
4: दोस्तों, अगला है, कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिर्जापुर,
3: मिजोरम। अगली सामान्य ज्ञान की बात में है, भारत का संविधान बनने में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को।
4: दोस्तों, अगला है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दी थी। तो दोस्तों, ये थी सामान्य ज्ञान से जुड़ी कुछ जानकारियां। फिर से रुक करते हैं फरमाइशी गीतों की ओर।
3: अगले गीत की फरमाइश की है, डोंगर गांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अंशिका, तन्मय गजभिये। लुधियाना पंजाब से हैं आप, विनोद पुरी, वीपी पुरी, अशोक पुरी, सुशील पुरी, बीके पुरी, कैलाश पुरी, अनीता पुरी, ममता पुरी, मेघा पुरी, पूजा पुरी, गगन कपूर, गुंजन कपूर, लालसा कपूर, रमा मलिक, कुणाल मलिक, निधि मलिक,

हरीश पुरी, सतीश पुरी, राकेश पुरी और साथ है विनोद पाली, डीसी पुरी, अरुण पुरी। इन सब ने फरमाइश की है फिल्म कुछ कुछ होता है से ये गीत, जिसे गाया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने, संगीत से सजाया है अलका याग्निक और कुमार सानू ने, संगीत है जतिन ललित, गीतकार है समीर। आइए सुनते हैं ये गीत।

0: कुछ
1: दोस्तों, फिर से कुछ पल के लिए फरमाइशी गीतों को देते हैं विराम, क्योंकि अब वक्त हो चला है कार्यक्रम वार्ता का।
2: तो दोस्तों, आइए सुनते हैं कार्यक्रम वार्ता बस्तर का इतिहास निधि मिश्रा से।
3: आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों को बस्तर के इतिहास के बारे में कुछ रोचक बातें बताने वाली हूँ। दोस्तों, बस्तर में 14वीं शताब्दी के पूर्वाद से काकतीय राजवंश का शासन रहा है। काकतीय वंश, जो कि चालुक्य वंश के नाम से भी जाना जाता है, बस्तर में प्रथम शासक बने। अन्नम देव काकतीय वंश का उदय दक्षिण भारत के तेलंगाना राज्य से माना जाता है। तेलंगाना के काकतीयपुर में इस वंश ने प्रथम नगर की स्थापना की एवं इसी नगर से इस वंश ने अपना वंश नाम काकतीय प्राप्त किया। शिलालेखों से प्राप्त जानकारी एवं विद्वानों के शोध से यह पता चला है कि बस्तर के राजा काकतीय तथा पांडु वंश में उत्पन्न हुए। काकतीय वंश के राजाओं का राज्य दक्षिण के वारंगल में था। वहां के राजा प्रताप रुद्र देव के छोटे भाई अन्नम देव ने वारंगल से पलायन कर दक्षिण में दंडकारण्य क्षेत्र में आश्रय लिया एवं संघर्ष कर काकतीय वंश की नींव रखी। वारंगल से अन्नम देव के पलायन का कारण मुस्लिम शासकों से संघर्ष बताया जाता है। ऐसा माना जाता है कि रक्ष संस्कृति से पृथ्वी की रक्षा के लिए ब्रह्मा ने चुलुक से एक वीर

पुरुष की उत्पत्ति की, जिसने चालुक्य वंश का प्रारंभ किया। इसीलिए चालुक्य वंशी बस्तर नरेश विष्णु की पूजा करते हैं। वारंगल में काकतीय वंश की 8वीं शासिका महारानी रुद्रांबा के बड़े नाती प्रताप रुद्रदेव वारंगल के महाराजा बने एवं उनके छोटे भाई ने बस्तर के दंडकारे क्षेत्र में पलायन कर नागवंशी राजाओं को पराजित कर काकतीय वंश की नींव रखी। अन्नम देव ने सन 1313 में राजा के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त की एवं 42 वर्ष तक राज्य करने के पश्चात 77 वर्ष की आयु में सन 1358 में उनकी मृत्यु हुई। उन्होंने बारसूर तथा दंतेवाड़ा पर विजय प्राप्त कर नागवंशी राजाओं की राजधानी रहे चक्रकूट पर विजय प्राप्त की। ऐसा माना जाता है कि तत्कालीन बस्तर वारंगल पर आश्रित राज्य नहीं था। यहाँ पर काकतीय शासक ने विजेताओं के समान व्यवहार न कर एक सामान्य राजा की भांति व्यवहार किया। उस समय नागवंशी शासकों का प्रमुख नगर बारसूर था। आज भी बारसूर में मिले पुरातात्विक अवशेष उसके वैभव की कहानी आप कहते हैं। मामा भांजा का मंदिर हो अथवा गणेश जी की विशाल बलुआ पत्थर से बनी प्रतिमा उस काल की कला एवं संस्कृति की अनुपम धरोहर है। ऐसा माना जाता है कि अन्नम देव को देवीय वरदान था कि वह जहां तक भी अपने विजय अभियान में जाएंगे देवी उनके साथ साथ जाएंगी एवं देवी के पायल की आवाज उन्हें सुनाई देती रहेगी। किंतु यदि अन्नम देव ने पीछे मुड़कर देखा तो फिर देवी के पायल की आवाज उन्हें कभी सुनाई नहीं देगी एवं उनका विजय अभियान रुक जाएगा। उत्तर बस्तर के अपने विजय अभियान से जब अन्नम देव निकले तब पैरी नदी को पार करते समय उन्हें देवी की आवाज सुनाई देनी बंद हो गई और उन्होंने पीछे मुड़कर देखा पैरी नदी की रेत में पैर धस जाने के कारण देवी की पायल नहीं बजी थी। बस यही उनका विजय अभियान रुक गया। देवी की पायल के नाम पर ही उस नदी का नाम पैरी पड़ा। पुरुषोत्तम देव एक प्रतापी एवं महत्वाकांक्षी राजा था। उसने रायपुर के कलचूरियों पर आक्रमण किया किंतु उसे पराजय का मुंह देखना पड़ा। कलचूरियो राजा ने विजय प्राप्त करने के पश्चात भी बस्तर पर अधिकार करने का प्रयास नहीं किया। पुरुषोत्तम देव ने पैदल चलकर जगन्नाथपुरी की तीर्थयात्रा की एवं भगवान जगन्नाथ के मंदिर में सोना चांदी हीरे जवाहरात बढ़ाए। बस्तर नरेश की श्रद्धा से प्रसन्न होकर भगवान जगन्नाथ ने स्वप्न में आकर उन्हें रथपति की उपाधि दी। तब से लेकर आज तक बस्तर में दशहरा पर्व के अवसर पर विशाल काष्ठ रथ की परिक्रमा होती है। पहले रथ पर राजा बैठा करते थे किंतु बदली परिस्थितियों में अब माँ दंतेश्वरी का छत्र रथ पर रहता है। साथ में उनके पुजारी भी रथ की सवारी करते हैं। पुरुषोत्तम देव के शासन काल में राजधानी मधोन्ता से बस्तर कर दी गई। टंकपाल देव की असामयिक मृत्यु के कारण 13 वर्ष की उम्र में उनका पुत्र रक्षपाल गद्दी पर बैठा। इनके शासन काल में गोलकुंडा के मुस्लिम शासक ने बस्तर पर आक्रमण किया। रक्षपाल देव की मृत्यु के पश्चात सत्ता का संघर्ष गहरा हो गया एवं उसके बड़े पुत्र दलपत देव की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर उसकी सौतेली माँ ने अपने भाई को गद्दी सौंप दी। किंतु दलपत देव जयपुर राजा की मदद से अपना खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त किया। दलपत देव के द्वारा बनाया गया विशाल तालाब दलपत सागर आज भी उनकी याद दिलाता है। दलपत देव के पुत्र दरिया देव ने सन 1775 में राजपाट की बागडोर संभाली। दरिया देव की मृत्यु के पश्चात उसका अल्पवयस्क पुत्र महिपाल देव जो कि उस समय सिर्फ 9 वर्ष का था गद्दी पर बैठा, किंतु राजकाज का कार्य उनके चाचा उमराव सिंह के नियंत्रण में था। उमराव सिंह ने मराठों की मदद से बस्तर पर आक्रमण किया। भोपाल ने अपने शासनकाल में बहुत से तालाब खुदवाए, उनमें से कुछ आज भी सुरक्षित हैं। भोपाल देव की मृत्यु 47 वर्ष की आयु में हो गई एवं उसके अल्पवयस्क पुत्र भैरम देव को गद्दी पर बैठा दिया गया। भैरम देव की मृत्यु के पश्चात 6 वर्ष की आयु में रुद्र प्रताप देव 29 जुलाई 1891 को गद्दी पर बैठे। राजा रुद्र प्रताप देव के कोई पुत्र नहीं था, अतः उनकी मृत्यु के पश्चात 1921 को उनकी पुत्री राजकुमारी प्रफुल्ल कुमारी देवी मात्र 11 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठी। इनका देहांत लंदन में 28 फरवरी 1936 को हुआ। इनकी मृत्यु के पश्चात इनके बड़े पुत्र प्रवीर चंद्र भंजदेव 6 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठे एवं वे बस्तर के अंतिम शासक रहे। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ एवं प्रवीर चंद्र भंजदेव ने 1 जनवरी 1948 को बस्तर राज्य का विलय भारत गणराज्य में कर दिया गया। 25

मार्च 1966 को जगदलपुर राजमहल गोलीकांड में महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव अनेक आदिवासियों के साथ मारे गए। वास्तविक रूप से महाराजा प्रवीर ने बस्तर पर भले ही कभी राज ना किया हो, किंतु बस्तर के जनमानस में उनकी प्रतिष्ठा ईश्वर के रूप में हुई एवं आज भी उन्हें बस्तर के घर घर में पूजा जाता है। महाराजा प्रवीर ने वास्तविक रूप से बस्तर वासियों के दिल पर राज किया और यह राज आज भी कायम है। आइए दोस्तों, अब हम बस्तर के प्राकृतिक रीति रिवाजों के बारे में जानते हैं। जैसा कि दोस्तों आप बस्तर के प्राकृतिक सौंदर्य परंपराओं को बखूबी जानते होंगे, किंतु जब हम बस्तर के इतिहास के बारे में बात कर ही रहे हैं तो थोड़ा गहराई से जानते हैं। बस्तर छत्तीसगढ़ में ही नहीं विदेशों में भी इस जगह का नाम बहुत से लोग जानते हैं, क्योंकि यहाँ आदिवासी संस्कृति अब भी कायम है। वहीं शिल्प प्रेमी इसलिए जानते हैं क्योंकि बस्तरिया शिल्प अपने आप में बेजोड़ है। बस्तर की सीमाएं उड़ीसा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश आदिवासी पहाड़ियों व दक्षिण हिस्सा बैलाडीला की खनिज खदानों से घिरा हुआ है। माँ दंतेश्वरी बस्तर राजघराने की देवी है। कहा जाता है कि देवी इन घने पहाड़ों जंगलों में राजा की रक्षा करते हुए उनका मार्गदर्शन करती हैं। दशहरा बस्तर का सबसे बड़ा भव्य व प्रमुख त्योहार है, मगर इसका श्रीराम अथवा उनकी अयोध्या लौटने से कोई संबंध नहीं है। यह पर्व दंतेश्वरी देवी को समर्पित है। प्रकृति यहाँ आपको अपने संपूर्ण रूप में स्वागत करती हुई सी प्रतीत होगी। बस्तर की जनसंख्या में करीब 3/4 लोग जनजातियों के हैं, जिसमें से हर एक की अपनी मौलिक संस्कृति, मान्यताएं, बोलियां, रीति रिवाज और खान पान की आदतें हैं। बस्तर के जनजातियों में गोंड, मारिया, मुरिया, अबुझमाड़िया, धुरुआ, परजा और डोरिया शामिल हैं। आप बस्तर में कहीं भी घूम रहे हो, हाट, स्थानीय बाजार की ओर जाते हुए जनजातीय लोगों को उनकी वेशभूषा में पूर्ण सजे धजे देख सकते हैं। गोंड जाति की सबसे महत्वपूर्ण उप जनजाति अबुझमाड़ी शर्मीले व संकोची होते हैं। नृत्य महोत्सव के दौरान सिंहों से सजे मुकुट पहनने के लिए जाने जाने वाली जनजाति माड़िया सामाजिक होती है। बस्तर की सदियों पुरानी परंपराएं साधारण व जटिल कलाकृतियों को चिन्हित करती हैं। इन कलाकृतियों को आकार देने वाले कारीगर प्राकृतिक संसार से प्रेरित होते हैं। बस्तर की सुंदरता कला की प्राचीनता व आधुनिकता के सम्मिश्रण में निहित है। कला में बस्तर कला की लोकप्रियता बढ़ने का कारण इसमें हड़प्पा और सिंधु सभ्यता का प्रभाव है। कोंडागांव, नारायणपुर व जगदलपुर टेराकोटा कला के लिए प्रसिद्ध हैं। जगदलपुर कोशा सिल्क बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। बेल मेटल व रॉट आयरन की कारीगरी कोंडागांव और जगदलपुर की विशेषता है। लकड़ी और बांस का सर्वश्रेष्ठ कार्य नारायणपुर व जगदलपुर में देखा जा सकता है। बस्तर की सबसे पुरानी हस्तकलाओं में स्मृति चिन्ह के रूप में प्रयोग किए जाने वाले नक्काशीदार पत्थर की भी शामिल हैं। नारायणपुर के हस्तकला केंद्र अथवा शिल्प ग्राम आप कुछ अनुपम कलाकृतियां चुन सकते हैं। यहाँ पर आदिवासी जंगल से एकत्रित की गई वस्तुओं के स्थान पर नमक, तंबाकू, कपड़े व अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुएं खरीदते हैं। धान के विस्तृत खेत, पगडंडीहीन वनों के मनोरम दृश्य, पशु पक्षियों की अद्भुत प्रजातियां, नदियां, झरने एवं प्राचीन गुफाएं बस्तर को प्रकृति प्रेमियों का स्वर्ग बनाती हैं। यह दुर्गम दुर्लभ भूमि एक सुखद आश्चर्य है। उच्च प्रजाति के वृक्षों से सजी यह अन्य भूमि अनेक भागों में विभक्त होती है। यह वन संरक्षित जंगली भैंस, शेर, तेंदुआ, उल्लू और भांति भांति के पशु पक्षियों के लिए जैसे लुप्त प्रायः बस्तरिया पहाड़ी मैना के लिए घर है। किसी भी जैव विज्ञानी के लिए कांगेर वैली नेशनल पार्क का शोध का विषय है। यह घाटी सुंदर और मनमोहक दृश्यों, आकर्षक जलप्रपातों, नदियां आदि एवं प्राचीन गुफाओं के लिए जानी जाती हैं। कुटुमसर कैलाश एवं दंडक गुफाओं में चूने के स्तंभ आकर्षण का केंद्र हैं। 100 फीट की ऊंचाई से गिरते तीरथगढ़ जलप्रपात का पारदर्शी बहाव हम सबका ध्यान आकर्षित करते हैं। इंद्रावती नदी से निर्मित चित्रकूट जलप्रपात नियाग्रा की याद दिलाता है। इन स्थानों की यात्रा के साथ ही बस्तर की आदिवासी संस्कृति को समझने के लिए मानव संग्रहालय भी देखा जा सकता है। देवी देवताओं पर आस्था रखने वाले को जहां दंतेवाड़ा स्थित माई दंतेश्वरी का देवालय सुकून और शांति प्रदान करता है, वहीं प्राचीन और पुरातत्व प्रेमियों के लिए बारसूर का गणेश मंदिर, मामा भाचा का मंदिर, नारायणपुर का विष्णु मंदिर, भद्रकाली का मंदिर तथा पुजारी कांकेर के धर्मराज का मंदिर भी आकर्षण का

0: केंद्र है। पुरातत्व के शोधकर्ताओं के लिए कई गांवों में अटूट पुरातात्विक संपदा बिना उत्खनन के पड़ी है। अनेक अज्ञात टीले आज भी रहस्य बने हुए हैं। बस्तर के कुछ दर्शनीय स्थल हैं कांकेर, केशकाल, नारायणपाल, भोंगापाल, समलूर, बड़े डोंगर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बैलाडीला, चित्रकूट, कांकेर घाटी, भैरमगढ़, बारसूर एवं बीजापुर इत्यादि। समय को देखते हुए मैंने बस्तर के इतिहास का बड़ा ही सूक्ष्म वर्णन किया है। जी हाँ दोस्तों, अपने शब्दों को विराम देते हुए आप सभी श्रोताओं को धन्यवाद देती हूँ। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे वार्ता बस्तर का इतिहास। वार्ताकार थी निधि मिश्र से।
2: तो फिर से रुक करते हैं आपकी फरमाइश गीतों की ओर और जानते हैं हमारे अगले श्रोता कौन हैं और वो कौन सी गीत सुनना चाहते हैं। ग्राम बंगला मटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे, अंजनी, त्रयंबिका, लीना, अंशुमाला, आशुतोष अंगारे। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा रॉय, अमित कुमार रॉय, हैप्पी रॉय। दुबिया नेवादा गाजीपुर से प्रतीक रॉय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय। शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश रॉय, श्रीमती प्रीति, नवनीत। मोहम्मद हलवैयान सोरकेट जिला बिजनौर, वक्कार खरीदी, इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी, हीना कौसर। दोस्तों इन सब ने सुनना चाहा है फिल्म कल हो ना हो से गीत। स्वर दिया है साधना सरगम, सुजाता भट्टाचार्य, उदित नारायण, सोनू निगम। संगीतकार जावेद अख्तर, गीतकार शंकर एहसान वाय। तो आइए सुनते हैं हमारे दोस्तों के पसंद की गीत।

0: का मैक्स ग्रिट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
1: तो दोस्तों अगले गीत की फरमाइश की है।
2: छत्तीसगढ़ भाटापारा से हैं आप द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झाविंद्र कुमार वर्मा, और साथ ही है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, और साथ ही है हेमलता देवांगन, डिंपल देवांगन। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हैं आप हरदेव मिका, बलविंदर बीरक, जेतक बीरक, मीका बीरक। जिला खंडवा ग्राम लोहरी से हैं आप राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला धनजे, गायत्री धनजे। खुर्दी रोड मानपुर से हैं आप विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद, नीतू वैद।
1: तो दोस्तों इन सभी ने सुनना चाहा है फिल्म बॉडीगार्ड का गीत। स्वर दिया है अंश किंग क्लीन टोन ने, संगीतकार है प्रीतम, गीतकार है निलेश मिश्रा। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

0: बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: तो दोस्तों, अगले गीत की फरमाइश की है हटोत बाजार लाहौर से हैं आप कमलनाथ पटेल, राकेश कुमार पटेल, समीर पटेल, राजकुमारी पटेल। इंदौर से हैं आप लाला फतेह चांदनी, लीला फतेह चांदनी, संगीता, सुनीता, पिकेश, साक्षी, मनन, तनिषा।
3: तो दोस्तों, इन सब ने सुनना चाहा है गीत फिल्म पड़ोसन से। स्वर दिया है लता मंगेशकर, आशा भोसले ने। संगीतकार है आर डी बर्मन, गीतकार है राजेंद्र कृष्णा। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

0: तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर कल शाम होगी आप सभी से मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति।
1: मुझे

0: अभी आप सुन रहे थे युवाओं का कार्यक्रम युववाणी,
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ने 26 से अधिक देशों के साथ प्रवासन और आवागमन संबंधी 28 साझेदारी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासन, मानव तस्करी, धोखाधड़ी करने वाले बिचौलियों और शोषण जैसी चुनौतियों से निपटना सभी देशों की साझा जिम्मेदारी है। आज नई दिल्ली में मानव संसाधन आवागमन मंच को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि सुरक्षित और कानूनी प्रवासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म से साफ दिखाई देती है। उन्होंने बताया कि इस मंच के शुरू होने के बाद से अब तक 50 लाख से अधिक आव्रजन मंजूरियां जारी की जा चुकी हैं। यूरो बैंक ने ग्रीस से भारत में धन भेजने के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। ये पहल यूरो बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मजबूत अर्थव्यवस्था से ही देश की रक्षा क्षमता मजबूत होती है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि रसायन, इलेक्ट्रॉनिकी, जहाज निर्माण और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में मजबूत आधार के कारण गुजरात जल्द ही रक्षा विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनेगा। वे आज वडोदरा में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। जनरल धीरज सेठ ने आज देश के 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाल लिया है। उन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया है। करीब 4 दशक की सैन्य सेवा के दौरान जनरल द्विवेदी ने परिचालन, रणनीति, क्षमता विकास और संस्थागत कार्यों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
2: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
1: भारतीय तटरक्षक बल के जहाज सचेत ने कर्नाटक के मंगलुरु तट के पास समुद्र में खोज और बचाव अभियान चलाकर मछली पकड़ने वाली भारतीय नौका मंजू माता के 6 मछुआरों को बचाया।

0: गणना प्रपत्रों की दो प्रतियां वितरित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों से शिक्षा को न्याय संगत और समावेशी समाज के निर्माण के साधन के रूप में उपयोग करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि शिक्षित युवाओं को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के स्थायी मिशन ने पख्तिया, पक्तिका और कुनार प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। मिशन ने पाकिस्तान से अफगान क्षेत्र में सैन्य कार्रवाई तुरंत रोकने और अंतर्राष्ट्रीय कानून के कथित उल्लंघन के लिए जवाबदेही तय करने की मांग की है। तालिबान के उपप्रवक्ता हमदुल्ला फितरत के अनुसार 28 जून की रात को हुए इन हवाई हमलों में 36 लोगों की मौत हुई और 163 अन्य घायल हुए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज आइवरी कोस्ट का सामना नॉर्वे से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं रात 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में बहुत तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6:05 हुए हैं।

मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6:10 होने को हैं। छत्तीसगढ़ी समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे हैं। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी रायपुर है। अब आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग संध्या तिवारी के जय जोहार। अब सुनो आज के प्रमुख समाचार। वीबी जी राम जी योजना छत्तीसगढ़ समेत देश भर में काली ले हो ही लागू। राज्य सरकार ह सहकारी समिति मन के माध्यम ले किसान मन ला देवैया यूरिया ऊपर लागू 80% के सीमा ला खत्म कर दे हे। और सरगुजा जिला में राखे गए 2 दिन के रामगढ़ महोत्सव आज सिरागे। समापन समारोह में मुख्यमंत्री होइन शामिल। अब समाचार विस्तार ले। विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण योजना देश भर में काली 1 जुलाई लागू हो जही। ये योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के जगह लिही। एकर तहत हर एक ग्रामीण परिवार मल्ला हर वित्तीय बछर में 125 दिन के रोजगार देवाए के गारंटी दे जाही। ये योजना के तहत कोनो भी मनखेला बेरा मा काम नहीं मिलही ता ओला बेरोजगारी भत्ता दे के प्रावधान घलो है। योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र मन मा सड़क तरिया जल संरक्षण सिंचाई वृक्षारोपण सार्वजनिक परिसंपत्ति के निर्माण और आने आने विकास काम मन ला प्राथमिकता दे जाही। छत्तीसगढ़ में ये योजना के प्रचार प्रसार पर ग्राम सभा चौपाल पोस्टर बैनर मुनादी रथ प्रचार और डिजिटल माध्यम के उपयोग करेगी। उन्हें सरपंच सचिव रोजगार सहायक स्व सहायता समूह के माई लोगिन जनप्रतिनिधि और स्थानीय सामाजिक संगठन रहा ले लोगन मल्ला योजना के जानकारी देगी। एकर अलावा ग्राम और जनपद पंचायत के संगे संग जिला स्तर में प्रशिक्षण बैठक और ग्राम सभा के आयोजन करेगी। केंद्र सरकार ह पेट्रोल और डीजल के बेचे और खरीदी में लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध ला 1 जुलाई ले हटाए के फैसला करे है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय है कहे है कि सार्वजनिक क्षेत्र के तेल विपणन कंपनी के खुदरा पेट्रोल पंप में अब सामान्य व्यवस्था के तहत ईंधन की बिक्री होगी। मंत्रालय डाले

0: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही कि किसी भी क्षेत्र के विकास के बिना विकसित भारत के सपना पूरा नहीं हो सका है। हरियाणा के हिसार में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह ला संबोधित करत श्री चौहान ने कही कि सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करे में काम करत है जौन हाँ माटी और ओमा जरूरी उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी दी ही ओमन किसान मला जैविक खेती अपनाए के सलाह दी। राज्य सरकार ह सहकारी समिति मन के माध्यम ले किसान मला देवैया यूरिया ऊपर लागू 80% के सीमा ला खत्म कर दे है। अब किसान मल्ला पाछू खरीफ बछर जैसन उखर पात्रता के मुताबिक एक मुश्त यूरिया देवाए जाही। प्रदेश में यूरिया के पर्याप्त मात्रा देखत पहली लागू कुछ एक रोक मल्ला खत्म कर दे गए है। जांजगीर चांपा जिला के कृषि विभाग के उप संचालक राकेश शर्मा बताइन है कि संबंधित सहकारी समिति में पर्याप्त मात्रा में स्टॉक होए के सेती किसान मल्ला एक मुश्त यूरिया दे जाही। उन्हें कोनो समिति में स्टॉक के कमी होए में बाँचे मात्रा ला यूरिया पहुँचते किसान मल्ला बांटे जाही। उन्हें वैश्विक परिस्थिति के सेती रासायनिक उर्वरक की उपलब्धता में पड़त प्रभाव ला देखत कृषि विभाग रहले राज्य में नैनो डीएपी और नैनो यूरिया के उपयोग ला बढ़ावा दे जावत है। राज्य सरकार ह किसान मन ला नैनो उर्वरक के प्रति जागरूक करे बर अभियान चलावत है। कृषि विभाग ह किसान मन ले अपील करे है कि अपन तीर ले सहकारी समिति और कृषि विभाग के अधिकारी मन ले संपर्क करके नैनो डीएसपी और नैनो यूरिया के वैज्ञानिक उपयोग के जानकारी लेवे। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचत हन छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगू बाढ़ बाँचे समाचार कोती। सरगुजा जिला के रामगढ़ में राखे गए 2 दिन के रामगढ़ महोत्सव आसी रागे समापन समारोह में मुख्यमंत्री सुदेश साय शामिल हुई। ये मौकमा श्री साय कहने कि रामगढ़ सरगुजा के हजारों बछर जुना सांस्कृतिक चेतना कला आस्था गौरवशाली इतिहास के जीवंत प्रतीक हरय। ओमन कहने कि विश्व के प्राचीनतम नाट्यशाला के रूप में विख्यात ये स्थल संस्कृति इतिहास साहित्य और पर्यटन के संगम हरय। ओमन कहने कि छत्तीसगढ़ के धरती प्राकृतिक संपदा के संगे संग सांस्कृतिक और पुरातात्विक रूप में घलो विश्व स्तर में बड़का चिन्हारी राखथे। ये मौकमा मुख्यमंत्री ह रामगढ़ के विकास पर 1 करोड़ रुपया और उदयपुर डूमर डीहला मिला के नगर पंचायत बनाए के घोषणा करी। ये दौरान मुख्यमंत्री ह विश्व के प्राचीनतम नाट्यशाला के रूप में विख्यात सीता बेंगरा गुफा जोगीमारा गुफा और क्षेत्र के अनूठा प्राकृतिक धरोहर हाथी पोल के अवलोकन करी। ये मौकमा कृषि मंत्री रामविचार नेताम पर्यटन और संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल समेत आने आने जनप्रतिनिधि मौजूद रही। भारतीय जनता पार्टी हा महिला मोर्चा में संभाग प्रभारी और सह प्रभारी मन के नियुक्त करे है। ये सूची भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव के सहमति ले प्रदेश महामंत्री और मुख्यालय प्रभारी नवीन मारकंडे जारी करीन है। हेमलता चंद्राकर ला रायपुर संभाग के प्रभारी और सुषमा खलकोला सह प्रभारी नियुक्त करे गए है। ऐसने है शीतल नायक ला दुर्ग संभाग के प्रभारी और वर्षा सिंह ला सह प्रभारी बनाए गए है। रंजिता रंधावाला बस्तर संभाग के प्रभारी और जानकी कोरसाला सह प्रभारी फुलेश्वरी पैगराला बिलासपुर संभाग के प्रभारी और किरण साहूला सह प्रभारी के संग किरण मरकामला सरगुजा संभाग के प्रभारी और रंजनी तिवारी ला सह प्रभारी बनाए गए हैं। रथ यात्रा के मौका में यात्री मन के सुविधा बर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे है गोंदिया पुरी गोंदिया के बीच रथ यात्रा स्पेशल ट्रेन चलाए के फैसला ले है। ये विशेष ट्रेन 2, 9, 16 और 29 जुलाई के गोंदिया ले पुरी पर चलही। वापसी में ये ट्रेन 3, 10, 17 और 30 जुलाई के पुरी ले गोंदिया पर रवाना होगी। ट्रेन के स्टॉपेज डोंगरगढ़ राजनांदगांव दुर्ग रायपुर समेत कई ठीन प्रमुख स्टेशन मन में रही। उन्हें हटिया LTT हटिया समर स्पेशल ट्रेन के अवई जवई 15 जुलाई तक बढ़ाए गए हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF मां आरक्षक के पद में भर्ती पर कथित रूप से फर्जी जातीय निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे के मामला में आरक्षक की सेवा खत्म कर दी गई है। उन्हें उतई पुलिस आरक्षक के

0: पद्मा चयनित आरोपी मोहित के खिलाफ अपराध दर्ज करके मामला ला कार्यवाही के बर मध्य प्रदेश पुलिस ला भेज देही। मिले खबर के मुताबिक एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा 2025 के तहत भर्ती प्रक्रिया के दौरान आरोपी मन फर्जी जातीय निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे रहीन। दस्तावेज के सत्यापन के बाद जातीय निवास प्रमाण पत्र फर्जी पाएगीस, जेखर बाद आरक्षक के सेवा समाप्ति के कार्यवाही करेगी। अब मौसम के हाल। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून आज पूरा छत्तीसगढ़ में सक्रिय हो गए है। एकर असर ले पूरा प्रदेश में हल्का ले मध्यम वर्षा के दौर शुरू हो गए है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी है आकाशवाणी समाचार ले गोट बात करत बताई है कि जुलाई महीना में मानसून की गतिविधि में बढ़ोतरी होए के संभावना है। यही बीच सरगुजा जिला में काली हवा गरेर और तेज वर्षा के दौरान गाज गिरे ले 5 साल के लड़का समेत 3 जिन लोगों की मौत हो गई। उन्हें 1 जिन नोनी गंभीर रूप ले घायल हो गए है। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फिर। वीवी जी रामजी योजना छत्तीसगढ़ समेत देशभर में काली ले हो ही लागू। राज्य सरकार है सहकारी समिति मन के माध्यम ले किसान मन ला देवैया यूरिया ऊपर लागू 80% के सीमा ला खत्म कर दे है। और सरगुजा जिला में राखे गए 2 दिन के रामगढ़ महोत्सव आसिरागे समापन समारोह में मुख्यमंत्री होइन शामिल। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यह सिरावत है। जय जोहार।
1: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6:20 हुए हैं। संस्कृत समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

मचू कहनी के सांग ले एदाय मैं जीवन काय करूं आए भाई। अच्छा अंग्रेज मन संगे लड़ते लड़ते मरें देना मैं, अंग्रेज मन चो चाल के समझुक नी होए भाई। आम चो राजा के गुचान देवान के राजा बनाला, आउर आम चो ऊपरे अत्याचार कर सुत भाई। दादा आज ले तू एकला नी आसना, हम ही बोले तुझे संगे आसू, लड़वा लड़वा अंग्रेज मन संगे मिसुन लड़वा गुंडा।

आकाशवाणी का ये माफ कीजिएगा, अभी आप सुन रहे थे लखेश्वर खुदराम और साथियों के गाए हल्बी लोकगीत। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6:45 हुए हैं। विज्ञापनों के बाद प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।

0: अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
1: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है।
0: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
3: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की

गाए हल्बी लोकगीत। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6:45 हुए हैं। विज्ञापनों के बाद प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।

0: अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
1: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है।
0: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
3: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशी।
4: चालक राकेश शर्मा ने बताया कि संबंधित सहकारी समिति में पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध होने पर किसानों को एक मुश्त यूरिया प्रदान किया जाएगा। वहीं किसी समिति में यदि स्टॉक की कमी है तो किसानों को किस्तों में यूरिया उपलब्ध कराया जाएगा। इस बीच वैश्विक परिस्थितियों के कारण रासायनिक उर्वरकों की उपलब्धता पर पड़ रहे प्रभाव को देखते हुए कृषि विभाग द्वारा राज्य में नैनो डीएपी और नैनो यूरिया के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज रायपुर में हुई उच्च स्तरीय बैठक में राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सूची को अंतिम स्वरूप प्रदान किया गया। इस सूची में 156 खिलाड़ियों के नाम शामिल हैं। ये खिलाड़ी 20 अलग अलग खेलों से संबंध रखते हैं। अनुमोदित खिलाड़ियों की सूची को सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा जाएगा। विभाग द्वारा इसे अधिसूचित करने के बाद इन खिलाड़ियों को शासकीय सेवा में लेने के लिए कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी। बैठक में बताया गया कि राज्य में अब तक 182 उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित किए जा चुके हैं। भारतमाला परियोजना के तहत विकसित किए जा रहे इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंतर्गत बिलासपुर उर्गा खंड पर आम नागरिकों और सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इस निर्माणाधीन सड़क पर आवागमन रोकने के लिए सभी एंट्री और एग्जिट प्वाइंट बंद कर दिए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। सरगुजा जिले के रामगढ़ में आयोजित 2 दिवसीय रामगढ़ महोत्सव का आज समापन हो गया। समापन समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। श्री साय ने कहा कि विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला के रूप में विख्यात ये स्थल संस्कृति, इतिहास, साहित्य तथा पर्यटन का अद्भुत संगम है।
5: सरगुजा का ये क्षेत्र बहुत ही पवित्र है, सांस्कृतिक रूप में बहुत ही सुंदर है और हम लोगों की आस्था और समृद्ध सांस्कृतिक का एक साक्षात उदाहरण है ये रामगढ़। और इस रामगढ़ का उल्लेख हमारे देश के वेद, पुराण, उपनिषद सब में मिलता है। विख्यात कवि कालिदास मेघदूतम की रचना यहीं पर किए हैं।
4: इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने रामगढ़ के विकास के लिए 1 करोड़ रुपए और उदयपुर डुमरडीह को मिलाकर नगर पंचायत बनाने की घोषणा की। छत्तीसगढ़ से इस वर्ष हज यात्रा पर गए सभी 813 हज यात्रियों की सकुशल स्वदेश वापसी हो गई है। राज्य हज कमेटी के अनुसार हाजियों का अंतिम जत्था कल मुंबई पहुंचा, जहां उनका स्वागत किया गया। हज कमेटी के अध्यक्ष मिर्जा एजाज बेग ने बताया कि इस वर्ष राज्य से 813 श्रद्धालु हज यात्रा पर गए थे। इनमें 417 पुरुष और 396 महिलाएं शामिल हैं। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच छत्तीसगढ़ के तत्वावधान में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी विषय पर राजधानी रायपुर में 1 दिवसीय परिचर्चा आयोजित की गई। इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संस्थापक इंद्रेश कुमार शामिल हुए। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता से धार्मिक आस्था, पूजा पद्धति और धार्मिक परंपराएं प्रभावित नहीं होंगी। उन्होंने यूसीसी के संबंध में लोगों से जागरूक होने और भ्रांतियों से बचने का आग्रह किया। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून आज पूरे छत्तीसगढ़ में सक्रिय हो गया है। इसके असर से पूरे प्रदेश में हल्की से लेकर मध्यम बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री

0: वाणी ने आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बताया कि जुलाई में मानसून की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है।
1: आज दिनांक 30 जून तक साउथवेस्ट मानसून जो है पूरा प्रदेश कवर कर चुकी है। पूरा प्रदेश में वर्षा का गतिविधि जो है 1 जुलाई से लेकर आगामी 4-5 दिन तक वृद्धि होने की संभावना है। मानसून सक्रिय होने की संभावना है, जिसकी वजह से हर रोज 1-2 स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी वर्षा होने की संभावना है। आज का स्थिति में देखा है तो पूरा प्रदेश में डेफिशिट रेनफॉल लगभग -64% जो है वो डेफिशिट में है, और आगामी 3-4 दिन में मानसून सक्रिय होने की वजह से ये थोड़ा कम होने की संभावना है।
0: इस बीच सरगुजा जिले में कल आंधी तूफान और मूसलाधार बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से 5 साल के बालक समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई है। रथ यात्रा के अवसर पर यात्रियों की सुविधा के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने गोंदिया पुरी गोंदिया के बीच रथ यात्रा स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। ये विशेष ट्रेन 2, 9, 16 और 29 जुलाई को गोंदिया से पुरी के लिए चलेगी। वापसी में ये ट्रेन 3, 10, 17 और 30 जुलाई को पुरी से गोंदिया के लिए रवाना होगी। ट्रेन का ठहराव डोंगरगढ़, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर सहित कई प्रमुख स्टेशनों पर रहेगा। वहीं हटिया एलटीटी हटिया समर स्पेशल ट्रेन का परिचालन 15 जुलाई तक बढ़ाया गया है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। भारतीय जनता पार्टी ने महिला मोर्चा में संभाग प्रभारियों और सह प्रभारियों की नियुक्तियां की हैं। यह सूची भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव की सहमति से प्रदेश महामंत्री और मुख्यालय प्रभारी नवीन मार्कंडे ने जारी की है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF में आरक्षक पद पर भर्ती के दौरान कथित रूप से फर्जी जाति और निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के मामले में उतई पुलिस ने संबंधित आरक्षक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस आरक्षक की सेवा को समाप्त कर दिया गया है। बलरामपुर में आग बुझाने में लापरवाही बरतने पर कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी ने फायर इंचार्ज समेत 5 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। बालोद जिले में पुलिस ने नौकरी लगाने के नाम पर ठगी के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला ने 7 लोगों से लगभग 25 लाख रूपए से अधिक की ठगी की है। और सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के डोंगरीपाला थाना क्षेत्र में पुलिस ने गांजा तस्करी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 94 किलो गांजा बरामद किया है। जब्त गांजे की कीमत करीब 9,40,000 रुपए आंकी गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण योजना देश भर में कल से लागू होगी। राज्य सरकार ने सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को दिए जाने वाले यूरिया पर लागू 80% की सीमा समाप्त की। राज्य सरकार ने प्रदेश के 156 उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सूची को दिया अंतिम रूप। अब इन्हें शासकीय सेवा में लेने की कार्यवाही शुरू की जाएगी। और मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून आज से पूरे छत्तीसगढ़ में सक्रिय हो गया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
2: आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़े ही देर में होगा।
3: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है।

0: उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेतनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेतनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 7 बजे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम बस्तर के स्वर।

0: राम राम ना डेंगा दादा राम राम
1: राम राम ना दस रुपाई राम राम द कमर लिसने
0: कमर लेका
1: हम तो भेट घाट होलू ने मंतर बस्तर स्वर कार्यक्रम सुन तो जम्मा है दादा दीदी सियान सजान और जुआन भाई बहन मन के मैं डेंगा
0: और मैं दसरु
1: हम दोनों करूं से
0: राम राम
1: मंतर पीला मन के मुल्क को
0: काय तो रेडियो कटा दोसलो नानी नानी पिता मन के आमी दोनों चो बाटले
1: खूबे खूबे माया मानता दोसरू भाई द काय की पिला झीला के तो माया करुक लागे से ने
0: हो माया नालो दया नु माय बोलो
1: ने नाले दया नु माय मानता द संगे संगे काय की हम चो बाढ़ती ने
0: बाढ़ती चो जुगाए
1: जुगाए और बाढ़ती कर तो कज दक मेहनत मसागत तो लागे
0: हो लागे से छे
1: ने और दक काय है कि हम चो बाढ़ती तेबे होए दे जबे हम ही आप लोग गांव चो ने
0: आप लोग
1: घर चो बाढ़ती करूं
0: बाढ़ती बोलो नाम के नूर होए से पिला मन ले
1: हाँ हाँ
0: ने
1: हाँ
0: उनके पिला बेरा कसम सिखाओ को है थे उन जो रहन सहना है ना ले बुता भाई ना बोले आए ना ले पढ़ तो लिख तो बोले आए ना
1: और दक का है कि पिला मन के तो पढ़ा तो लिखा तो खूबे जरूरी है संगे संगे का है कि दक का है कि पिला मन पढ़ून लिखून का है आप लोग जो भविष्य है ने एके तो बना दे मानतर दक उसने का है कि हम चो जोन बले जैसा हम भी गांव ने रहूं से गांव चो पंचायत ऐसे
0: पंचायत ऐसे
1: और पंचायत भीतरे
0: कई टन योजना मन चले
1: योजना मन चले से उन चो जानकारी होतोर बले हमके खूबे जरूरी है और पंचायत में जोन पदाधिकारी रसू जैसन सरपंच आए पंच आए ने ये मन के बले पढ़ा लिखा हो तो खूबे जरूरी है
0: तेवे तो उन मन आप लोग शासन से जो योजना है उनके लोग मन लगम रख सकते सांगुक सकते
1: ने मंत्र हुनी के जिकाया है कि हमके पंचायत ने बले आसान लोग मन के चुनाव ने चुनतो रहे ने जोन हम चो गांव चो बाढ़ती और विकास करुक
0: सको
1: आए कसम तो ये हिसाब ने कहा है कि हम ही असन करलू वाले कहा है कि गांव ने जोन बल नुआ नुआ योजना नहाले नुआ नुआ कई बल कार्यक्रम होए से ये चो लाभ हम चो गांव और गांव करिया मन के
0: मेरे दे जानकार आदमी के छुनु रहलो ने
1: हाओ
0: ने
1: हाओ और जसन द काया है कि खूबे जन तो पढ़ा लिखा नहीं रहुआ
0: तो
1: जानकार बल रहुआ तो असन जोन बल जागरूक लोग आत असन लोग मन के हम जो पंचायत जो पदाधिकारी बना तो रहे तेबे तो हम जो गांव जो विकास होए दे
0: गांव जो विकास होए दे पारा जो विकास होए दे पढ़ा लिखा अच्छा हो दे
1: और गांव जो बाढ़ती होलन तो आप लोग बल बाढ़ती और आप लोग बाढ़ती होलन तो हरी कुदी में फिर
0: बुलाए गांव हरी कुदी में
1: हाँ ये होली दक पक्की गोट बात ने
0: मंतर
1: हम चो लगे और बले गोट रहुआ है अल एक बला हम राउंड देऊं
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेतनाथ सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेतनाथ सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस
4: जीएसटी काउंसिल ने अपनी 56वीं बैठक में हेल्थ केयर की चीजों को सस्ता कर देश की बड़ी आबादी को राहत दी है डायबिटीज कैपिटल कहे जाने वाले भारत के शुगर मरीजों के लिए रोजाना की जरूरत बन चुके ग्लूकोमीटर और स्ट्रिप्स पर जीएसटी की दरों को घटा दिया गया है नजर के चश्मों को भी सस्ता किया गया है इतना ही नहीं बल्कि ब्रेस्ट कैंसर सहित अस्थमा के एडवांस इलाज में काम आने वाली कई दवाओं थर्मामीटर और डायग्नोस्टिक किट्स पर भी टैक्स की दर कम की गई है
5: जीएसटी काउंसिल तोरु वाणिज्यिक कारोबार तगा टैक्स तुन और वन सरल बना कि तोड़ बस ट्रक और एम्बुलेंस गाड़ी की नगा इंजे ओंडो लेकिन 18% टैक्स की सित तोड़ मुन्ने अद 28% मत्ता एचएस कोड क्लासिफिकेशन किन परवा की वा लेवा गाड़ी न सामान तपोरो इंजे ओंडोई

18% टैक्स की सित्तो इत बुताते यू सामान पाड़नोर और सामान तच इनोड़ा तिप्पाल कम आता और सामान तत्ता ओयन बूता सरल आयना उम्मीद मिंदे इलेक्ट्रिक गाड़ी न पर्रो मुन्नीटा लेकिन 1% टैक्स मंता नेलता माटा इद मिंदे की इलेक्ट्रिक गाड़ी नगा बाताए बग

और सामान तच इनोड़ तिप्पाल कम आता और सामान तत्ता ओयन बूता सरल आयना उम्मीद मिंदे इलेक्ट्रिक गाड़ी न पर्रो मुन्नीट लेकिन एंग प्रतिशत टैक्स मंता नेलता माटा इद मिंदे की इलेक्ट्रिक गाड़ी नगा बात है बद

0: मंगलवार दिन एक आपलो मन कर लो गीत बीता मन ठाकुर बात गीत सुन तो
1: आज ये कार्यक्रम रो हुआ है लोक लहरी और दादा दीदी मन मन कर ला गीत मन के तो मैं बोलते रहे पहले गीत के सुनाऊं दो भत्री गीता है उनके बाद मन कर लो लोक मन चुनाव के सांगवा फिर आ लेते
0: गीत के सुनो।

0: काय गोटे दे
1: ढंगा दा ने काय सुंदर नगद गीत के पानी बिराच गीत सांगु रेस ने
2: हां
1: गीत के हमरा और त्रिनाथ सिंह छत्री अरुण जो संगवारी में
2: मानतर द के गीत के मन कर रहत नगर नारले दीपाली कश्यप शिवरात्रि कश्यप सीमा कश्यप और मन जो घर जो सपायलो
1: और एक गीत के और मन कर रहत लवेश कुमार बघेल कीर्तिका बघेल रूप सिंह बघेल और ये आप लोग ये मनाद ग्राम पपराली रे
2: द के इच गीत के मन कर ला सुत कृपावंड ले सुनील कश्यप सुशील कश्यप अंजू कश्यप और निखिल कश्यप
1: हां एच गीत के और एक मन कर ला से हेंडो वाले दुर्बल नाग चेतन नाग लंबू नाग कुपचंद नाग रेणुका नाग
2: द कितलो भाई बहन बहन ये गीत के मन कर रहत ने आधा है गोटो छत्तीसगढ़ी गीत है अले के बले हमरा दू अच्छे मन कर लो लोग चुनाव के सांगवा
1: हां

0: यमुनाथ नारायणपुर ले पुरुषोत्तम नाग ललिता नाग और पुष्पा नाग
1: और यमुनाथ मरवा बेड़ा कोंडा गांव ले बीरबल मंडावी बालमती मंडावी बीरू मंडावी
0: यमुनाथ ग्राम करमरी ले लाला राम साहू नरेंद्र साहू काजल साहू और यमनचू घरचो सप्पा आए
1: और यमुनाथ ग्राम बड़ांजी ले रुचि मंडन प्रांसी मंडन जयंती मंडन नरेंद्र मंडन विक्की मंडन
0: कितलो भाई बहन मन मन कर रहो ने मन तारे गोटो खलबी गीत आसे एगुसर पुजारी और मंच संगवारी मंचो गाव लो गीत
1: हां
0: एक बार सुनाऊं दूं पाछे मन कर लो लोग मंचो नाव के सांग लो
1: हां।

0: तो रेगा दादा ये गीत के मन करो दाप पलगुड़ी पारा ले जगन्नाथ नाग मालती नाग हरिनाथ नाग श्याम नाग
1: और ये गीत के मन करो पनारा पारा जगदलपुर ले विनय सोना विनोद सोना बबीता सोना संगीता सोना
0: और ये गीत के मन करो दशापाल बकावण ले बीबा बगेल देवनाथ बगेल मनीता बगेल सरिता बगेल
1: ये गीत के मन करला सो ते मन तेतर खुटी पारा जगदलपुर ले बुद्र राम कश्यप मनोज कश्यप और घर चो सब पाए
0: तो हम चो अपना मन कर लो गीत के कोनी दादा दीदी मन बोले अपने चिट्ठी पत्र लिखो चास हो जाले तो हम से पता है द्वारा उपनिदेशक आकाशवाणी जगदलपुर पिन कोड है 4940001
1: मतलब क्या है कि ये पता नहीं चिट्ठी लिखो सको नहीं पता एक हर मैं फिर साउंड दें से कार्यक्रम लोक लहरी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी जगदलपुर पिन है 4940001 ये पता नहीं चिट्ठी लिख ले तुम जो मन कर लो गीत के हम ही सुना सकते नहीं तो ये तो पक्की गीत रहे मानतर दसरू भाई संगे संगे का है कि हम जो जातो समय बोले हो
0: समय ने गेलो ने समय ने रुको है ने
1: तुम्हारे बोलते रहे मोटर गड़बड़ सकल
0: चल मैं सकल दे
1: आले विदा मांगू फिर तो बस्तर के कार्यक्रम बस्तर के स्वर कार्यक्रम सुन तो जम्मा है दादा दीदी सियान सजन और जुआन भाई बहन मन के मैं डेंगा
0: और मैं दसरू
1: हम दोनों करूं से राम राम, राम।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बस्तर के स्वर, आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 7:21 हुए हैं, लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी।
1: प्रायोजक कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत।

0: जुहार ना दसरु भाई जुहार
1: जुहार ना डंगा दादा जुहार हमर लिसने
0: डाक समय होलन तो हम रुक लागे से मातर हम तो भेट घाट होलु
1: एचो संगे किसान वाणी कार्यक्रम सुन तोर सब गांवकारी खेतियार दादा दीदी मन के मैं दसरु
0: और मैं डेंगा
1: हमें दोनों करुण से
0: जुहार मातर दसरु भाई खेती किसानी तो हम धान पान कमाऊ से मानतर द का है की पाक फर्चो बले उत्पादन कर तो खूबे जरूरी है
1: पाक फलने बोले आम छो किसान दादा दीदी मन के अच्छा ले आमदनी मेरे से ने
0: मेरे से और आजकल तो तू जानिस दक पाक फर कितरो महांग ने
1: हाट बाजार है
0: हाट बाजार ने घेनुन खातुर बल्ले बाई कांडे से
1: पोसना फूटे से का
0: पोसना फूटे से तो वही हिसाब में क्या है कि हमके किसान भाई बहन मन के बल ध्यान दे तो रहा है कि हमके थोड़े पाक फर हिसाब ने बागवानी ने ये जो कमाई करतुर उपाय खिंडी
1: और समय बोलो ने ए बेच समय आसे पानी बेरा छो बूटा लगा तो रहा है
0: बूटा लगा तो समय
1: है आमा होली नाले केरा होली ने असल कई नर्सरी मन ने बलमी रहे ने किंतु आप लोग बाड़ी ने घर बाड़ी ने कहीं कोनी लगता ना से बोलो ने
0: असन बले आए कि जो जसन कोनी किसान भाई बहन मन लगाऊ चाहे सोत बूटा मन के बाग पर बूटा मन के तो जसन वो वन विभाग महकमा चो जो साहब मनात नाले नर्सरी मनाए उन तान ले बले हमके बूटा फोकाने बले मेरे से
1: मेरे से
0: और संगे संगे जसन कुमरा वन कृषि फार्म बाए ये तान ले बले बूटा मिरुक सके दे
1: मेरे से का
0: आए का तो मानतर का है कि दकासन फल भीती बूटा लगातोर हमचो उवाट होतो रहा
1: है उवाट होतो रहा है और उनके

0: से नहीं मिल
1: सके। की बूटा के लगाऊ ना ऐसे छाड़ू दिल तो नहीं उनता ने खत भात जो बोले पानी कांजी आए
0: पानी हाँ उनसे धक्का रखा है
1: तो निकाय से मारी आए
0: हाँ फिर हाँ
1: कीड़ी माकड़ी आए
0: हाँ गाय बैला है
1: चातुर वाट बना तो रहे
0: हाँ
1: तेरे तो होए दे
0: हाँ उसने हिसाब ने धक्का रखा कर लो ने कहे हम जो बूटा बोले नगत बाड़े दे
1: और जसन कई चीज के या नहाले कई जिनिस के हमें नहीं जानू से तो हमके मोहकमा चो जोन साहब मन रहुआ उन मन ले बोले जानकारी धरुक सकू हमें तेबे तो उनचो उपाय मिरे दे हमके
0: ना ले कसम जानकारी ना लो
1: करुक हुआ है तो असन करू ना हमें कहा है कि पाक फर नहाले दूसर जोन बले खातो जिनिसा ये चो उत्पादन हमें बढ़ाऊ सकू और हाँ। उत्पादन बाढ़ लोन तो हमके नगद लाभ मिल सके
0: नगद लाभ मिले दे
1: ने
0: हाँ।
1: ये तो होली पक्की गुड बात
0: हाँ।
1: मंत्र मैं बोलते रहे और बल गुड रू है
0: हाँ।
1: एक बार राम राम दू
0: हाँ।

0: जीएसटी काउंसिल ने बीमा पर लगने वाले 18% टैक्स को घटाकर जीरो कर दिया है। ऐसे में जीवन बीमा लेने वालों को अब सिर्फ इंश्योरेंस का प्रीमियम ही भरना होगा और इस पर कोई भी अतिरिक्त टैक्स नहीं देना होगा। ये हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों के लिए बड़ा फायदा है क्योंकि LIC को पहले से ही इनकम टैक्स में छूट मिली हुई है। वहीं अब GST भी हटने से बीमा लेना फायदे का सौदा होगा।
1: GST परिषद कमर्शियल बिजनेस के और सरल बनाली से बस ट्रक एम्बुलेंस ऊपरे एवर एक समान 18% कर लागे दे, आगे ये 28% रहे। HS कोड क्लासिफिकेशन चो गिरधा करलो बिना ऑटो पार्ट्स ऊपरे एवर एक समान 18% कर होली से। ये काम ले कल पुर्जा बना तो कंपनी अरु घेन तो लोग अरु सप्लायर्स चो चिपा गुचे दे। एचे संगे कल पुर्जा चो अमरातो काम बले सरल होए दे। बिजली ले चलतो बीती गाड़ी ऊपरे 5% कर लागे दे, ए मन्ने काही बदलाव नहीं होली से। बिजली ले चलतो सपाई गाड़ी, दुई चक्का बीती गाड़ी और तीन चक्का बीती गाड़ी ऊपरे 5% कर चो लाभ मिलते रह दे। असल ले ये मन सपाई कम GST दर बीती गाड़ी मंचो विकल्प बनू रह दे।

परवाकीवलेवा गाड़ी ना सामान तकरो इंजे ओंडोई 18% टैक्स की सित्तोड़ इत भूताते इव सामान पाड़नोर और सामान तच इयनोड़ तिप्पाल कम्माता और सामान तत्ता ओयना भूता सरल आयना उम्मीद मिंदे इलेक्ट्रिक गाड़ी ना पर्रो मुन्नीटा लेकेन 8% टैक्स मंता नेलता माटा इद मिंदे की इलेक्ट्रिक गाड़ी नगा बाताय बदलावायो होंडे इलेक्ट्रिक गाड़ी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल

0: मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेतनाथ सीमेंट का मैक्स ग्रेड सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेतनाथ सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: ये तो होली गुड मंत्र तक आया है कि खेती किसानी काम का जे नहीं बतर जो जानकारी हो तो खूबे जरूर
3: बतर के धको पड़े से का
2: ऐसा बिना बतर चो काई कमानी बल नहीं हो सके। तो उन्हीं साहब ने हम चो लगे गोटोक भेंट वार्ता से ने ये एचपी चंद्रा वैज्ञानिक आज एमन संगे
3: भेंट घाट
2: कर सो लखमू राम मरकाम। तो वाले ये गुड बात की सुनो।
4: किसान वाणी कार्यक्रम सुन तो सब पाए दादा दीदी बूढ़ू बढ़ाए संग जोरिया संगवारी के मैं झिटकू करें से जुहार। तो हमी खेती बाड़ी चो संबंधित कहीं ना कहीं ज्ञान ध्यान चो गोड़ धरो ने उसे तो आज ही उसने हमी हम चो बीच ने उपस्थित आसत

0: हम जो विशेषज्ञ श्री HP चंद्राकर सर, जो मौसम विभाग अधिकारी जगदलपुर चौथ। तो सर, अपन जो मौसम विभाग में पदस्थ असत जगदलपुर में, तो सबले पहले सर आप मन के खूबे खूबे धन्यवाद हम जो प्रोग्राम ने ये तो काजे।
1: आपको भी धन्यवाद।
0: हाँ सर, तो पहले मैं जानना चाहूंगा कि सर आपका परिचय आप अपने से देंगे, आपका विशेष कार्य क्या रहता है आपके विभाग में, उस नाम बताएंगे।
1: मैं HP चंद्रा मौसम विज्ञानी हूँ, यही अभी फिलहाल पदस्थ हूँ। मूल रूप से जो हमारा विभाग है वो सबसे पहले जो काम करता है वो डाटा कलेक्शन का काम करता है। उसके अंदर डाटा का फिर हम लोग कलेक्ट होने के बाद में उसका विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण करने के बाद आज की परिस्थिति में कौन सी मौसमी तंत्र है मौजूद है
0: जी,
1: उसके अंदर फिर हम पिछला मौसम को देखते हैं कि हमारा पिछला मौसम क्या था। उसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं कि हमारा आगे का मौसम हो किस तरह से जाएगा। तो इस तरह से हमारा डाटा जो कलेक्शन का काम है
0: जी
1: वो किया जाता है। उसके बाद में उस पर एनालिसिस होता है। एनालिसिस करने के बाद में फिर आगे है
0: जी
1: मौसम की घटना किस तरह से हो सकती है, क्या होगी
0: जी,
1: ये हमारे जो पहले के जानकारी है
0: जी
1: वो, और तत्कालिक जो मौसम की तंत्र है वो जो स्थित है
0: जी
1: वो दोनों को देख करके मौसम पूर्वानुमान को जारी किया जाता है।
0: अच्छा अच्छा सर, ये प्रतिदिन जो डाटा कलेक्ट करते हैं प्रतिदिन भेजते हैं या फिर इसका साप्ताहिक होता है या मासिक होता है, कैसे होता है सर इसको बताइए।
1: देखिए, हमारे पास जो डाटा कलेक्शन है अलग अलग टाइप के हैं। एक तो जैसे जगदलपुर की हम बात करें तो यहाँ पर 24 घंटे डाटा कलेक्शन का काम है होता है। तो यहाँ तीन यूनिट अभी फिलहाल स्थापित है। एक को हम लोग बोलते हैं सरफेस ऑब्जर्वेशन या सतही प्रेक्षण। इसमें दिन में 8 बार प्रेक्षण लेते हैं और उसको तत्काल ही संबंधित उच्च ऑफिस है उसको हम भेज देते हैं। दूसरा है RSRW बोलते हैं, जिसमें कि ऊपरी हवा की प्रेक्षण के लिए
0: जी
1: हम लोग उस यूनिट में काम करते हैं, जिसमें ऊपर में जो हवा चलती है तो उसमें तापमान है
0: जी,
1: जल वाष्प की मात्रा है, दाब है
0: जी,
1: हवा की दिशा है और हवा की गति है
0: जी जी,
1: इस ये 5 एलिमेंट है वो हमको मिल जाता है, जिसको हम तत्काल ही जो हेड ऑफिस है उसको भेज देते हैं। तीसरा अच्छा। यूनिट है
0: जी
1: जो यहाँ पर AMS के नाम से जाना जाता है
0: जी।
1: तो इसमें है मुख्य रूप से जो एविएशन सेक्टर को
0: अच्छा
1: तत्कालिक मौसम की जानकारी देने के लिए
0: हाँ।
1: इस यूनिट का काम रहता है। ये सामान्यतः हर एक घंटे में ऑब्जर्वेशन होता है
0: अच्छा।
1: और यदि वॉच आवर चला
0: हाँ।
1: तो उस परिस्थिति पर हर आधे घंटे में ऑब्जर्वेशन लेकर के संबंधित जो ATC है एयर ट्रैफिक कंट्रोल है उनको दे देते हैं, जो पायलट से सीधा संपर्क करके वहां के तत्कालिक मौसम की जानकारी को वो साझा करते हैं।
0: अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी जानकारी दी सर। जैसे कि सर हम किसानों की बात करें तो किसानों को हम आपके मौसम विभाग किस तरह से मदद करते हैं, उनका विवरण कैसे रहता है सर, थोड़ा उसके बारे में विस्तार से जानकारी दीजिए।
1: देखिए, लगभग जो हमारा विभाग है मुख्य रूप से जो हमारा जो छत्तीसगढ़ का ऑफिस है
0: जी
1: वो है मौसम केंद्र रायपुर है, वहाँ पर एक कृषि बुलेटिन जारी होता है। तो कृषि बुलेटिन में जो मौसम विभाग है वो मौसम का पूर्वानुमान देता है, उसके बाद में उसको संबंधित क्षेत्र के कृषि विज्ञान केंद्र या विश्वविद्यालय में भेज दिया जाता है। वहां से फिर जो कृषि वैज्ञानिक है उसमें संबंधित क्षेत्र में क्या क्या किसानों को करना चाहिए
0: जी,
1: किन परिस्थितियों में क्या दवाई छिड़काव करना चाहिए या बाकी जो जानकारी है वो सारे के सारे देते हैं, और इनको दोनों को कंपाइल करके फिर उसको वेबसाइट में डाल देते हैं या फिर संबंधित जो कृषि विभाग है
0: जी जी
1: उसको भेज देते हैं। तो कृषि विभाग है वो किसानों तक पहुंचाते हैं, जिसका लाभ है वो किसानों को मिलता है।
0: अच्छा अच्छा जी, जैसे कि सर हम जानना चाहते हैं कि मौसम जैसे वर्षा ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु होती है, शीत ऋतु होती है, ऋतुओं के अनुसार कैसे मतलब जानकारी एकत्रित करके हम किसानों को दे ताकि उन लोग अपने कृषि में ज़्यादा आमदनी अर्जित कर सके सर।
1: देखिए, वास्तव में देखा जाए तो किसानों को एक से लेकर के 3 दिन का उनको मौसम के पूर्वानुमान की जरूरत पड़ती है। उसका कारण यह है कि उनको बहुत लंबे समय की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुख्य रूप से जो ये रहता है वो सिंचाई संबंधित रहता है। अभी एक दो दिन में पानी गिरेगा या नहीं गिरेगा,

0: ये परिस्थितियां रहती है। दूसरी चीज है
1: जी
0: कि पानी गिरेगा
1: जी सर,
0: तो वो किस दिन गिरेगा, जिसके कारण से उसको डाला गया खाद है या फिर डाला गया दवाई है वो
1: जी
0: बेअसर ना हो जाए, तो ये पूर्वानुमान है उन लोगों के लिए
1: जी
0: बहुत ही ज्यादा फायदे का है यदि उस पर ध्यान दें तो। तीसरी चीज है कि हर सीजन में कुछ न कुछ मौसमी घटनाएं होती हैं जिससे दुर्घटना होने के चांस है वो बढ़ जाते हैं। मुख्य रूप से देखा जाए तो किसान वर्ग है
1: जी
0: वो प्रायः फील्ड में रहते हैं, तो फील्ड में रहते हैं तो उस परिस्थिति पर उसके बचाव के कुछ उपाय उसको चाहिए, क्योंकि वहां पर और कोई बचाने वाला या फिर और कोई घर नहीं है या कोई छत नहीं है जिससे वो बच सके।
1: जी
0: तो उसमें जो रहता है कि जैसे हम कहीं पर बाहर गए हैं वहाँ उस कंडीशन पर खेत में बैठे हैं, गड़गड़ाहट हो रही है, मेघ गर्जन हो रहा है,
1: जी
0: मेघ गर्जन के साथ में जो बिजली गिरता है जिसको हम वज्रपात बोलते हैं, तो वज्रपात गिरने के कारण से
1: जी
0: बहुत सारे लोगों की अकस्मात है वो मृत्यु हो जाती है। तो ये बहुत दुखदायी रहता है कि ये क्षणिक में ही ये घटना हो जाती है। दूसरी चीज है कि बस्तर संभाग में बहुत सारे पहाड़ी क्षेत्र हैं, तो पहाड़ के जो यदि पानी गिरा तो जाहिर तौर पर नीचे की ओर
1: जी
0: बहुत तेजी से वो बहते हैं, तो
1: जी
0: इसको हम लोग टेक्निकल भाषा में
1: जी
0: हम लोग बोलते हैं फ्लैश फ्लड। तो
1: अच्छा
0: यदि अच्छी बारिश हो जाए तो उस कारण से फ्लैश फ्लड आने के चांसेस रहते हैं, जिसमें कि जो नीचे में खड़ा व्यक्ति है या जानवर है या कोई घर है तो
1: जी
0: उसके बह जाने के चांसेस रहते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं जो रहता है तो उससे बचाव के लिए जरूरी है कि वो ध्यान दें कि हमको किस समय किस चेतावनी को जारी किया गया है, और उस चेतावनी का भले ही उस जगह पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है अलग बात है, लेकिन उस क्षेत्र में कहीं ना कहीं वो घटनाएं होते रहती हैं।
1: जी जी
0: तो इसलिए बहुत ज्यादा चेतावनी को नजरअंदाज ना करें बल्कि उसको थोड़ा ध्यान दें, ध्यान दे करके सतर्क होकर के खेतों में या जहां भी काम कर रहे हैं वो काम को करें।
1: जी जी सही कहा सर आपने। कभी कभी ऐसे होता है सर कि कुछ क्षेत्रों में उसका प्रभाव दिखता है, कुछ क्षेत्र में नहीं दिखता है, तो इसी वजह से उन लोग लापरवाही करते हैं किसान, तो इस तरह से कभी कभी उनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। सही कहा, तो ऐसे सावधानी बरतेंगे तो उन लोग अपने आप को बचा सकते हैं। जैसे कि सर, साथ ही साथ मैं ये पूछना चाहूँगा सर, जैसे मौसम और जलवायु में उसमें क्या अंतर हो सकता है?
0: देखिए जो मौसम होता है उसमें मुख्य रूप से एक ही तत्व को देखा जाए तो उसमें पानी गिरना है, मौसम का मतलब पानी गिरने से है। लेकिन उसके अतिरिक्त तो जो होते हैं उसमें अलग अलग टाइप की घटनाएं हैं, जो पानी ही गिरना नहीं ओलावृष्टि भी है या फिर बादल का आना है या फिर गरज चमक होना है या फिर अंधड़ चलना है, अंधड़ मतलब तेज हवा जो चलना है,
1: जी
0: तो ये सारी घटनाएं हैं
1: जी
0: वो होती है यदि जिस समय हो रहा है तो उसको हम कहेंगे मौसम।
1: अच्छा
0: अब यदि हम जलवायु की बात करें
1: जी जी
0: तो ये मान लीजिए कि जनवरी के महीने में प्रायः ठंड रहता है, तो
1: जी
0: लंबे समय तक
1: हाँ सर
0: लगभग 50 साल में पिछले 50 सालों में उस जनवरी के महीने में किस तरह से मौसम है वो रहा है तो उसकी जो औसत है
1: जी
0: उसको हम दर्शाते हैं, उसको हम जलवायु के रूप में जानते हैं। तो उसमें यही चीज होता है कि चूंकि ठंड के सीजन में मुख्य रूप से टेम्परेचर को देखा जाता है, टेम्परेचर मतलब ठंड की मात्रा है,
1: जी
0: अधिकतम को भी देखते हैं क्योंकि उस समय कहीं दिन में भी इतना ज़्यादा ठंड ना हो कि जिसके कारण से दिक्कत आए, इसको हम परिभाषित करते हैं शीत दिवस के रूप में या कोल्ड डे के रूप में।
1: जी जी
0: तीसरी चीज़ है कि बारिश की संख्या, औसत दिनों की संख्या कितनी है। अब इसका मुख्य रूप से जो उपयोग होता है वो पर्यटन के लिए ज्यादातर उपयोग आता है।
1: जी
0: दूसरी चीज है कि ये जो बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन होते हैं या फैक्ट्रियां चलती हैं या फिर जो यातायात के साधन है
1: जी जी
0: उनके लिए ज्यादातर उपयोग में आता है।
1: हाँ हाँ जी, जैसे कि सर आजकल देखा जाए तो आधुनिक युग में औद्योगिकरण बहुत हो चुका है और अंधाधुंध कटाई भी हो रहा है, इसके वजह से पर्यावरण में कितना प्रभाव पड़ रहा है सर, इसका मौसम में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इसको बताइए थोड़ा।
0: देखिए औद्योगिकीकरण ही केवल नहीं हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे ये जो औद्योगिकीकरण है वो बढ़ते जा रहा है उसके साथ साथ लोगों के जो बसाहट या रहने रहन सहन बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आया है।
1: जी
0: तो बदलाव केवल आदमी की

0: जिंदगी में नहीं हुआ है, ये जनसंख्या में ही नहीं हुआ है
1: जी।
0: उसके अतिरिक्त मौसम में भी बदलाव देखने को मिलता है
1: जी।
0: अब जैसे हम एक ग्लोबल वार्मिंग करके शब्द है
1: जी,
0: तो ग्लोबल वार्मिंग में होता ही है कि यदि हमारा जो पृथ्वी है उसके तापमान में किस तरह से परिवर्तन आ रहा है। यदि हम देखें तो सन 2000 के और उसके बाद में
1: जी,
0: चूंकि प्राइवेटाइजेशन चालू हुआ, उसके अंदर फिर औद्योगिकीकरण में तेजी आया
1: जी,
0: रोड सड़क दुनियादारी के बनने लगे
1: जी,
0: तो उसके कारण से एक तो औद्योगिकीकरण के कारण वहां से निकलने वाली ऊष्मा है वातावरण में गया
1: जी।
0: औद्योगिकीकरण होने के कारण से बहुत सारे पेड़ पौधे भी कटे
1: जी।
0: औद्योगिकीकरण होने के कारण से जो घर बनने लगे तो उसमें भी पेड़ पौधे काटे, या फिर वहां जो घरों में है
1: जी,
0: जो ईंधन इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी भी ऊष्मा तो आखिर में वातावरण में ही जाएगी ना
1: जी।
0: तो वातावरण में उसका भी जा रहा है, हम वाहन का उपयोग कर रहे हैं, पहले पैदल चलते थे, आजकल हम वाहनों का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसमें जो ईंधन उपयोग हो रहा है, वो जो ऊष्मा उपयोग हो रहा है अल्टीमेटली वातावरण में ही जा रहा है। तो इस तरह से हमारा जो सन 2000 के बाद में लगभग तेजी से बदलाव आया है, और सन 2025 तक
1: जी
0: लगभग 16 बार ग्रीष्म वर्ष के रूप में जाना गया है।
1: अच्छा, 2000 से
0: लेकर के 2025 सालों में
1: जी
0: 16 बार है जिसमें कि सामान्य ताप से काफी ज्यादा औसत तापमान है वो देखने को मिला है।
1: अच्छा, बढ़ती क्रम में दिखा है। जैसे कि सर, ऋतु के बारे में यदि हम उसको प्रकार में बांटे तो कितने प्रकार की हो सकती है ऋतुएं?
0: देखिए, जो सामान्य बोलचाल की भाषा है एक अलग है और जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो अलग है। इसमें है मुख्य रूप से देखा जाए तो हम जनवरी और फरवरी के महीने को विंटर सीजन के रूप में या शीत ऋतु के रूप में जानते हैं, उसके अंदर मार्च अप्रैल और मई के महीने को प्री मानसून सीजन के रूप में जानते हैं, उसके अंदर जून जुलाई अगस्त और सितंबर इसको मानसून सीजन के रूप में जानते हैं, उसके अंदर अक्टूबर नवंबर दिसंबर इसको हम पोस्ट मानसून के रूप में जानते हैं।
1: अच्छा अच्छा जी, बहुत अच्छा जानकारी दी सर। जैसे कि सर, हम अभी कौन सी ऋतु चल रही होगी और इसमें हम क्या सावधानी बरतें और हम अपने आप को सुरक्षित कैसे रखें, इसके बारे में?
0: देखिए, ये है सामान्य बोलचाल की भाषा में ग्रीष्म ऋतु है, लेकिन वास्तव में एक दूसरे कारण से इसको नाम दिया गया है प्री मानसून सीजन का।

0: अकस्मात वर्षा है
1: जी,
0: तेज हवा चल रहा है और
1: जी
0: वज्रपात है।
1: अच्छा जी, जैसे कि सर काफ़ी सालों से हम देख रहे हैं कि पहले गर्मियों में ज़्यादा वर्षा नहीं होती थी, लेकिन हम पिछले 5 साल की बात करें तो गर्मियों में भी अधिकतर वर्षा देखने को मिलता है, तो ये किस वजह से हो रहा है सर, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए।
0: देखिए, वास्तव में देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि प्री मानसून सीजन में बारिश नहीं होती है, होती है, पहले भी होती थी, आज भी हो रही है और आगे भी होते रहेगा। उसका कारण ये है कि जो भारत की भूमि है
1: जी,
0: ये उत्तरी गोलार्ध में है, चूंकि सूर्य है
1: जी,
0: ये उत्तरी गोलार्ध में रहता है, इसके कारण से ये ग्रीष्म ऋतु कहलाता है
1: जी।
0: दूसरी चीज है कि जो भारत की भौगोलिक संरचना है, तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, उत्तर है वो पहाड़ से घिरा हुआ है
1: जी,
0: हिमालय पहाड़ है
1: जी,
0: तो इस सीजन में चूंकि बहुत अधिक गर्मी पड़ने के कारण से
1: जी,
0: कुछ मौसमी तंत्र बनते हैं और तंत्र बनने के कारण से नमी है या तो अरब सागर से आता है, मुख्य रूप से बंगाल की खाड़ी से आता है। यदि हम प्रदेश की बात करें तो इसमें सबसे अधिक जो नमी मिलता है इस सीजन में,
1: अच्छा,
0: वो है बंगाल की खाड़ी से मिलता है, और बंगाल की खाड़ी से नमी आ रही है तो जाहिर तौर पर उसमें कुछ ऊर्जा है, वो ऊर्जा है ये जितने तीन जो घटनाएं हैं, एक तो पानी गिरना है, दूसरी चीज़ है वज्रपात होना, अंधड़ चलना
1: जी,
0: और चौथी जो घटना होती है वो है ओलावृष्टि। तो ये चारों घटनाएं हैं यहाँ पर ज़्यादातर देखने को मिलता है।
1: जी सर, जैसे सर ग्रीष्म लहर किस माह में ज़्यादा होता है और इससे बचने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं?
0: देखिए, सबसे अधिक जो तापमान है
1: जी
0: वो है मई के महीने में होता है। तो मई के महीने में तभी परिस्थिति है वो बनता है जब यहाँ पर वर्षा की स्थिति कम हो। दूसरी चीज़ है कि यदि नमी ना रहे तभी ये घटना नहीं, ये घटना है ज़्यादातर गर्मी हो बढ़ता है। अब गर्मी बढ़ने के लिए मुख्य जो फैक्टर रहता है ये है उत्तर पश्चिम से हवाएं आना चाहिए
1: जी।
0: दूसरी चीज़ है कि ये यहाँ पर कुछ ऐसी परिस्थिति रहना चाहिए जिसके कारण से जो धरती का जो गर्मी है वो ऊपर जाने से रुक जाए। तो ये जो रुकने के रुक जाए तो उस परिस्थिति पर यहाँ पर जो गर्म हवा है या जो हम विकिरण है जो अर्थ से निकल रहा है वो विकिरण है ट्रैप हो जाए, तो उस कंडीशन पर ग्रीष्म लहर या फिर बहुत अधिक तापमान की घटना है वो देखने को मिलता है। तो यदि छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में देखें तो मई के महीने में सबसे ज्यादा होता है
1: जी।
0: दक्षिण में प्रायः, दक्षिण मतलब बस्तर संभाग है चूंकि पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ की ऊंचाई ज्यादा है इसलिए कभी कभार ही एक आध दिन के लिए ही ग्रीष्म लहर की स्थिति रहता है। और जो सरगुजा संभाग है, जो भी पहाड़ी का क्षेत्र है, चूंकि मानसून है वहाँ लेट से पहुँचता है इसलिए वहाँ पर प्रायः मई के अंत या जून के महीने में सबसे ज़्यादा ग्रीष्म लहर की स्थिति है वो देखने को मिलता है।
1: और मैदानी इलाकों में भी ज़्यादा देखने को मिलती होगी
0: चूंकि जो छत्तीसगढ़ का मध्य भाग है जिसमें कि दुर्ग संभाग है, बिलासपुर संभाग है, रायपुर संभाग है, इसमें जो गर्मी के सीजन में है सबसे ज़्यादा गर्मी देखने को ही मिलता है चूंकि वहाँ की ऊंचाई भी कम है
1: जी।
0: तो जो फैक्टर चाहिए तापमान को बढ़ने के लिए
1: जी
0: उसके लिए अनुकूल रहता है, इसलिए ये जो तीनों है
1: जी
0: संभाग है इसमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है।
1: अच्छा, बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दी सर आपने, हमारे किसानों के हितों को लेकर हमने बहुत सारे प्रश्न किए। और सबसे अंतिम में मैं एक प्रश्न और पूछना चाहूँगा सर, जैसे कि औद्योगिकरण बहुत हो रहा है और आधुनिकीकरण भी बहुत हो रहा है, लेकिन अभी कुछ कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं सर जहाँ पे सुविधाएं नहीं है, जैसे सूचना तंत्र नहीं है, कहीं पे विकसित नहीं हुआ है गाँव, तो उस जगह में ऐसे सावधानियाँ चीज़ नहीं पहुँच पाती, उन लोग को ज्ञान नहीं हो पाता कि उन लोग मौसम में कैसे बचें, उनको ऐसे कुछ उपाय बताइए सर जो मौसम को जानकर महसूस कर सकें कि आगे कुछ घटना घटने वाला है, तो उससे कैसे बचे सर, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी।
0: देखिए, अभी फिलहाल चूंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी है
1: जी
0: वो काफ़ी विकसित तो किया गया है, जिसमें कि मुख्य रूप से जो प्रयास किया जाता है कि हम मौसम केंद्र में वहाँ पर एक चेतावनी है वो जारी करते हैं। चेतावनी दो टाइप का रहता है कि एक तो हम 24 घंटे के लिए जारी करते हैं, दूसरा है 3 घंटे में भी हो सकता है, वो 1 घंटे में भी हो सकता है, जहां भी परिस्थितियां हैं कि इस जिले में या इन शहरों में घटना हो सकती है, तो उसको चेतावनी को तुरंत ही वो जारी किया जाता है। उसके लिए सबसे हम लोग जो उपयोग करते हैं वो सचेत करके है, तो सचेत में हम लोग डाल देते हैं उसको, उस वार्निंग को स्टेट गवर्नमेंट है उसको फॉरवर्ड करता है, जिसको SDMA बोलते हैं, राहत आयुक्त के द्वारा संचालित होता है
1: जी।
0: वो जैसे ही प्रसारित करते हैं तो जहां जिस क्षेत्र में जो घटना होने की है
1: जी,
0: तो वहां के समस्त मोबाइल टावर में कार्यरत सभी मोबाइल में वो चेतावनी है वो जाता है। तो ये तो हो गया सीधा पहुंच, जहां मोबाइल नेटवर्क नहीं है वहां के लिए दिक्कत ही है, बाकी जगह के लिए कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है
1: जी।
0: दूसरी चीज है कि यदि किसी आदमी के पास है स्मार्टफोन है या जो भी है एंड्रॉइड फोन है, तो उस कंडीशन पर एक जो वज्रपात से सबसे ज्यादा बस्तर संभाग में अकस्मात मृत्यु को देखा गया है, तो इसमें जो है एक ऐप आता है,
1: अच्छा
0: दामिनी करके ऐप है, इसको गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं
1: जी।
0: डाउनलोड करने के बाद में आपको स्थान का रजिस्टर करवाना है, रजिस्टर करवाने के बाद में जैसे ही आप चालू करेंगे
1: जी,
0: तो वहां पर दिखाता है कि आपके चारों तरफ
1: जी
0: 20 से 40 किलोमीटर तक में कहां कहां पर लाइटनिंग यानी कि बिजली चमक रहा है या गर्जन वाले मेघ बने हुए हैं, जहां पर कि एक्टिव थंडर स्टार में चालू है, तो वो दिखाता है। तो मतलब मुख्य रूप से मेरा कहने का मतलब ये है कि उस क्षेत्र में न जाए जिस क्षेत्र में एक्टिव जो क्लाउड है जहां पर थंडर हो रहा है उधर हो रहा हो
1: जी,
0: उससे बच करके रहे। एक तो उससे 3-4 घटनाएं होती हैं, नंबर 1 है वज्रपात होने की, नंबर 2 है अंधड़ चलने की, नंबर 3 है
1: जी
0: बहुत तेज बारिश हो सकता है या अंधड़ चल सकता है। तो ये कभी कभी इससे ओलावृष्टि है, चूंकि ये सीजन है ओलावृष्टि का है, तो ओलावृष्टि भी होता है और कभी कभी ओला की साइज है काफी बड़ा हो जाता है, तो आदमी भी घायल हो जाता है या फिर पशु पक्षी वो घायल हो जाते हैं
1: जी, जी।
0: तो इससे बचने के लिए सबसे अच्छा जो उपाय है वो दामिनी ऐप है, जिसको डाउनलोड करके सावधानी बरत सकते हैं
1: जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे इस प्रोग्राम में समय देने के लिए। ऐसे ही कभी आपसे फिर से मुलाकात होगी सर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आप सभी को धन्यवाद।

0: दसरु भाई धकेला के सर खुदराम और हेमंत संगवारी बंच गालो गीत रहे ने मानतर तक गीत गोविंद सुन तो रलोन तो नगत लागे से ने और मानतर तक भाद हो जाने से है का सर मानतर तक काया कि भाद बेरा होले पेट बल जाने से बलून से मानतर पेट जान तो का दिखाए कि मेहनत मशागत कर लो तो पेट ने बले ये दिखा ने
1: मेहनत कर लो तो आप लोग पेट भर तो समय
0: बलते रहे बोल बात तो कर लू मानतर गोटोक नगत गीत के और गोटोक सुन लो नगत रहते
1: नगत रहे
0: आ लेते सुनो

0: थुटेका दादा
1: गीत
0: यो गीत कुरिया मन र दिलीप कुमार पाण्डे हरु हुन्छ सङ्घरी मन
1: पक्की गीत रहे मन
0: हो पक्की
1: म डाक्टर तु भले कान देउन पक्की सुनुन देते रे
0: हो काय गीत के पर सुनु पैसे काय
1: त गीत के तो सुन त आई है न मातर कमानी धमानी बल त रहे ने
0: हो देखो पड़े से गीत संगे संगे
1: दक हम तो कार्यक्रम भीतर कमानी धमानी चो गुड बल होली ज्ञान ध्यान चो गुड बल होली गीत गोविंद मातर समय होली हम तो जातोर बले तो मैं बोलते रे अलविदा मांगू
0: अरे ते मोटरा कट रख सकल
1: हां हां
0: मैं किसान दादा दीदी मन के विदा मांगे
1: आलते
0: जातो किसान वाणी कार्यक्रम सुन तो सब पाए गांव खारी खेतियार दादा दीदी सी आन सजन आराम से संग जोर या संगवारी मन के मैं दसो
1: और मैं डेंगा
0: हमें दोनों करुण से
1: जुहार।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी, आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। 8 बजे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम शिक्षकों के लिए, इसमें सुनिए वार्ता, विद्यार्थी क्यों चुने इलेक्ट्रिकल ब्रांच। वार्ताकार हैं सुभाष मिश्रा।
1: इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एक महत्वपूर्ण और रोचक विषय है, एक ऐसा क्षेत्र जो हमारे जीवन का अभिन्न एवं बेहद आवश्यक किरदार निभाता है। विद्युत, जिसके शब्द मात्र से हमें डर लगता हो, ऐसी कल्पना करना भी इसके बिना जीवन अब आसान होगा मानो कोई अतिशयोक्ति हो। बिजली के बिना आज का मानव निश्चय ही अर्थहीन हो जाएगा। आज के परिवेश में विद्युत के बिना किसी भी कार्य की कल्पना करना भी संभव नहीं लगता। आज हम इस युग में प्रवेश कर चुके हैं

मानो विद्युत ने हमें घेर लिया हो। या यह कहना कुछ अनुचित नहीं होगा कि हमने स्वयं को इसके परिवेश में ढक लिया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, दैनिक जीवन भी, रक्षा एवं मनोविज्ञान, सैन्य सुरक्षा, मनोरंजन एवं खेल जगत, चारों ओर हमने इलेक्ट्रिकल उपकरणों का उपयोग देखा है, जिसके बिना उच्च स्तर की सफलता संभव नहीं। अर्थात आज के इस प्रतियोगी माहौल में करियर के लिए विषय का चुनाव बेहद अहम हो जाता है, और चुनाव ऐसे विषय का जिसके साय में हम अपनी छोटी बड़ी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सकेंगे। इस लिहाज से यह बेहद अहम हो जाता है कि हम ऐसे विषय का चुनाव करें जो आज के परिवेश में हमें साथ लेकर चल सके और हम अपने ज्ञान से इस परिवेश में बने रह सकने में समर्थ हों। ऐसे में यह कहना सही होगा कि हमें अपने अच्छे भविष्य के लिए इलेक्ट्रिकल विषयों को चुनना चाहिए, जिसका चुनाव हम अपने करियर के निर्माण के लिए करते हैं, बल्कि यह माध्यम है हमारे दैनिक जीवन के परिवहन का, उसके चलायमान होने का। इस विषय के माध्यम से हम इलेक्ट्रिकल आविष्कारों, निर्माण, विकास, उनके जांच और उनके रखरखाव की जानकारी हासिल करते हैं और सीखते हैं कि हमारे समाज की गतिविधियों में इस शिक्षा का किस तरह से उपयोग करते हुए इसी क्षेत्र में अपना योगदान दिया जाए। इलेक्ट्रिसिटी का संबंध एक छोटे से ट्रांजिस्टर से लेकर बड़े बड़े ट्रांसफार्मर, मशीनरी और जनरेटर, सैटेलाइट, सूचना और संचार के उपकरणों तक होते हुए रक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, अंतरिक्ष में उपयोग होने वाले उपकरणों तक है। उच्च शिक्षा में विद्युत इंजीनियरिंग के कई विभाग हैं जो नई जनरेशन के साथ विकास और खोज के बलबूते नित नए रूप में हमारे शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में शामिल होते जा रहे हैं। इन सब के मध्य सबसे प्रचलित और महत्वपूर्ण विभाग इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, कंट्रोल सिस्टम, इंस्ट्रूमेंटेशन, रोबोटिक्स और दूरसंचार जैसे विषय हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बढ़ती मांग ने युवाओं को इस ओर आकर्षित किया है। कई क्षेत्र जिनमें इन्हें आकर्षक वेतन पर नौकरी दी जाती है, ऑडियो और वीडियो कम्युनिकेशन के माध्यम से विद्युत इंजीनियरिंग अहम भूमिका निभाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल मशीनरी, पावर प्लांट्स, स्टील प्लांट्स, रेलवे, सिविल एविएशन, टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के वितरण प्रणाली में इनकी मांग है। संबंधित संस्थान में प्रवेश लेने हेतु छात्र को AIEEE, JEE अथवा स्टेट लेवल पर आयोजित इंजीनियरिंग परीक्षा उत्तीर्ण करनी पड़ती है। इसके लिए साइंस स्ट्रीम की फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स जैसे विषयों के साथ 12वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा धारक भी इस हेतु आवेदन कर सकते हैं। किसी भी विषय का चुनाव करने से पहले ध्यान देना आवश्यक है कि हमारी रुचि संबंधित विषय में है अथवा नहीं। अतः यदि आप इलेक्ट्रिकल सिस्टम से काफी प्रभावित, प्रेरित और रुचि रखते हैं तो यह चयन आपके लिए अनुकूल है। यह विषय काफी रोचक, सामान्य जीवन की घटनाओं को समेटे हुए, जिन्हें जानने की अभिरुचि किसी भी मन में जगा सकती है। अतः यह काफी उत्साहवर्धक एवं प्रभावी विषय सिद्ध हो सकता है। जिन्हें आविष्कारों, विज्ञान के चमत्कारों, तकनीकी में रुचि हो, उन्हें जानने, समझने और उनके अनुप्रयोगों से प्रभावित होकर उन्हें समझना चाहता हो, ऐसे छात्र भी इस विषय में उच्च शिक्षा हासिल कर अपने करियर को नई ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर विद्युत उपकरणों की डिजाइन, उनके निर्माण, विकास और सभी प्रकार के कार्यों का निरीक्षण करते हुए अपने कार्यों का निर्वहन करता है। बड़ी इमारतों में विद्युत की वायरिंग, सुरक्षा व्यवस्था हेतु विद्युत प्रणाली, मशीनरी का कंट्रोल, मोटर, जनरेटर, एयरक्राफ्ट, राडार, पावर जनरेशन एवं ट्रांसमिशन, वितरण उपकरण एवं उनका रखरखाव किया जाता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एक रोचक आधार है जीवन के विकास का। इसके साथ हम वैश्विक स्तर की तकनीकी का उपयोग करते हैं और भविष्य की योजनाओं पर कार्य करते हैं। इस विषय में स्नातकों ने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी गहरी पैठ बनाई है। आज के समय में पहले की तरह विद्युत विभाग केवल विद्युत वितरण कंपनी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने विभिन्न क्षेत्रों में अपने अहम योगदान को साबित किया है। रेडियो टेक्नोलॉजी, चिकित्सा के क्षेत्र में उपकरणों का इस्तेमाल, रक्षा अनुसंधान, अंतरिक्ष विज्ञान आदि कई ऐसे क्षेत्र हैं जो आज विद्युत अभियांत्रिकी के अनूठे प्रयोगों से अछूते नहीं रहे। इनके अलावा एक और क्षेत्र जो हमें हमारे करियर को नई ऊंचाई तक ले जाने में मदद करता है, वह है हमारा विश्व स्तरीय बाजार, जहां हम न केवल उपकरणों, तकनीकियों, प्रणालियों और संसाधनों के आपसी साझे से सफलता हासिल कर सकते हैं,

और इन सबको एक सूत्र में बांधने का कार्य करता है तकनीकी का प्रबंधन। अर्थात हम एक नए परिवेश में सभी तकनीकियों, उनके उपयोग, प्रभाव और उनकी पहुंच दर्ज कराकर उनके होने वाले फायदों से समस्त विश्व को रूबरू कराते हैं, जिसका अप्रत्यक्ष लाभ हमारे जीवन में दिखाई देता है। तकनीकी प्रबंधन से हम विश्व स्तर पर व्यवसाय कर सकते हैं और इसके फलस्वरूप इसकी मांग सबसे तेजी से बढ़ी है। एक सफल प्रबंधक अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स को किस तरह से प्रस्तुत करता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह उस उपकरण से, प्रणाली से, उसकी तकनीकी से किस तरह संबंधित है। और यह कार्य एक विषय विशेषज्ञ ही कर सकता है। मार्केटिंग के क्षेत्र में भी सभी विभाग प्रमुख कार्य करते हैं, तब जाकर उस कंपनी को विशेष लाभ अर्जित होता है। आज सारा विश्व तकनीक पर निर्भर हो रहा है, अतः हमें तकनीक आधारित शिक्षा हासिल करनी चाहिए। और आज के परिवेश में कई क्षेत्र जिनकी कल्पना भी हम विद्युत इंजीनियरिंग के बगैर नहीं कर सकते, एक प्रभावशाली विद्युत व्यवस्था, कंप्यूटिंग का उपयोग, सूचनाओं का संचरण और संचार तंत्र का संचालन, सौर ऊर्जा, ऊर्जा के उपकरण, परिपथ का ज्ञान, पर्यावरण से ऊर्जा का उचित दोहन, आज के समय की मांग अनुरूप उच्च दाब बिजली घर, इन सब की मूलभूत आधारशिला है विद्युत इंजीनियरिंग। सुरक्षा उपकरण, प्रणाली, नेटवर्क, मशीनी क्रियाकलाप एवं कई सारे क्षेत्र जहां विद्युत ऊर्जा का अनुप्रयोग बेहद अहम भूमिका निभाता है। आज के डॉक्टर सभी जांच मशीनों से करने लगे हैं। बीमारी की जांच से लेकर उसके इलाज तक का सारा सफर मशीनों से तय किया जाता है। उन सभी मशीनों का संबंध इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से ही है। शल्यक्रिया हो, चाहे सिटी स्कैन हो, एक्सरे करना हो, चाहे जिस भाग की अंदरूनी जांच करनी हो, हम मशीनों का सहारा लेते हैं। और इस तरह इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही हमें कंप्यूटर के मदद से कन्वर्ट करते हुए रिजल्ट देते हैं। आज की दौड़ भाग भरी जिंदगी में तकनीक का सहारा आम हो गया है। चाहे जिस क्षेत्र में जाएं, तकनीक ने अपना स्थान बड़ी मजबूती से निश्चित कर लिया है। किसी भी कार्य के लिए हम तकनीक के वश में नजर आते हैं। यह जानकर हमें खुशी होनी चाहिए कि विद्युत के आविष्कार और निर्माण मात्र मानवीय जीवन को सुखमय, सरल और आसान बनाने के उद्देश्य से विकासशील और विस्तार करने बाबत प्रयोग कर सकने के विचार से किया गया था। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जटिल परिस्थिति में भी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों

इंजीनियरिंग का चुनाव मात्र इसलिए नहीं करना चाहिए कि इसमें कई क्षेत्रों के अवसर मिलेंगे, बल्कि इसलिए कि इसमें स्वयं अवसर पैदा करने की क्षमता है। इलेक्ट्रिकल की शाखा है एक इलेक्ट्रॉनिक्स, और दोनों में मात्र इतना अंतर है कि हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पावर जनरेशन, उसके ट्रांसमिशन और उसकी विभिन्न विधाओं को सीखते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉनिकी हमें इन भारी भरकम और विशालकाय मशीनों से लेकर छोटी छोटी मशीनी गतिविधियों को विद्युत के माध्यम से कंट्रोल करना सिखाती है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि विद्युत इंजीनियरिंग हमें उच्च दाब और निम्न दाब के मध्य सामंजस्य सिखाती है, और इलेक्ट्रॉनिकी इसके विपरीत काफी कम मात्रा में विद्युत के उपयोग से कंट्रोल की रीतियां सिखाती है। विद्युत का दिखाई न देते हुए भी अपना असर समस्त मानवीय जीवन के ऊपर दिखाना अपने आप में अपनी रोचकता को बढ़ाने के लिए काफी है। अर्थात जिसका मात्र एहसास इस कदर हावी हो वह वास्तव में कितना रोचक होगा यह जानना हर कोई चाहेगा। इसलिए विद्युत इंजीनियरिंग की शाखा का चयन करियर के दृष्टिकोण से भी और रोचकतापूर्ण ज्ञान हासिल करने हेतु भी उचित फैसला है।

कार्यक्रम शिक्षकों के लिए। इसमें अभी आप सुन रहे थे वार्ता, विद्यार्थी क्यों चुने इलेक्ट्रिकल ब्रांच। वार्ताकार थे सुभाष मिश्रा। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। 8:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम पीला मन का जय गोट। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर। प्रस्तुति है माधुरी यादव की।

पीला मंचो गोट कार्यक्रम सुनतो सपाय नानी बड़े पीला मन के तुम चो दीदी बाटले खुब्बे खुब्बे मया अरु मीठ मीठ चुमा तो पीला मन आमार लास ने मैं बोले आमार ले और देखा आजी मैं तुम के नहीं सांगतो का जे गोटोक असन महापुरुष चो जीवना चो गोट मन के धरु न मर ले से जे के तुम सब पाए लोग जानास कसन ने जानास बोलो ने बाबा साहेब ए मन के बोलतो रहो से ने तो असन ले ए नाव ले तो तुम सफाई जान लस अरु दखा संग ने ए मन के आमचो भारत देश चो संविधान चो निर्माता बलो ने संविधान बनातो बिता बोले बोलतो रहो से एबर तुम्ही तो सब पाए चिता लस ने ए मनात डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आजी मैं तुम सबके ए मंचो जीवना ले जुड़ो कई ठान गोट मन के सांगे थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चो जन्म 4 अप्रैल 1891 ने मध्य प्रदेश चो महू शहर चो फौजी छावनी ने हो रहे ये चो बाबा चो नाव रामजी सकपाल और आया चो नाव भीमा भाई रली भीमराव अम्बेडकर ए मन के भारी दुख सहुक पड़ी काय काजे वलो ने नी हुन समिया ने आमचो देश खूबे बड़े रली और ए था जात पात ऊंच नीच छुआछूत खूबे चलते रहे असन ले ए मंचो घर परिवार के अछूत अरु छोटे जात चो बलून हिनाज बले करो एचई काजे स्कूल ने भर्ती काजे ए मन के कोनी स्कूल तैयार नहीं पड़ला पीला मन जात पात हिसाब ले हुन बन के स्कूल ने भर्ती करतो काजे स्कूल पिता मन मना करो मानतर केबे केबे नहीं दखा असन बले होय से कि भगवान बाट बनाव नहीं कोनी सहायता करियाले भेंट बले करवाए असनेच गोट ए मन संग बले होली एक झान कृष्णा केशव नाव चो गुरजी ए मन के स्कूल ने भर्ती कराला अरु दखा सतारा शहर चो सरकारी स्कूल ने ए मन पहला नंबर ले पास हो दखाला हुन समय ने नहीं अछूत वर्ग चो पढ़ा लिखा लोग मन कम रहते रहोत हुसन ने हुन समय हिसाब ले ए मन काज खूबे बड़े गोट रली असने कोशिश करते करते ए मन मेट्रिक चो पढ़ाई के पूरा करून बॉम्बे विश्वविद्यालय ले अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान ने बीए पास करला फिर तो हुन पढ़तो काजे पाछे नी गुजला आगे पढ़तो काजे विदेश बले गेला और संग

कैक विषय ने शोध भले करते रहला जेचो लागून भीमराव के पीएचडी दिए गेली अरु हुथायले भीमराव चो नाव संगे डॉक्टर चो पदवी जुड़ली अरु नाव होली जानस काय नाव होली नाव होली डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ए मन लग 32 ठान डिग्री रही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आपलो देश ने बोहड़ून आपलो जीवना चला तो काजे नौकरी बले करला अरु फेर पाछे वकालत बले करला मानतर करतो लोग जो विचार आगे बढ़ते रहे से असनेच ये बोले छुआ छूत के गुचातो काजे अरु अछूत हिसाब जो भेदभाव के मिटातो काजे जीव परान लगान काम करते कएक ठान पत्रिका बलो ने पुस्तक के छापला अरु हुन पुस्तक मन ने छाप तो गोट मन हिसाब ले लोग मन के जागरूक बले करला ए मन जो छाप लो पुस्तक मन ने समता जनता प्रबुद्ध भारत असन कएक ठान पुस्तक मन आसे पिला मन अम्बेडकर बलोत कि छुआछूत गुलामी ले बले आगर दुख चो घोटाए और लोग मन चो बीच ने छुआछूत जात पात चो गोट रतोर नुआए हुनी समय देश ने भारत छोड़ो आंदोलन चलते रहे डॉक्टर भीमराव आपलो विचारधारा अरु पक्ष चो लोग मन के एकजुट करला अरु हुन लड़ाई ने बले आजादी पातो काजे काम करला सपाय चो मेहनत लागून आमचो देश आजाद भारत बनली अरु डॉक्टर भीमराव के देश चो कानून मंत्री अरु न्याय मंत्री बनाला पिला मन देश चलातो काजे नियम कानून चो जरूरत पड़तो कारण संविधान बनातो काम मुरहोली अरु एचो अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बनाला काय काजे बल्लो ने ए मन खूबे ज्ञानी अरु सबके समान अधिकार मिरो असन विचार चो नेता रला ए मन संविधान बाटले देश ने रतो सपाय लोग के समान अधिकार दिला जीव तो आजादी दिला भेदभाव असन अडरा गोट के गुचातो गोट मन के बनाला पिला मन तुम्हें जानास आमचो देश जो संविधान सबले बड़े संविधान आए संविधान बल्लो ने हुन नियम जेचो ले देश चले से आमचो देश जो संविधान बना तो संविधान सभा चो गठन साल 1946 के हो रली और संविधान सभा ने ये 26 नवंबर 1949 के स्वीकार होली 26 जनवरी 1950 के ये आमचो जो संविधान चले से हुन लागू होली फिलामन एबे संविधान ने 25 भाग 448 अनुच्छेद 12 अनुसूची आसे आमचो संविधान के बनातो कारण भीमराव अम्बेडकर के संविधान निर्माता बलतोर होली पिलामन

0: ज्ञान मनुख जीवना चो आधार आय अरु न्याय समानता चो विचार के ये ज्ञान जन्म दय से अरु यही गोठ मन के जानूरले आमचो हक अधिकार के कोनी झिकुक नि सकोत असन समाज सेवा चो कै काम करते करते अरु देश सेवा का जे जीवना के सोपून काम करते डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 6 दिसंबर 1956 के देवलोक होला मरलो पाछे सन 1990 ने एमन के भारत चो सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न ले सम्मानित करला तो पिला मन असन रली डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चो जीवना पिला मन आजी काय सीखुक मिरली आजी चो गोठले ये शिक्षा मिले से कि जीवना ने आगे बाढ़तो का जे पढ़ा लिखा हो तो जरूरी आए शिक्षा सामाजिक बदलाव और न्याय का जे जरूरी आए बुद्धि चो विकास आमचो आखिरी तक चो करतो कोशिश ने रतो खूब जरूरी आए
1: हाँ तो पीला मन दखा गोट गोट संगे नहीं मैं तुमन मन कर गोटो गीत बल धारू नीले से काय हरे खोलास ने गीत चो नाव सुन काय है कि जीना ने हरे कुदिम का जो गीत गोविंद रतर खूब जरूरी है खेंडी नाचा कूदा बल कर तो रिची आई ने देह पाए कच बोली अच्छा अच्छी आई तो पीला मन मैं सुनू ता गीत के नहीं

आज ही तो गोटबात ने मैं भीमराव अंबेडकर चो गोटबात के पीला मन तुम के सांगले तो आज ही चो गोट इतरे ही रहो फिर भेंट खाट हो ले और गोटबात मन के करवा जातो पूरे तुम चो दीदी बाटले सब पाए पीला मन के खूबे खूबे माया।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पीला मन का जे गोट। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर। प्रस्तुति थी माधुरी यादव की। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। 8:45 होने को है। समाचार संध्या और News@9 हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 कल से लागू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड का शुभारंभ किया। दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू। मानसून के अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात टेक्सस में आइवरी कोस्ट का मुकाबला नॉर्वे से। अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी अधिनियम 2025 कल से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं। उन्होंने कहा कि पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा दिए गए हैं, कार्यान्वयन प्रणालियां पूरी तरह से तैयार हैं और चल रहे कार्य बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगे। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतन भोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी।

0: ये अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतन भोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से शिक्षा के माध्यम से समान और समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थी। राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए।
1: उन्होंने जनजातीय विश्वविद्यालय से विशेष रूप से ये अपेक्षा भी की जाती है कि वे जनजातियों भाषा बोलियां के संरक्षण पर मिशन मोड में काम करेंगे। मुझे बताया गया है कि संस्था के ट्राइबल स्टडीज विभाग द्वारा कुई और सावरा समेत अनेक जनजातीय बोलियों के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के इसी प्रकार से जमीनी कार्य किया जा रहा है।
0: भारतीय रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। रेलवे ने दक्षिण पूर्वी रेलवे में लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से शेष 48 फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने की मंजूरी दी है। इससे देश में रेलवे नेटवर्क की डिजिटल संचार व्यवस्था मजबूत होगी। ये परियोजना दक्षिण पूर्वी रेलवे के 4 प्रमुख डिवीजनों में 1600 किलोमीटर से अधिक मार्ग पर फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। पूर्वी रेलवे के आसनसोल डिवीजन के हाई डेंसिटी नेटवर्क और हाईली यूटिलाइज्ड नेटवर्क मार्गों पर स्थित 27 स्टेशनों या डिब्बों में रिले आधारित इंटरलॉकिंग को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग से बदलने की परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। स्वीकृत कार्य में 28 रिले आधारित इंटरलॉकिंग को अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणालियों से बदला जाएगा। परियोजना की लागत 400 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके अलावा रेलवे ने करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वी मध्य रेलवे के 44 किलोमीटर से अधिक लंबे मानसी सहरसा खंड के दोहरीकरण को भी स्वीकृति दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम FCRA 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक यानी EOCI कार्ड सेवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन दोनों पहलों से नागरिक सेवाएं बेहतर होंगी और FCRA पोर्टल के माध्यम से विदेशी चंदा प्राप्त करने वाली संस्थाओं को होने वाली कठिनाइयां दूर होंगी। उन्होंने कहा कि सख्त निगरानी व्यवस्था से देश की सुरक्षा और मजबूत होती है। गृह मंत्री ने बताया कि नई EOCI व्यवस्था में पहले की कई समस्याओं का समाधान किया गया है। इससे 50 लाख से अधिक OCI कार्ड धारकों को सुविधा मिलेगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ने 26 से अधिक देशों के साथ प्रवासन और आवागमन संबंधी 28 साझेदारी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासन, मानव तस्करी, धोखाधड़ी करने वाले बिचौलियों और शोषण जैसी चुनौतियों से निपटना सभी देशों की साझा जिम्मेदारी है। वे आज नई दिल्ली में मानव संसाधन आवागमन मंच को संबोधित कर रहे थे। विदेश मंत्री ने कहा कि सुरक्षित और कानूनी प्रवासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म से साफ दिखाई देती है।
2: One key pillar which has brought about a transformation.
3: प्रवासन से जुड़े प्रबंधन में बहुत बड़ा बदलाव डिजिटल व्यवस्था और प्रणालियों से आया है। सुरक्षित और कानूनी आवाजाही के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म में दिखती है। इसकी शुरुआत के बाद से ही 50 लाख से ज्यादा लोगों को विदेश जाने की मंजूरी दी जा चुकी है। यह डिजिटल तंत्र लोगों की आवाजाही को आसान बनाने के साथ साथ प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का एक वैश्विक उदाहरण बन गया है।
0: विदेश मंत्री ने आज आयरलैंड की विदेश मंत्री हेलेन मैकेंटे को यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभालने पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि उन्होंने व्यापार और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर भी चर्चा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मजबूत अर्थव्यवस्था से ही देश की रक्षा क्षमता मजबूत होती है। वे आज गुजरात के वडोदरा में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है।
4: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेटली 46,000 करोड़ था, लेकिन आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन बढ़कर 1,78,000

0: करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। इसके अलावा भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट अप्रॉक्सिमेटली 39,000 करोड़ का कर लिया है और आत्मनिर्भरता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने में गुजरात अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकता है।
1: रक्षा मंत्री ने कहा कि वडोदरा अब देश की निजी क्षेत्र की पहली सैन्य विमान निर्माण इकाई का केंद्र बन गया है। ये टाटा समूह और एयरबस मिलकर C-295 परिवहन विमान बना रहे हैं। जनरल धीरज सेठ ने आज देश के 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाल लिया है। उन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया है। जनरल धीरज सेठ पुणे स्थित खड़कवासला की राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं। उन्हें दिसंबर 1986 में बख्तरबंद कोर में कमीशन मिला था। इससे पहले जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
2: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
1: दिल्ली और 4 राज्यों कर्नाटक, झारखंड, मेघालय तथा महाराष्ट्र में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत दिल्ली में 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पहले दिन 1,68,200 से अधिक गणना प्रपत्र मतदाताओं को वितरित किए गए। वहीं 7,600 से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण किया गया। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दाखिल की जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। मतदाता अपना गणना प्रपत्र ऑनलाइन भी voters.eci.gov.in पर भर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज अपना गणना प्रपत्र जमा किया और राष्ट्रीय राजधानी के सभी पात्र मतदाताओं से मतदाता सूची के चल रहे इस अभियान में भाग लेने की अपील की। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उधर महाराष्ट्र में भी बूथ स्तरीय अधिकारियों ने घर घर जाकर मतदाता रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए सत्यापन अभियान शुरू किया है।
4: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 5 अगस्त को जारी की जाएगी जबकि अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। जिन वोटरों का नाम पिछली SIR की मतदाता सूची में शामिल था उन्हें आमतौर पर कोई नया दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। बाकी वोटरों को निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 12

0: की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का काम करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा दो प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन में ढील और अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने जन्मजात नागरिकता को समाप्त करने के उद्देश्य से जारी किए गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकारी आदेश को रद्द कर दिया है और इस बात की पुष्टि की है कि अमेरिका में जन्म लेने वाले लगभग हर व्यक्ति को स्वतः ही अमेरिकी नागरिकता प्राप्त हो जाती है। न्यायालय ने 6-3 के बहुमत से कार्यकारी आदेश को गैर कानूनी घोषित किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को देखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट 15 जुलाई 2026 तक बढ़ा दी है। इससे पहले वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में उत्पन्न व्यवधानों के कारण अस्थायी और लक्षित राहत के रूप में केंद्र ने आज तक पूर्ण सीमा शुल्क में छूट प्रदान की थी। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के स्थायी मिशन ने पक्तिया, पक्तिका और कुनार प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। मिशन ने कहा है कि इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित कई अफगान नागरिक मारे गए और घायल हुए। वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था और 55,000 तीर्थयात्रियों के ठहरने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा की 57 दिनों की तीर्थयात्रा की शुरुआत 3 जुलाई से होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हूल दिवस पर सिधू कान्हू, चंद भैरव, फूलो झानो सहित विदेशी शासन के अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने वाले सभी वीर आदिवासी योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। हूल दिवस के अवसर पर झारखंड में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। दक्षिण पश्चिम मॉनसून के अगले 2-3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमनदीव तथा राजस्थान में भी मॉनसून के आगे बढ़ने की संभावना है। बृहस्पतिवार तक बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, माही, कोंकण, गोवा, ओडिशा में मूसलाधार बारिश की आशंका है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज आइवरी कोस्ट का सामना नॉर्वे से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे से अमेरिका के टेक्सस में खेला जाएगा। वहीं देर रात 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कल से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। 2 दिन तक चलने वाला यह सम्मेलन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यापन में सुगमता के लिए विनियमन पर सचिवों से बातचीत की। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 कल से लागू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड का शुभारंभ किया। दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashwani and I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi interacts with secretaries on deregulation for ease of doing business and ease of living. Also discusses promotion of Atmanirbharta. विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी एक्ट 2025 टू कम इनटू फोर्स फ्रॉम टुमारो. प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू सेज स्टूडेंट्स शुड स्ट्राइव टू अपलिफ्ट द वीकर सेक्शंस एंड कंट्रीब्यूट टू नेशन बिल्डिंग. Railways to launch 3 projects worth over 1,100 crore rupees to improve communication and operational system. Special intensive revision of electoral rolls begins in Delhi, Jharkhand, Meghalaya, Karnataka and Maharashtra. US Supreme Court strikes down President Trump's order ending birthright citizenship. And in FIFA World Cup, France to take on Sweden in New York, while Ivory Coast to clash with Norway in Texas. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today interacted with various secretaries to several ministries at Seva Tirth in New Delhi. The discussion focused on two key themes. The first was deregulation and other reforms for ease of doing business and ease of living, while the second was promoting Atmanirbharta. During the meeting, the Prime Minister stressed the importance of adopting a whole-of-government approach and breaking departmental silos. Highlighting the importance of integrated planning and coordination, Mr. Modi encouraged wider utilization of the PM Gati Shakti as an effective platform for inter-departmental coordination and informed decision-making. He exhorted the secretaries to focus on the tangible impact of schemes on the lives of people. During the interaction, the secretaries outlined the major steps being taken by their ministries and departments in line with the two key themes. The Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen, VBGRAMJI Act 2025 will come into force across rural India with effect from tomorrow. On the eve of the nationwide rollout of VBGRAMJI Act 2025, Union Minister for Rural Development Shivraj Singh Chauhan said that no eligible rural worker should remain without work even for a single day. Mr. Chauhan said, the government, in close coordination with the states and union territories, has completed all administrative, financial and technical preparations to ensure a seamless transition to the new framework. He added, the enhanced guarantee of 125 days of wage employment will strengthen rural livelihoods, create durable community assets and accelerate the vision of Viksit Bharat. President Draupadi Murmu has called upon students to use education as a means to build an equitable and inclusive society. She said educated youth should not work only for their own progress, but also strive to uplift the weaker sections and contribute to nation building. The president said this while addressing the first convocation of the Central Tribal University of Andhra Pradesh in Visakhapatnam. The president urged the students to become agents of social transformation, saying education should go beyond securing employment and help strengthen society, culture, traditions and economic progress. She said every educated youth should help bring forward those left behind and contribute towards achieving the goal of a developed India by 2047.
2: वर्ष 2047 तो विकसित भारत बनाने का हमारा लक्ष्य है. मुझे विश्वास है कि आंध्र प्रदेश का एक केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अपना सार्थक समावेशी और पर्यावरण संरक्षण पर केंद्रित व्यवहारिक शिक्षण पद्धति से इस लक्ष्य प्राप्त करे और उसका महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.
1: Union Education Minister Dharmendra Pradhan urged students to become job creators rather than job seekers and said universities should lead innovation to help realize the vision of a developed India by 2047. The Indian Railways will launch 3 projects worth over 1,100 crore rupees to improve communication and operational system. The Railways has approved the doubling of over 44-kilometer Mansi-Saharsa section of East Central Railway at a cost of 499 crore rupees. It will augment line capacity, improve operational efficiency and cater to the growing demand for passengers and freight movement on this important route. The Railways has also sanctioned a project for the replacement of relay-based interlocking with electronic interlocking at 27 stations or cabins on the high-density network and highly utilized network routes of Asansol Division of the Eastern Railway. The sanctioned work includes the replacement of 28 relay-based interlocking installations. It will cost over 432 crore rupees. The railways has approved the provision.

कार्यक्रम का पहला गीत आप सुन रहे थे हावड़ा ब्रिज फिल्म से आशा भोसले के स्वर में। उमर जलालाबादी का संगीत था और माफ कीजिए, गीत लिखा था उमर जलालाबादी ने और संगीत बद्ध किया था ओपी नैयर ने। कार्यक्रम का अगला गीत अंजाम फिल्म से मुकेश के स्वर में, संगीत दिया है गणेश ने।

और अब सुनिए लता मंगेशकर के स्वर में राजा मेहंदी अली खां की रचना, संगीत मदन मोहन का है। फिल्म का नाम है वो कौन थी।

0: लता मंगेशकर के गाए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है।
1: मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेतनाथ सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेतनाथ सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात के 9:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम मोचो मंचो गीत, पत्रों पर आधारित फरमाइशी लोकगीतों का कार्यक्रम। पहले गीत की फरमाइश की है आप सभी ने। दंतेवाड़ा बसेली से आप हैं बलराम सेन, इंदु, रितिका, पुष्पराज, पंचू और बिटिया सेन। पराली बस्तर से आप हैं लवेश कुमार बघेल, कीर्तिका रूप सिंह। एरंडवाल कोटवारपारा के श्रोता हैं दुर्बल नाग, चैतन, लंबू, खूबचंद, रेणुका नाग। डाबपाल से आप हैं जगन्नाथ, मालती, त्रिनाथ, श्याम नाग। भरवापेड़ा कोंडागांव से हैं बिरबल मंडावी, बालमती मंडावी और वीरू मंडावी। आप सब ने सुनना चाहा है शत्रुघ्न सिन्हा और साथियों के स्वर में छत्तीसगढ़ी गीत। आइए सुनते हैं ये गीत।

इसी छत्तीसगढ़ी गीत को सुनने की फरमाइश की थी मेघापारा लोरमी से मनोज कुमार साहू, कृष्ण धनंजय और गायत्री साहू। भाटापारा से कमल प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार और आरवी कुमार वर्मा। छत्तीसगढ़ बेमेतरा से पूर्णिमा सारथी, पूजा आरती भाव्या सुषमा, नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत, सीमा शारदा और

आमिनी वर्मा ने। अगला गीत सुनना चाहा है गेलमणि देवी और साथियों के स्वर में। पसंद आप सबकी। लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ, पंकज तिरुपति, अर्जुनी से सरोजनी, उमेश पूर्वी साहू, दतरेंगी से मनोज कुमार, सूरज कुमार और सागर, देवरी भाटापारा से गनुला रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश मिस्त्री, नगरनार से आप हैं दीपाली कश्यप, शिवरात्रि और सीमा, करपावन से सुनील, सुशील, अंजू और निखिल। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का हल्बी गीत गेलमणि देवी और साथियों के।

आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं पत्रों पर आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम मोचो मंचो गीत। आइए अब सुने नीला और साथियों के स्वर में भद्री गीत, फरमाइश की है आपने। भरवाबेड़ा कोंडा गांव से आप हैं बीरवल मंडावी, बालमती और बीरू मंडावी, बड़ांजी से रुचि, प्राची, जयंती, नरेंद्र और विक्की, दशापाल से आप हैं विभा, देवनाथ, मनीता और सरिता बघेल, करपावन के श्रोता हैं सुनील, सुशील, अंजू और निखिल कश्यप, नारायणपुर से आप हैं पुरुषोत्तम नाग, ललिता और पुष्पा नाग। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत नीला और साथियों के स्वर में।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मोचो मंचो गीत, और अब सुनिए कोसी और साथियों के स्वर में गोडी गीत। फरमाइश आप सबकी। लाला राम साहू, नरेंद्र साहू, काजल और उर्मिला साहू, आप हैं ग्राम करमरी से, तेतरखुट्टी से आप हैं बुद्रू कश्यप और मनोज कश्यप। इसी गीत की फरमाइश की है दंतेवाड़ा बचेली से बलराम सेन, इंदु, रितिका, पुष्पराज, पोषण, पंचू, दिव्या और समस्त सेन परिवार ने। आइए सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये गोडी गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मोचो मंचो गीत पत्रों पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आपकी सेवा में आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से प्रसारित किया गया। अगर आप भी अपने मन की मनपसंद गीत सुनना चाहते हैं तो हमें पत्र लिख भेजिए। कार्यक्रम मोचो मंचो गीत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी जगदलपुर, पिन है 494001। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात के 10 बजे हैं, लोकवाद्य धुन के कार्यक्रम पाड़ में सुनिए मारी रोसना पाड़ और खेल पाड़। वादक कलाकार हैं गणपति कड़ियारी और साथी।

0: लोक वाद्य धुन के कार्यक्रम पाड़ में अभी आप सुन रहे थे मारी रोसना पाड़ और खेल पाड़। वादक कलाकार थे गणपति कड़ियारी और साथी। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। 11 बजने को है हिंदी में समाचार। हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पजेशकियन से टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पजेशकियन ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम और आगामी कदमों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने ईरान की अमरीका के साथ बनी सहमति का स्वागत किया और भारत के स्थापित रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने और नौवहन तथा व्यापारिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता पर बल दिया। पश्चिम एशिया संघर्ष को देखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। इससे पहले वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में उत्पन्न व्यवधानों के कारण अस्थायी और लक्षित राहत के रूप में केंद्र ने आज तक पूर्ण सीमा शुल्क में छूट प्रदान की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा दो प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने अंतर विभागीय समन्वय और सूचित निर्णय लेने के लिए एक प्रभावी मंच के रूप में पीएम गति शक्ति के व्यापक उपयोग को प्रोत्साहित किया। इस दौरान सचिवों ने दो प्रमुख विषयों के अनुरूप अपने मंत्रालयों और विभागों द्वारा उठाए जा रहे प्रमुख कदमों की रूपरेखा प्रस्तुत की। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन में ढील तथा अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी अधिनियम 2025 कल से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतन भोगी

0: कि वे जनजातियों भाषा बोलियां के संरक्षण पर मिशन मोड में काम करेंगे। मुझे बताया गया है कि संस्था के ट्राइबल स्टडीज विभाग द्वारा कुई और सावरा समेत अनेक जनजातियों बोलियों के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के इसी प्रकार से जमीनी कार्य किया जा रहा है।
1: भारतीय रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसके अलावा रेलवे ने करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वी मध्य रेलवे के 44 किलोमीटर से अधिक लंबे मानसी सहरसा खंड के दोहरीकरण को भी स्वीकृति दे दी है। ये खंड वर्तमान में मानसी साढ़ागढ़ मार्ग पर एक सिंगल लाइन कॉरिडोर है। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमन दीव और राजस्थान में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में टेक्सास में आइवरी कोस्ट का मुकाबला नॉर्वे से हो रहा है। दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर हैं। देर रात नॉकआउट चरण में 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। प्रतियोगिता में पराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। मोरक्को और ब्राजील ने भी अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Kiran Jha. Prime Minister Narendra Modi today had a telephonic conversation with the Iranian President Dr. Masoud Pezeshkian. During the talks, President Pezeshkian briefed Mr. Modi on the recent developments in West Asia and the way forward. The Prime Minister welcomed the understanding reached and reiterated India's consistent position that all issues must be resolved through dialogue and diplomacy. Mr. Modi reiterated the need for continued efforts to ensure lasting peace and stability in the region and for safeguarding freedom of navigation and commerce. Prime Minister Narendra Modi today interacted with the various secretaries to several ministries at Seva Teerth in New Delhi. The discussion focused on two key themes. The first was deregulation and other reforms for ease of doing business and ease of living, while the second was promoting Atmanirbharta. During the meeting, the Prime Minister stressed the importance of adopting a whole-of-government approach and breaking departmental silos. Highlighting the importance of integrated planning and coordination, Mr. Modi encouraged wider utilization of the PM Gati Shakti as an effective platform for interdepartmental coordination and informed decision-making. He exhorted the secretaries to focus on the tangible impact of schemes on the lives. The Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission, Grameen, VBG Ramji Act 2025 will come into force across rural India with effect from tomorrow, on the eve of the nationwide rollout of VBG Ramji Act 2025. Union Minister of Rural Development Shivraj Singh Chauhan said that no eligible rural worker should remain without work even for a single day. Mr. Chauhan said the government, in close coordination with the states and union territories, has completed all administrative, financial and technical preparations to ensure a seamless transition to the new framework. He added that the enhanced guarantee of the 125 days of wage employment will strengthen rural livelihoods, create durable community assets and accelerate the vision of Viksit Bharat. President Draupadi Murmu has called upon students to use education as a means to build an equitable and inclusive society. She said educated youth shouldn't work only for their own progress but also strive to uplift the weaker section and contribute to nation building. The president said this while addressing the first convocation of the Central Tribal University of Andhra Pradesh in Visakhapatnam. The president urged a student to become agent of the social transformation, saying education should go beyond securing employment and to strengthen society, culture, tradition and economic progress.